0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव टू द बीट। सो देन व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: टेक्विला?
3: नो।
2: टैंगो?
3: नो।
2: चार्ल्सटन?
3: नो।
2: पोल्का?
3: नो।
2: नो?
3: नो।
2: तो फिर क्या हो? वन
3: राउंड।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: मस्ती 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो।
2: संक्षिप्त समाचार सुनते हैं आपसे आदिति, नमस्कार आपको।
3: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। तटीय क्षेत्रों को इरोजन प्रदूषण जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से किस प्रकार से बचाया जा सके, इस मुद्दे पर शनिवार को फ्लिकॉन्फ्लॉक में आयोजित सहभागी कार्यक्रम के दौरान विचार किया गया। शीर्षक रहा नुलाकुत नुलालवा, आम जनता विशेषज्ञ और अधिकारीगण ब्लैक रिवर जिले के लिए एक पहली एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्य योजना के विकास में योगदान के लिए एकत्रित हुए। इसके अंतर्गत नागरिक परामर्श हुए, तटीय क्षेत्रों से जुड़ी चुनौतियों को लेकर जागरूकता बढ़ाया गया तथा समंदर तटों, प्रवाह रेखाओं, नदियों और तटीय समुदायों के बेहतर संरक्षण के लिए सुझाव एकत्रित किए गए। ये पहल हिंद महासागरीय आयोग की रेकोस नामक इलाकाई परियोजना का हिस्सा है, जिसका मकसद है इलाकाई देशों में तटीय इकोसिस्टम मजबूत करना। बीच अथॉरिटी का कहना है कि मॉरिशस के सार्वजनिक समंदर तटों पर हर हफ्ते 350 से 400 टन कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। ब्लैक रिवर इलाके के लिए चलाई जा रही संरक्षण कार्य योजना को अगले अगस्त महीने तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इसके बाद उसे संबद्ध अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजनाओं के सलाहकार और इंडियन ओशन आइलैंड्स फाउंडेशन के संस्थापक थियरी ले बॉयटन कहते हैं कि यह अभियान देश के कई अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, म्यांमार के एक गांव में कल पेश आए एक भयानक धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों अन्य घायल बताए गए। ये गांव चीन की सीमा से सटा एक विवादास्पद इलाका है। मरने वालों में 25 महिलाएं और 30 पुरुष शामिल हैं, जो ज़्यादातर खानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं, पूर्व से आ रहे कुछ बाद

0: दल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह बादल घिरे रह सकते हैं, पूर्वी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। आमतौर पर दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान पूर्व से आ रहे बादल पूर्वी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों को प्रभावित करेंगे और बारिश होगी। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:38 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा।
1: You're listening to RM3 Radio।

बुखारी शरीफ की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा दोनों के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है, और हज मबरूर जिस हज में हाजी अल्लाह की नाफरमानी का इर्तकाब न करे की जजा जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। सनन निसाई की रिवायत है, हज और उम्रा मुसलसल करते रहो, यकीनन ये फ़क्र और गुनाहों को इस तरह ज़ायल कर देते हैं जिस तरह आग की भट्टी लोहे सोने और चांदी के मैल कुचैल को जायल कर देती है, और हज मबरूर का सवाब तो जन्नत से कम नहीं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुमान बिन बशर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे इब्ने आदम के अंदर एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त रहे तो सारा जिस्म दुरुस्त रहता है और जब वो ख़राब हो जाता है तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। खबरदार वो दिल है, ऐ दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित रख।

अब्दुल्लाह बिन मोहसिन खतमी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसने भी सुबह की इस हाल में कि वो अपने घर या कौम में अमन से हो और जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल तंदुरुस्त हो और दिन भर की रोज़ी उसके पास मौजूद हो, तो गोया उसके लिए पूरी दुनिया समेट दी गई। बहवाला जामे तिर्मिज़ी।

एक दिन की रोज़ी वाली ज़िंदगी दौलत के अनबार वाली उस ज़िंदगी से कहीं बेहतर है जो अमन व सेहत वाली न हो। गोया इंसान को माल व दौलत के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए बल्कि सब्र व कनाअत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अमन व सुकून और राहत व आसाइश इसी में है। सामिनी कराम, सबाल खैर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। आपकी तवज्जो के लिए हम नहायत शुक्रगुजार हैं। तकनीकी मदद के लिए अंजू का बहुत शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे। अपना ख्याल रखे। खुदा हाफिज। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।

0: जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप सुन रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन पर आपका अपना दिल का शो यानी कि भक्ति में शक्ति। दोस्तों कल था मदर्स डे और हम सब ने महसूस किया माँ का प्यार इस दुनिया की कितनी बड़ी ताकत है। तो आज का ये पूरा शो माँ पर समर्पित है, उस माँ को जो घर में है और इस माँ दुर्गा को जो पूरे ब्रह्मांड में है। जी हाँ, माँ दुर्गा। आज हम बात करेंगे उन नौ देवियों की, नव दुर्गा की, माँ के उन नौ रूपों की जो हर इंसान के शरीर में बसते हैं। चलो शुरू करते हैं ये प्रोग्राम जय माता दी।
1: RM3 Radio.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: भक्तों, आज बात करते हैं माँ की, तो पहले उन दो लोगों को याद करते हैं जो माँ के सबसे करीब है. सबसे पहले गणपति बप्पा, माँ पार्वती के लाडले बेटे, जो माँ की गोद में खेले, जो माँ की आंखों का तारा है, और महादेव, जिन्होंने माँ पार्वती से युगों युगों प्यार किया, जिनके लिए माँ ने तपस्या की, इंतज़ार किया. दोस्तों, आज अपनी माँ को देखो और सोचो, क्या हम गणपति बप्पा जैसे बेटे हैं? क्या हम उनसे उतना ही प्यार करते हैं? अगर नहीं करते तो जो धरती की माँ है और जो आसमान की माँ है वो एक ही है. इन दोनों में कोई फर्क नहीं.
0: RM3 Radio.

0: भक्तों, जब नवदुर्गा की पहली देवी है माँ शैलपुत्री, पहाड़ों की बेटी। पहाड़ जैसे होते हैं ना, अटल, मजबूत, हर मौसम में खड़े, बिल्कुल वैसे ही है माँ शैलपुत्री। और दूसरी देवी है माँ ब्रह्मचारिणी, जिन्होंने हजारों साल तपस्या की बिना रुके, बिना थके। दोस्तों, यही तो माँ होती है ना, पहाड़ जैसी मजबूत और तपस्या जैसी धैर्यवान। तो हम कहते हैं प्रणाम, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ ब्रह्मचारिणी।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, तीसरी देवी है माँ चंद्रघंटा। माथे पर घंटे के आकार का चांद, 10 हाथों में शस्त्र और शेर पर सवार माँ चंद्रघंटा सिखाती हैं साहस से जियो। और चौथी देवी है माँ कुष्मांडा। जानते हो इनकी सबसे खास बात क्या है? उन्होंने ही इस पूरे ब्रह्मांड को सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से बनाया है। सोचो दोस्तों, माँ की एक मुस्कुराहट से अगर पूरी सृष्टि बन सकती है, ब्रह्मांड बन सकता है, तो आपकी माँ की मुस्कुराहट से कितनी ताकत होगी, कितना कुछ बन सकता है। घर के अंदर अगर आपको कोई भी सुख चाहिए तो माँ को प्रणाम करो।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, पांचवी देवी है माँ स्कंद माता कार्तिकेय की माँ। इनके बारे में सबसे प्यारी बात है कि एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में अपना बच्चा। यही तो होती है माना, एक तरफ लड़ाई, दूसरी तरफ ममता, प्यार और बहुत ही ज़्यादा प्यार। और छठी देवी है माँ कात्यायनी, जिन्होंने महिषासुर का संहार किया। क्योंकि माँ जब गुस्से में आती है तो बुराई टिक नहीं पाती है। दोस्तों, माँ की ताकत को कभी मत भूलो। जय माँ स्कंद माता, जय माँ कात्यायनी।
1: RM3 Radio.

भक्तों, नवदुर्गा की आखिरी तीन देवियां हैं और तीनों मिलकर इस कहानी को पूरा करती हैं। माँ कालरात्रि सबसे भयंकर रूप, लेकिन सिखाती है कभी भी अंधेरे से डरो मत। माँ महा

रूपवान, सुंदर और गौरी। कहते हैं ना कि रूप जब उजाले में होता है तो वही उजाला जो होता है वो माँ गौरी का होता है, और माँ सिद्धदात्री जो हर इच्छा पूरी करती है, जो कहती है मांगो मुझसे, मैं यहीं हूँ, कहाँ जाते हो किसी के पास। तो ये सफ़र था आज माँओं के नाम, और हम आपको सिर्फ ये कहेंगे अपने घर में माँ को प्रेम दो। मेरे बाद आएंगे डेविड अपने प्रोग्राम के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्ते। RM3 Radio.

0: 12 बजे है। आइए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ अदिति। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा, श्रोताओं को भी नमस्कार। विश्व स्तरीय डिग्री आजकल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य उन देशों पर निर्भर करता है जहां स्नातकों को रहने और काम करने का अधिकार प्राप्त हो। ये जानकारी शिक्षा पर आधारित हेनली 2026 की रिपोर्ट में सामने आई है। ये इंडेक्स उन 15 देशों को स्थान देता है जो न केवल उत्कृष्ट शिक्षा बल्कि करियर के वास्ते और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता भी प्रदान करते हैं। स्विट्जरलैंड इस सूची में प्रथम स्थान पर है, उसके बाद सिंगापुर आता है। कोदाओ सेंटर में आयोजित

0: एक संगोष्ठी के दौरान 20 साल से ज्यादा की उम्र के विकलांग लोगों की देखभाल से जुड़ी डे केयर फैसिलिटीज की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मौजूद हुए गैर सरकारी संगठनों, देखभाल करने वालों और अधिकारियों ने ज्यादा समावेशी, मानवीय और आत्मनिर्भरता उन्मुख समाज के हक में प्रस्ताव दिए। मकसद है दिव्यांग लोगों को समाज में बेहतर जगह दिलाना और उन्हें नौकरी की ज्यादा संभावनाएं उपलब्ध कराना। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पिछले हफ्ते स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप नेशनल स्टेटस प्रोग्राम का फाइनल लगा। ये पहल तृतीय शिक्षा मंत्रालय की रही। मकसद रहा छात्रों में नवाचार और ठेकेदारी के प्रति दिलचस्पी प्रोत्साहित करना। बड़ी संख्या में छात्रों ने इस प्रथम संस्करण में भाग लिया। 3 बेहतरीन परियोजनाओं को पुरस्कृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चैंपियंस लीग के फाइनल्स में आर्सेनल के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मेन की हुई जीत के बाद फ्रांस के कई इलाकों में हिंसा भड़की। 780 से ज्यादा लोगों को तोड़फोड़ मचाने के लिए गिरफ्तार किया गया और 220 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस अस्थिरता के बीच राजधानी पेरिस में बस और रेल सेवा काफी हद तक बाधित हुई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आज के लिए हमारा साथ यहीं तक था। अगली बार तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। नमस्कार सभी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को विनीता की ओर से, कैसे हैं आप लोग भाई। यहाँ पर हम शुरू हो गए हैं, लेकर आए हैं आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम जिससे आप लोग सुनने के लिए बेकरार रहते हैं, जहाँ पुराने गीतों का ये खजाना लुटाने आए हैं। घड़ी मिलाते चलिए, 12:03 हुए हैं।
1: RM3 रेडियो।

0: ना सफर हाँ ना सफर
1: ब्यूटीफुल सा गाना आपके लिए रेडियो मनोरंजन आर एम थ्री प्रोग्राम है हमारा सुहाना सफर। लेकिन यहाँ पर गाना अभी आप सुन रहे थे ये सुदास और हेमांती शुक्ला की आवाज़।

तुम्हें कहाँ से आए बदरा। एंड में हमारी जो सिंगर हैं वो रोने लगी क्योंकि जब बादल छा गए बेचारे यही सोच रही होंगी कि कपड़े कैसे सूखने वाले हैं। ये भी प्रॉब्लम होता है आजकल, है ना? आप लोगों की भी तो यही प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाई बारिश हो रही है, कपड़े कैसे सूखेंगे। 12:11, हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत करती हूँ मैं। कैसी हैं विमला जी? और बाकी हमारे जो दोस्त हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें टिकटॉक पे, हम हैं लाइव। अगर आप चाहें तो यहाँ हमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और काफ़ी सारी बातें होने वाली हैं। कल्याणी हरी, आपका भी स्वागत करती हूँ मैं प्रोग्राम में। चलिए इसके साथ जो हमारा अगला गाना होगा ये हम लेकर आए हैं आपके लिए। गाना होगा लता जी की आवाज़ में, साथ दे रहे हैं सुरेश वाडकर।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं भाई। दुनिया भुलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ी देर के लिए अपनी टेंशन भुला दीजिए, हमारे लिए बस यही काफ़ी है और उसको भुलाने के लिए मदद हम कर देंगे आपको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो अनोखी शाहीन जो कि हमें सुन रही है इस समय, अगला गाना आपके लिए। इंदिरा जी कहती हैं कि शाम के लिए कोई गाना डेडिकेट कर दीजिए। वहीं पर अनुराग हमारे साथ हैं और बनीता शैल परी हमारी आ गई है ना, उड़ती उड़ती हमारे साथ। रिया हैं, शर्मिला बुदन हैं, मनोज आपने गाने की फरमाइश की है, नीलिमा, राजेश जूतन हमारे साथ हैं और यहाँ पर भी कोई आशीष जस्टिन नाम है, अब मुझे नहीं पता इन्होंने ऐसे ही नाम लिखा है, तो चलिए उनके लिए गाना हम डेडिकेट करते हैं। और बाकी हमारे जितने भी दोस्त हैं, सूर्या हाय हाउ आर यू, थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम फिजी, thank you so much, I'm sending you lots of love back to you in Fiji and to all those listeners jo hame Fiji island mein is samay sun rahe hain।
2: You're listening to RM3 Radio Man।

0: सुहाना सफर।
1: वो गाना सुना है, ढूंढो ढूंढो रे बालमा, ढूंढो रे बालमा मोरे कान का बाला। लेकिन यहाँ पर ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी पड़ जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके गाने पे कितना फास्ट हम उसको ढूंढ पाएंगे। और प्लीज़ ये जो बार बार वही गाने की फरमाइश मत करो, कुछ ऐसे गाने मांगो ना जो सुनने में भी अच्छा लगे। और प्लीज़ मंडे है, 1st of June है, रुलाने की बिल्कुल कोशिश भी मत करना मुझे, ना मैं रोऊंगी ना किसी को रोने दूंगी, ठीक है। इंदिरा राम दुनिया जी, थैंक यू सो मच, आपकी बेटी प्रतिमा चेष्टा रैना हांसले और आदेश के लिए गाना होगा। और साथ में यहाँ पर हमारी कतीबा मंगर जुड़ी हुई हैं, कैसे हैं जी, सलाम आपको। उदा फारिस, हेलो हाउ आर यू। गुरिंदर कंबोज हमारे साथ, वी हैव वनीता जी, जी हाँ हर हर महादेव आपको। मिस्टर नुरैद्दीन बुराही, शारदा लखनौत, वी हैव केती कास्मिता जी, ओ सर साथ में इंदिरा मताव सिंह, अब्दुल रिशाद, बृंदा पतर, रीना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू। नाजीमा गोवर्धन, कैसी हैं आप, सब बढ़िया सब ठीक। चलो पूजा, एक्चुअली इनका नाम है पूजा, त्रियोले से मैं याद करी, लेकिन यहाँ पर इनका

नाम लिखे हैं पूजा, जाना मत है अभी, जाना मत. एंड यहाँ पर उदा फारिस कहते हैं सलाम फ्रॉम इंडोनेशिया. ओ माई गॉड, वाओ नाइस, थैंक यू सो मच. हाई मनीषा जी, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. यहाँ पर थ्रियोले से काफ़ी सारे लोग हमें सुन रहे हैं, उनको भी कहेंगे थैंक यू. और यहाँ बिंदा जी कहती हैं गाना लगाएगा वो किसना है जी. एक्चुअली हम लोग यहाँ पर सिर्फ पुराने गाने चलाते हैं, नए

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। और ब्यूटीफुल सॉन्ग, दर्द फिल्म का गाना था, लेकिन इस गाने में इतना प्यार है, लता जी की आवाज में प्यार तो जैसे टूट टूट के छलक रहा था। एंड उम्मीद करती हूँ आपने गाने को ज़रूर पसंद किया होगा। वैसे यहाँ पर एक गाने की फरमाइश की है मनीता जी ने, तो मैं थोड़ी अभी कोशिश कर रही हूँ आपके गाने को ढूंढने के लिए। डोंट वरी, मैं ढूंढ लूँगी गाना। आपने वैसे गज़ल की फरमाइश की है और बहुत रेयर होता है यहाँ पर हम गज़ल चलाते हैं, सो मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है कि मैं गाना ना चलाऊँ। कभी चला नहीं, तो मैं कोशिश करती हूँ। अभी जो गाना होगा आपके लिए होगा। और रीना थैंक यू, सूर्या आपने कहा कि आपका फेवरेट गाना है, क्या बात है। रेखा हाय नमस्ते, कैसे हैं आप। आपने कहा कि आंखें खोलो। गुरिंदर जी मैं ढूंढती हूँ गाना, अभी मैं ढूंढ रही थी, मैं कुछ और गाने भी ढूंढ रही थी। और यहाँ पर परी कहती है एक काम करो वेदिता, आप ना अपने पसंद के ही गाने चलाओ, क्योंकि हमें आपके पसंद के गीतों पे कोई डाउट नहीं है, हमें पता है आपने गाना चलाया है तो अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच माय डार्लिंग परी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट कि हमारी पसंद आपको पसंद है। रोशन जी गुड आफ्टरनून, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थोड़ी देर में आपके लिए गाना होगा और गज़ल तो मैं ज़रूर चलाऊँगी। और आपने कहा कस्मे वादे प्यार, कस्मे वादे ये वाला या कस्मे वादे प्यार वफा सब। आज मंडे है, प्लीज़ मुझे रुलाने की कोशिश मत करा। और यहाँ पर परी कहती है मेरा मूड तो रोमांटिक हो गया माधुरी, ऐसे रोमांटिक मौसम में एक दो तीन चार करते हुए आ गई, उसके बाद तो कोई नंबर है ही नहीं ना। चलो शवि हाय आपका वेलकम है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अनीता रामधनी आपका मुझे नहीं पता, सभी मम्मा के लिए गाना मांगा है। ओके अनीता जी चला देंगे। चलिए अभिषेक राम गुलाम हमारे साथ हैं, नमस्ते अनिल जी कैसे हो। लैला फिल्म का गाना मांगा आपने, लैला में लैला, नहीं ये वाला नहीं है, कोई और है। कविता अनु बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहते हैं पेरिस सेंट जर्मेन के लिए गाना चला दीजिएगा प्लीज़, मुझे पता है मॉरिशस में पेरिस को नहीं पसंद। अरे ऐसे कैसे मनीता जी आप बोल रही हैं, ऐसे थोड़े ना बोलते हैं, पता है कितने सारे फैंस हैं।
1: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
0: चलिए भाई झूमते झूमते घूमते घूमते यहाँ पर साहिल भी आ गए। हेलो साहिल कैसे हो बच्चा। बीमा पैंथिया जी, अंजनी हनुमान आपका भी वेलकम है। मिस्टर नासिर कैसे हो आप। चलो यहाँ पर सभी साथ आ गए हैं, तो साथ में मिलकर अगला गाना भी गुनगुना लेते हैं। ऋषि हमारे साथ हैं, चलिए गाना आपके लिए काम कर रहे हो। बोंको आज टू यू माया राम दोस्त, हर हर महादेव। हमारे साथ हैं यहाँ पर प्रतिमा महावर, आपका भी हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, स्वागत है। चलिए अगले गाने को गुनगुनाते चलिए हमारे साथ झूम।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: सुहाना सफर सफर सुहाना तब होता है जब हम सफर साथ में होते हैं और फिर हमारे साथ गुनगुनाते रहते हैं। तो चलिए हमारे इस सफर में कौन हमारे साथ हैं जान लेते हैं। सिमला बिजादर जी हमारे साथ हैं एंड जो अगला गाना होगा आपके लिए हैप्पी मंडे। जीतन दुलवा जी नमस्ते, कहते हैं सर्दी के मौसम में गाने कमाल के हैं, थैंक यू। स्वराज हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप? तो फाइनली ज्वाइन कर लिया हमें, थैंक यू सो मच। फिजी से हो ना? हाँ, इफ आई स्टिल रिमेंबर। हाय रेशमा राम की सुन, कैसी हो मेरी जान? इंडोनेशिया से वी हैव जूजी, ओके हाय। इंदिरा नौबत फ्रॉम साउथ अफ्रीका, नमस्ते जी। एंड चलिए जी यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करेंगे रिक्शा के लिए। हेलो सिस्टर, ठीक ठीक? अरे भाई ठीक ठाक, एकदम ज़बरदस्त, एकदम मस्त, ठीक है। और यहाँ पर इंदिरा नौबत जी, नेक्स्ट गाना आपकी मॉम के लिए होगा और साथ में ये गाना हम डेडिकेट करेंगे रागिनी जी आपके लिए, कहते हैं ब्यूटीफुल मंडे, राइट? टुडे इज़ 1st of June, है ना। हाय नजीमा, कैसे हो आप? तो यहाँ पर नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे आप सभी दोस्तों के लिए। वीना फ्रांस से हैं, मंजुला कॉलेज सर हमारे साथ में है एंड आपने गाने की फरमाइश की है स्वराज जी, आज पुरानी राहों से आज पुरानी। देखो मैं कोशिश करूँगी इस गाने को अपने प्रोग्राम में फिट करने की, अगर मुझे लगा कहीं मैं फिट कर सकूँ तो फिट करूँगी, वरना मंडेज में हम टूटे हुए दिल की दास्तान नहीं सुनाते, हम हैप्पी वाले गाने चलाते हैं ताकि पूरा वीक हमारा हैप्पी हैप्पी चले, ठीक है। अभी गाना कौन सा होगा? रेणुका जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ओके ऐसा करते हैं, अभी एक गाने की फरमाइश आई थी और मनीता जी कब से ढूंढ रही थी ये गाना। हाय रोहित, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सुरीनाम एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मॉरिशस।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: शिली जी, आहिस्ता आहिस्ता करके हम पहुंच गए हैं, यहाँ 12:50 हो गए हैं। विदिता का साथ दे रही हैं, प्रोग्राम है RN3 रेडियो मनोरंजन पर आपका अपना सुहाना सफर। चलिए वेलकम करते हैं हम रोहित का। हाय रोहित भाई, हमारे साथ कितने सारे लोग हैं जो दुनिया के कोने कोने से निकल कर जुड़े रहते हैं, चाहे वो फिजी आइलैंड हो, चाहे वो ट्रिनिडाड हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो UK हो, हर जगह से हमारे दोस्त यहाँ पर आकर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सो रोहित, रामनाथ, रघुनाथ, आशी, हिमेश, शमा, इन सबका हम स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, किसी ने कहा है कि आई एम सो सॉरी, मुझे बस 1999 के गाने पता हैं, बस यहीं से हम गाने मुझे पता है, उसके बाद से मुझे कुछ आता नहीं, मुझे बस कुछ कुछ होता है आते हैं। अभी घबराओ नहीं, गाने चलने लगेंगे ना, बहुत कुछ होने लगा।

0: क्या बहुत कुछ याद आने लगेगा आपको, बस साथ देते रहिएगा। एंड चलिए, आशी कहती है मम्मी तो मॉरिशस में है और मैं उनसे बहुत दूर, मम्मी को बहुत मिस किया मदर्स डे पे। कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी का प्यार पहुंचा, डोंट टेल मी नहीं पहुंचा, पहुंचा ना। हाँ चलो जी, यहाँ पर हमारे साथ भी और भी बहुत सारे लोग हैं। चेतना जी कहती हैं कि नेक्स्ट गाना प्रभात, बेटी श्रेया के लिए, और साथ में ये गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे आप सभी लोगों के लिए। जी बिल्कुल, गाना होगा आपके लिए टू हस्बैंड गणेश, एंड ये गाना होगा प्यारा सा गाना आप सभी लिसनर्स के लिए, साथ दे रहे हैं हमारे जो ड्राइव कर रहे हैं, एक्चुअली उनके नाम डेडिकेट करते हैं गाना।
1: RL Free Radio.

0: सुहाना सफर
1: कस्में वादी निभाएंगे हम मिलते रहेंगे जन्म जन्म भाई मैं अगले दिन आ जाऊं यही काफी है लेकिन चलिए यहां पर नेक्स्ट गाना ज्योति गोली अंशू किरण कतूना ब्रिंदा भावना बोरब मोहिनी और अनुराधा के लिए हम डेडिकेट करने वाले हैं और ये गाना हमें लेके जा रहा है 1 बजे के समाचारों की ओर एंड वी से अ बिग हेलो यस वी हैव फिजाल फ्रॉम ला डिफेंस फ्रांस हाय कैसे हो हाउ आर यू ऑल गुड ओके तो यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा आपके नाम डेडिकेट करते हैं एंड मैं कोशिश कर रही हूँ गाना ढूंढने की चलिए इसी के साथ कविता है मोचिदा से ये गाना आपके लिए आर सभी जमन फैमिली के नाम ये गाना हमें लेके जा रहा है किधर भाई वही समाचारों की ओर जो आप सुनेंगे 1 बजे तो साथ देते रहिए और जितने भी लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया मिमी थैंक यू सो मच फॉर लविंग द सिलेक्शन एंड अनुराधा जी चलिए धीरे धीरे करके गाना आपके लिए एंड सलीमा का हम वेलकम करते हैं और साथ ही साथ ये गाना जो है डेडिकेट करते हैं हम शैला बाबूराम के नाम
2: RM3 Radio.

0: जी हाँ दोस्तों, घड़ी मिलाते चलिए क्योंकि अब थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं समाचारों की ओर और समाचार आप सुनेंगे हमारे साथ। चलिए भाई प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं और आपके लिए गाना हम लेकर आएंगे 1 बजे के समाचारों के बाद।
1: नमस्कार मनीष माँ, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मॉरिशस को इलाकाई मेडिकल हब बनाने की महत्वाकांक्षा अब स्वास्थ्य तकनीक क्षेत्र में नए निवेशों के माध्यम से साकार हो रही है। मेडी विजन लिमिटेड मोका स्मार्ट सिटी में मेडिकल डिवाइस बनाने वाली एक फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त है और ये अंततः 1 बिलियन से अधिक रुपए के निवेश का प्रतिनिधित्व करेगी और नए कुशल रोजगार सृजित करेगी। युवकों में तंबाकू और निकोटाइन का सेवन साथ ही वेपिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व तंबाकू रहित दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया जिसका विषय रहा अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटाइन एंड टोबैको एडिक्शन।

इसका उद्देश्य रहा तंबाकू, निकोटाइन और वेपिंग उत्पादों से जुड़े खतरों के प्रति रोकथाम और जागरूकता को मजबूत करना, विशेष रूप से युवकों के बीच। विश्व स्तरीय डिग्री आजकल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य उन देशों पर निर्भर करता है जहां स्नातकों को रहने और काम करने का अधिकार प्राप्त है। जी हाँ, ये जानकारी शिक्षा पर आधारित हेनले 2026 की रिपोर्ट में सामने आई है। ये इंडेक्स उन 15 देशों को स्थान देता है जो न केवल उत्कृष्ट शिक्षा बल्कि कैरियर के अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता भी प्रदान करते हैं। विदेश में अमेरिका ने कहा है कि उसने सप्ताहांत में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जबकि तेहरान ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास एक सप्ताह के भीतर तनाव बढ़ने की तीसरी ज्ञात घटना है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। एसएसओ लिन लिस्कालिये में 50 साल के 50 years old श्री रोदी नागाया, जिन्हें लोग कृष्णा नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनकी माँ लक्ष्मी नागाया के मकान एसएसओ लिन लिस्कालिये से उठाकर मारी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: मैंने कुछ खोया है और मैंने कुछ पाया है, आपने कुछ खोया नहीं, आपने बस पाया ही पाया है।
1: सुहाना सफर।
0: दिन के 1:07 हुए हैं, हम साथ साथ हैं और आज है मंडे 1st of June। कैसे हो जी? सब बढ़िया, जिंदगी खूबसूरत चल रही होगी, हम यही उम्मीद करते हैं। और चलिए इसी के साथ हमारे सेकंड आवर में भी आपका हम स्वागत करते हैं। काफ़ी खूबसूरत गाना मेरे सजना फिल्म का आपने सुना अभी, मैंने कुछ खोया है मैंने कुछ पाया है। यहाँ पर जो भी आता है कुछ नहीं खोता है, बस पाता ही पाता है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारा प्यार। हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसी फैमिली जो आपके साथ हमारे गानों को इन्जॉय करती है और यहाँ पर एक अलग फैमिली बनाती है ना। यहाँ पर हम आशा लखनऊ, निदेश साथ में, जिस विगैन, ए जे और अंजू के लिए, शर्मिला रामभरत, विशाल, जय, कल्याणी, हरी, इन सब के लिए गाना डेडिकेट करते हैं। एंड साथ ही अभी तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं ऑफिस में जो लंच के लिए निकलते हैं और साथ बैकग्राउंड में हमारे गाने चलते हैं। तो चलिए हम किशोर दा की आवाज़ के बाद अब एक ऐसी आवाज़ को सुनते हैं जो दिल को सुकून देता है। गाना ही कुछ ऐसा है, फिल्म का नाम है हर चाई, लता जी की आवाज़ में। एंजॉय कीजिए हमारे इस प्रोग्राम का अगला गाना।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपके लिए हम लेकर आए। जी हाँ, प्रोग्राम है आपके लिए सुहाना सफर, जहाँ पर खूबसूरत पुराने गाने आपके लिए लेकर आए हैं हम।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: चलिए इसी के साथ जो हमारा अगला गाना हम विद्या नायको के नाम डेडिकेट करेंगे, और साथ में ये गाना जाएगा आपके लिए, कहते हैं हेलो गुड़िया रानी। नेक्स्ट गाना मेरे लवली सिस्टर शिमला सिसाहा के नाम प्लीज़ डेडिकेट कर दीजिएगा, ज़रूर क्यों नहीं। और साथ में ये गाना जाएगा आप सभी के लिए। यहाँ पर हमारे साथ वैदेही जुड़ी हुई हैं, कैसी है मेरी बहन? आपकी बहन बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सलोनी गयादीन जी, नमस्कार स्वागत है आपका। और मनीता जी, हमने इतना कोशिश किया और हमने आपका गाना चलाया, आपने गाना मांगा, हमने वर्ड वर्ड करके जाके ढूंढा आपका गाना, और चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, हमने पूरा आहिस्ता आहिस्ता करके ढूंढा ताकि गाना मुझे मिले, और हमने गाना चला रहा, अपने गाना नहीं सुना। ऐसा कई बार होता है जब आप हमारे से गाने की फरमाइश करते हैं, वैसे आपके पास कनेक्शन का प्रॉब्लम था लेकिन गाना हम चला चुके हैं, आई एम सो सॉरी, लेकिन आपका गाना चल पड़ा। अभी फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट गाना जो होगा हम संजय बुधवा के नाम डेडिकेट करेंगे, और वी हैव अ मैसेज, सलाम फ्रॉम पाकिस्तान, सो थैंक यू सो मच हमें याद करने के लिए, आपने हमें याद किया, हमने आपको याद किया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना होगा

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: चलिए जी, ये सफर है सुहाना और सुहाने से सफर को अभी और सुहाना बनाएंगे हम अगले गाने के साथ, जो कि हमने लिया है आपके लिए दौड़ दो पांच फिल्म से। गाना आप सुनेंगे किशोरदा की आवाज में। आशा जी, ये गाना आपके नाम डेडिकेट करते हैं और शैला जी आपके लिए भी। और गाना होगा ये प्यारा सा आप सभी लिसनर्स के लिए जो ड्राइव कर रही हैं।

जो मिला खो गया क्या मेरे पास है, दर्द ही दर्द है।

सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए जी, सुहाना सफर प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं और हमारे साथ अभी जो अगला गाना होगा हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये है दो दिलों की दास्तां फिल्म से अमित कुमार की आवाज में। ये गाना हम हेमा दुखित, विनीता और उनके हस्बैंड विनंदन के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। और शायद बहुत बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत बहुत सारे मैसेज हैं, शायद मैं बहुत सारे नाम को मिस भी कर रही हूँ और बहुत सारे मैसेजेस को भी मिस कर रही हूँ क्योंकि सारे के मैसेज ऊपर जा रहे हैं। कुछ चलो देखते हैं, प्रेमा और यज्ञ और दिवेश के नाम चलिए डेडिकेट करते हैं।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिंद बांधे बंध जाते हैं, है ना. रेशमा जी, हैप्पी मदर्स डे टू यू. थैंक यू सो मच. चलिए जी, यहाँ पर मनोज प्रीति आज हमारे साथ सेवास्तोपोल से हैं. स्वागत है आपका प्रोग्राम में. और इसी के साथ हम जो नेक्स्ट गाना होगा डेडिकेट करते हैं अशोक और सुकवंती जी के लिए. हैप्पी मदर्स डे. और ये गंगाराम फैमिली की तरफ से सबके लिए, शहनाज मुकीम, राधिका बिस्वानी, जमन, सभी हमारे साथ हैं. थैंक यू.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: यस ये है आपका सुहाना सफर। वैसे कर्नेल सिंह जी इटली से हमारे साथ हैं, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे गाने पसंद आ रहे होंगे। सिला जी नेदरलैंड से हैं और सहनाज बिस्वानी जी, आप सबको हमारे प्रोग्राम में हमारे गाने पसंद आ रहे हैं उम्मीद करती हूँ। और यहाँ पर एक गाना सीता श्वेता देवांश इक्वायोस से साथ दे रहे उनके लिए होगा। और साथ में ये गाना सरोज जी आपके लिए, विक्रम मबूबन आपके नाम, और साथ में रात का नशा भी। ओ माय गॉड, ये गाने हम नहीं चलाते भाई, ये पुराने गीतों का प्रोग्राम है और पुराने गीतों के लिस्ट में हमारे पास अभी बहुत सारे गाने हैं। और साथ में सुल्ताना खानदाई प्रेमिला हमारे साथ है, थैंक यू, वो हमें सुन रही हैं फ्रॉम बेल्जियम। ओके तो चलिए भाई, बेल्जियम वालों ये नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए, लेकर आए हैं आपके लिए सात समुंदर पार।

0: You're listening RM Free Radio Radio Radio.
1: चलिए इसी के साथ अगला गाना फिया यलेश रेखा और सभी फैमिली के नाम. वैदेही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और चलिए समुंदर में भी काफी ठंड है, नहाने की कोशिश ना करें, जाना है तो जब धूप हो तब जाना और आराम से. मम्मी रुमावती सुखा के लिए पापा जगदीश के नाम, यह वनीता की तरफ से.

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर दिन के 1:50 मिनट हुए हैं और ये गाना कहते हैं कि भाई यादव अमरीश कहते हैं मेरी सिस्टर की याद आ गई, ओ सिस्टर की शादी हो गई। चलो जी नेक्स्ट गाना हम सरोज की तरफ से उनके लेट मॉम के लिए, कहती है मदर्स डे था ना उनको याद करियो। जी बिल्कुल, यहाँ पर गाना हमने चलाया। दिनेश गोपी नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, वेलकम करती हूँ मैं। एंड कहते हैं ना कि जब बेटी जन्म लेती है तो कहती है पराया धन है, कहते हैं कि ससुराल इसका अपना घर है, पर ससुराल जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि ये उसका घर नहीं है। तो कमाल है ना, एक लड़की जब जन्म लेती है तो पहले से डिसाइड हो जाता है कि जहाँ पर वो जन्मी पली बड़ी वो घर उसका नहीं, शादी करके जहाँ पर वो सारे रिश्ते निभाते हैं वो घर भी उसका नहीं। तो आखिर एक लड़की का घर होता कहाँ है? बेटियों को बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ और उनको इतना आप लोग एनकरेज करो कि बड़ा होकर वो जब काम करना शुरू करे तो पहली चीज़ अगर वो कुछ खरीदे तो वो अपना घर खरीदे, फिर बाद में कुछ भी हो कम से कम आपको पता है ना कि बेटी के पास अपना घर तो है। चलिए उसके लिए बहुत सारा प्यार और मनीता जी हमारे साथ हैं एंड मणिप्रिया साधना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वेलकम है, स्वागत है आपका प्रोग्राम में।

और साथ में सभी फैमिली के नाम और हमारे साथ है विद्या लक्ष्मण कहती है मौसम सुहाना है और प्रकाशवती जी आपकी सहेली है जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है ना तो प्रकाशवती जी की तरफ से विद्या लक्ष्मण के लिए हम गाना

वैसे प्रकाशवती जी कहती है कि मेरी जो सहेली है वो रॉटरडम से जुड़ी हुई है, तो हेलो थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंदनी सीलाराम सामी का भी हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं जो हमारे साथ अभी अभी जुड़ी हुई है।

चाहिए थोड़ा प्यार और थोड़ा प्यार ही चाहिए हमें भी। चलिए बबीता जी, आपने काफ़ी देर से हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी स्वागत है आपका और थैंक यू सो मच हमारे सभी लिसनर्स को जो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहे। चलिए इसी के साथ हमारे जाने का भी टाइम हो गया है, अब थोड़ी देर में हमारी आपकी मुलाकात

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस को इलाकाई मेडिकल हब बनाने की महत्वाकांक्षा अब स्वास्थ्य तकनीक क्षेत्र में नए निवेशों के माध्यम से साकार हो रही है। मेडिवेशंस लिमिटेड मुका अस्मार्ट सिटी में मेडिकल डिवाइस बनाने वाली एक फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त है और ये अंततः एक बिलियन रुपये से अधिक निवेश का प्रतिनिधित्व करेगी और नए कुशल रोजगार सृजित करेगी। युवकों में तंबाकू और निकोटाइन का सेवन साथ ही वैपिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व तंबाकू

0: तंबाकू रहित दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इसका उद्देश्य रहा तंबाकू निकोटाइन उत्पादों से जुड़ी खतरों के प्रति रोकथाम और जागरूकता को मजबूत करना। विश्व स्तरीय डिग्री आजकल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य उन देशों पर निर्भर है जहां स्नातकों को रहने और काम करने का अधिकार प्राप्त है। ये जानकारी शिक्षा पर आधारित हेनले 2026 की रिपोर्ट में सामने आई है। ये इंडेक्स उन 15 देशों को स्थान देता है जो न केवल उत्कृष्ट शिक्षा बल्कि कैरियर के असर और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता भी प्रदान करते हैं। विदेश में अमरीका ने कहा है कि उसने सप्ताहांत में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जबकि तेहरान ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक अमरीकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास एक सप्ताह के भीतर तनाव बढ़ने की तीसरी घटना है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने आत्मरक्षा के तहत हमले किए हैं। उनके अनुसार ये कार्रवाई ईरान की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन को मार गिराना भी शामिल है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। एसएसओलिन निस्कालिये में 50 साल के 50 ईयर्स ओल्ड शेहोदी नगया, जिन्हें लोग कृष्णा नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुपहर के तीन बजे इनकी मां लक्ष्मी नगया के मकान एसएसओलिन निस्कालिये से उठाकर माहिजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 3 PM। नंबर 22 रवलेन उकुले क्यूपिप में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री करणदेव अलियाओ, जिन्हें लोग करणदेव नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे इनकी पत्नी लीला देवी अलियाओ के मकान नंबर 22 रवलेन उकुले क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: RM3 Radio.
2: संस्कृति की बातें,
3: नमस्कार। संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस समय इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मनोरंजन पर हो रहा है, साथ में MBC के फेसबुक पेज पर भी, और फिर इस प्रोग्राम का प्रसारण MBC TV के तीसरे चैनल पर भी होगा। हमने कल एक बहुत बड़ा दिन मनाया, एगो बहुत बड़ा दिन मनाए ली जाकाल मॉरिशस भर में, और उरहल मातृ दिवस। मातृ दिवस और संस्कृति और संस्कार, ये तीनों साथ साथ चलेला। तो कैसे सकब जा इस विषय पर बातचीत नहीं करे, इस विषय पर बातचीत करे खातिर आज हमने संगे एगो बहुत बढ़िया, एगो बहुत विशेष मेहमान हवन, और आप हव श्रीमती दमयंती बिहारी पौरे। श्रीमती दमयंती जी नमस्ते, कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। श्रीमती दमयंती बिहारी पौरे जी आज एगो रिटायर्ड अफसर हवन, आज आप घर पर और समाज में कार्यरत हवा, और अपन परिचय के बारे में अभी थोड़ा और आप खुद बताइबा। लेकिन दमयंती जी एगो माँ हवन, माँ के साथ साथ आप शिक्षिका रला, और अध्यापन के बाद आप रेक्टर बनला, दुगो ऐसन स्कूल के रेक्टर जहाँ पर लड़की लोग रलन सा, और उ रहल गाइतोगिनाल और धूपना थम्फुल। दमयंती जी आपके बहुत बहुत स्वागत बा। जैसे आप जानत हवा काले को बड़ा दिन रहल मॉरिशस भर के सब व्यक्ति खातिर, उ चाहे बेटा रही, बेटी रही, पिता रही, माँ के सम्मानित करे खातिर काल देश भर में बहुत हलचल रहल, बहुत खुशहाली के माहौल रहल। लेकिन जब माँ की बात करी ला जा, तब माँ के साथ साथ हमने के संस्कृति और संस्कार के बात याद आवेला। आप सहमत हुई बा, आप खुद एगो माँ हवा, कि माँ ही वो पहला व्यक्ति है जे एगो व्यक्ति के, चाहे वो बेटा रही या बेटी,

0: आगे ओके संस्कृति संस्कार और परंपरा के बात सिखावेला एक बारे में हमने के आज थोड़ा बोला
1: ये तो सब कोई जाने जा कि माँ के गोद ही सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। जैसे कि एगो बच्चा जन्म लेवेला पहला माँ के गोद में आवेला, माँ के गोद में आवेला माँ के संगे सटेला उनकर फीलिंग्स उनकर उनका हॉट बीट सब सुनेला और जब दूध पिएला माँ के तो और जस्ती माँ के साथ और जुड़ जाला और माँ ही है वही व्यक्ति है जो लड़का के भविष्य सब माहौल कर बनावेला उन्हीं के हाथ में है एगो लड़का के भविष्य बस जैसे जैसे जैसे जन्म लेलक उनका पालन पोषण करियन उनका सीख जब जब जैसे कि टाइम आयल जब उस समय आयल तो उनका बोले के सीखन सब कहते साइन सीखन और बहुत बहुत अच्छा अच्छा संस्कार भी सीखन जैसे जैसे बड़ा हुई था जैसे कि प्रणाम करे के या कोई आए तो कैसे संस्कार करके कैसे बड़ों के आदर करे के जैसे जैसे बड़ा होला लड़का तो एगो माँ उनका अपन बच्चा को सब चीज़ सिखावेलन ताकि लड़का सोसाइटी में सके अच्छा अच्छी तरह से घुल मिल जाए जैसे कि जाए जैसे पाठशाला शुरू करे जाए के तो सखी मिलजुल के अपन अपन दोस्त लोग संगे जिए और पढ़ाई अपन करी अच्छा से मिल जुल के तो माँ ही उनका ये सब सिखावेला जैसे कि स्कूल जाए कि आगे माँ मोरी अच्छा से पढ़िया और सब दोस्त संग से अच्छा से रह के झगड़ा नहीं करके खेले के सब कोई से पा गई जमें कि एको डिस्टिंक्शन नहीं लड़का के ऐसे बनाएला सामनी बड़ा करेला सा जमें लड़का के एको सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुई कि नहीं कि इन्फेरियर सोच हुई क्या सुपेरियर सब लड़का लोग एक ही समान रहेला एगो स्कूल में और जो लोग काम कर लन जा स्कूल में वो लोग भी सब लड़का लोग एक ही तरह से देखे लन जा हमके याद बा जब हम स्कूल में रही थे हमारे बगल में एगो चाइनीज छोकरी बैठा था हमारे कमागात तो हमारे बहुत बड़ा कमागात इधर हमारे दूसर बगल में एगो क्रिश्चन छोकरा रहा तो हमारे बहुत बड़ा कमागात में कोनो डिस्टिंक्शन नहीं रहा बस सब संगे घुल मिल के बढ़ते हैं तो माँ ही सिखावेल लड़का कैसे सोसाइटी में सकें फिट हुई एग्जैक्टली जैसे चाहेला
0: जरूर
1: कैसे चाहेला बोल चाल करे के और शेयर टू रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स बड़ों के आदर करे के और अपन मित्र लोग के भी आदर करे के कि नहीं कि कोनो व्योलामा कोनो वर्ड्स से बोल दिया कोनो शब्द जे ब्लेस हो जाए बिछाना जानी है कैसे रह के तो माँ ही सिखावेलन सब
0: हाँ और ये भी बोलल जला अभी जैसे हमने के दमयंती जी बोलत हवन कि एगो माँ अपन लड़का के सब संस्कार सब संस्कृति के बात ओकर जन्म से सिखावेला और जब एगो लड़का के देखबा ओकर व्यवहार देखबा वो कोनो भी उम्र के रही ओकर बोली सुनबा ओकर आचार व्यवहार से सबसे पहला दिमाग में या फिर यही सवाल आवेला कि केकर लड़का है इतना कुलचिवे इतना सुसंस्कृत लड़का केकर है मतलब कि माँ बाप के जोन चरित्र बा माँ बाप के जोन चरित्र ने बोलब जा कैसे लड़का के बड़ा करत हवन जा लड़का के भरण पोषण करत हवन जा कैसे लड़का के संस्कृति के बात सिखावत हवन जा ये सब नज़र आवेला मतलब कि आपके इंतज़ार नहीं चाहे करे के कब वो लड़का बड़ा हो जाए तब तोहरा नज़र आए वो पग पग पर नज़र आवेला और दमयंती जी आप अपन परिचय के बारे में थोड़ा बोला आप एगो शिक्षिका रहला फिर आप लेक्चर होइला तो ये जो जिम्मेदारी बा एगो माँ होते हुए जब आप एगो अध्यापिका हुआ और साथ में जब आप लेक्चर बनला जहाँ एगो पूरा स्कूल के बेटी लोग की जिम्मेदारी अब आप पर बा तो ये सब जिम्मेदारी थोड़ा अपन परिचय के बारे में बोलते हुए अपन जिम्मेदारी के बारे में बोला
1: अच्छा तो हमारे जैसे कि हम अपन कार्य जैसे बोला शुरू करनी जैसे स्कूल छोड़नी तो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हेलनी 18 साल के रहनी तो 2-3 साल वहाँ कर काम करनी प्राइमरी स्कूल में तब आप हुए हमके लोकाजो मिलल जैसे गनी MIE को वही सब करनी डिप्लोम हो गल तो जैसे अपन डिप्लोम कर देनी तो कहीं SSS में काम करी हमें सब SSS खुल रहा
0: तब वहाँ मरीज की बात करत हवा
1: SSS संजीजनव 1979 जनवरी SSS में हेलनी सा तब वहाँ पर बहुत काम करनी बहुत साल तब आप जब बाद में विदेश गई, हमारे पति जी विदेश गए काम करे तो हमू साथ में गए नहीं तो हुआ रहनी तो वहाँ पर अपन और अपन अथी पढ़ाई जारी रखनी तो वहाँ पर अपन लिसेंस और मैट्रिक करनी पागी में नहीं तो ला सब बंद में करनी अपन मैट्रिक और लिसेंस तब उधर से आनी तो फिर से अपन टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करनी।
0: मैं कौन विषय में आप अध्यापन के क्षेत्र में रहा कौन विषय कौन सब्जेक्ट
1: डिज़ाइन जलौत डिज़ाइन और हम कर रहे हैं अपन स्टडीज कंप्यूटर डिज़ाइन में तो कंप्यूटर और भी सिखाओन कौन के लोग कोर्स वर्क में सब और ऑटन डिज़ाइन के रहनी। मैं जब आईनी मॉरिशस आईनी तो फिर से यूनिवर्सिटी मॉरिस में मैनेजमेंट ये सब करने तो बाद में हमके लोकाशन मिला डिप्यूटी डायरेक्टर हो के तो हमारे जन कनेसांस रहा कि नहीं किसी से और स्टडी करनी दूसरी चीज़ भी स्टडी करनी तब हो गई नहीं डिप्यूटी डायरेक्टर और दो साल के बाद डायरेक्टर तो हमारे दुपना था फल में रहनी एजुकेटर और दूसरों लेकोल में सब ले नौ लेकोल में रहनी एजुकेटर में वहीं से हमके मिल रहा प्रमोशन डिप्यूटी डायरेक्टर नहीं डायरेक्टर के तब गई निगाई तो अरिनाल काम करे डिप्यूटी रहनी तो पाथामफल में एंड इट वॉज ए फॉर्मसी स्कूल तब गई निगाई तो अरिनाल में रहते बहुत हमारे लिए इतना बस हमें अकेले रहनी डिप्यूटी कुछ हमारे से और फॉर्मसिस कॉलेज में अपन जिम्मेदारी दिलाईनी।
0: और धूपनाथ खामफल के जब बात करा था वो एगो रूरल एरिया में बा
1: हाँ तो बंद एरिया में रहा मैं सब स्कूल के लोग के पागे नहीं रहा लोग के माहौल और लोग के जैसे कि बोला रियलिटीज ऑफ द स्कूल जैसे वहाँ पर अर्बन एरियाज शहर के लोग में वहाँ पर भी फॉर्म स्कूल रहा तो सब चारों ओर से आवता लेकर लोग ले नो ले सीट सब बस के दबके ऑप्शन वो लोग मरथल को ले सब गाँव गोब बेलोम माइबू लेमोन तमारें ये सब के गायतोरिनाल में आवे और धूपना तांफल में भी हमारे जिले रहा सुलियाक से भी सुलियाक कातोबोन सब पसी सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन वाइज तो चारों ओर के लड़का आवे में सबके पागे देखा था नहीं मैं हमके लौका था डिफेरेंस को लड़का पर दफ्योलो के रेजियों से मैं सेमा लेकोल में हम एक को डिस्टिंक्शन करनी सर सबके पागे ही देखा था नहीं सर और हमी के एगो अच्छा टीम रहा दोनों लेकोल में है मैं सेमा हमके सबके बोले बहुत बहुत सेवेयर रही मैं हम सेवेयर
0: नहीं रहे
1: तब आज उसे बनन सा सब रेसियो सा आज बड़ा बड़ा पुस्त में अब आवेलन सब मैडम यहाँ यहाँ और पारों लोग आज हमके बोला मैडम कुछ भैंस व्यवे उन भैंस तो देखा मैं हम सिनेमा हम जैसे थोड़ा बहुत है हम शिक्षा जिस नाल एग्जामे पास होकर जाएगी
0: जी हाँ
1: चाहे ना हमने के लोग के फ्यूचर बनाए के लोग के फ्यूचर सिटीजन एगो माँ बने के एगो पत्नी बने के सब क्वालिटी लोग में डाले के और हमेशा हम स्कूल में तो हम बहुत तोक कराओ थी बहुत थी कैसे बोला महानुभाव लोग से बोला बोलो के हमारे लेकोल में लोग से बात करे किए अच्छे तो लेडीज
0: फेमिनिस्ट
1: हाँ तो बस लड़के लोग के स्कूल में
0: हाँ जरूर
1: तो बहुत
0: प्रेरणा देवे के कि चाहे
1: रोल मॉडल जब मैं लोग मिली एक रेपे सोसाइटी में और वो लोग के बोलते नहीं हमेशा कि ऐसे नहीं को चीज़ का नहीं सकते रहें सर वो लोग के खिचा बोला और वो लोग के बोला बे जाने सर ये सब ना निकालो ये सब मटेरियल है बस कि हमके हमरो जीतो करे कि खुशी रहें सर में हम थोड़ा नहीं बोला स्टूडियो में मैं हम आज के इजिली ले होता नहीं वो लोग के बोलते नहीं सेमा वो लोग के खिचा में सेमा वो लोग के प्लीज खिस्सा होकर लोग नहीं वो लोग के बाहर के जनाब हम या सी मैं रिपोर्टिंग अब हायर लेवल नहीं करता नहीं बस ये कौन के नहीं अच्छा हुई अरे खाला इसने फेसबुक में बहुत नया अच्छा चीज़ रहा सर मैं साइबर क्राइम हम रिपोर्ट कर दें लोग देर जाके मैं सेमा हम जानिए होकर दिल आवाने ले जा बस सिलाई को आगे फ्यूचर ब्लैक लिस्ट से
0: जरूर
1: ये सब निकाले मैं लोग के देर आए खातिन मैं जमे कदम छाए रहते हैं फिर से नहीं रिपीट करें सब सब चीज़ में हम बताएं मैं सब सब लाइक कि हम बहुत से व्याल गए नहीं मैं आज लोग के जेनेट खाते लोग के वेल बींग और लोग के फ्यूचर आज मार ढोल बा खाली सचिका नहीं मिल बा लोग के बहुत अच्छा अच्छा काली देवा और बहुत जिले वजन बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट में बन सर और जब जहन से इंटरव्यू से जब सर धूपना था फल में गाय तो जान और जान लिविंग सर्टिफिकेट तो लोग सीख रहे तो जान सब के लोग मैं समझ आए ना हम लोग के बहुत खुशी रहनी हमके बेटी नहीं हम हम लोग के सब के बहुत खुशी रहता नहीं वो लोग के हम बहुत ही खुशी नहीं से
0: बेटी रह धरला
1: हाँ और हमके फिर दे में आए तो जान हमके कितना गाते कर सब लोग हमारे पास पोएम पॉसिबल बहुत चीज़ मैं हम लोग के खुशी रहनी वो लोग से सेवेयर रहनी मैं जब लोग इसी तरह से बहुत खुशी रहनी जहाँ ऐसा काम कर रहे हैं हमारे टीम से कि हमारे सात साल के बाद जब हमारे जो फॉर्म इन मेरा रहना सर आफ्टर आफ्टर फॉर्म सिक्स द स्कूल रिवर्टेड टू नेशनल कॉलेज तब फॉर्म इन से शुरू

0: करनी सा तो जब फॉर्म हमारे फॉर्म सिक्स गजिता मिला तो एस एस आ हमने के मिला किसी के नहीं फिर चार गो लोग यार बस जब अला सा फॉर्मिन से कतना वो लोग बेस ना वो लोग से काम करनी से इससे कि वो लोग के सब्जेक्ट सब में काली थी लड़का लोग के
1: जरूर
0: वो लोग के ऐसा कर काम करें से लोग कुराज के साथ पारों लोग भी मैं को पारों बोली मैडम तो आप हम एगो डिसीजन ले तो हमारे सीनियर मैनेजमेंट टीम के साथ लेकर डिस्कस करके कि नहीं वन मैन शो साथ लोग के सब के
1: सलाह मशवरा के साथ
0: हाँ लोग से आगे हम अपन सीनियर मैनेजमेंट और पेडागोजिकल टीम से बातचीत करके तब कब को जिले के लोग पाओगे बोला बोला फॉर्म सिक्स फिर से करके लो अच्छा है जाए फेल हो जाए फॉर्म सिक्स तो नहीं अच्छा अच्छा सी ए फेलियर इज नॉट गुड प्री तो रिपीट लेवल सिक्स शी विल बिकम स्ट्रॉन्गर कंपोजे तब अच्छा से लोग के बारे में इससे सोचा नहीं तो लोग भी वो लोग नहीं पूछे था सब शुरू में तब बाद में जब पास में था हाँ पाहूँ ना एक खाल हमको याद पाए गो आसानसा में याद एगो मीटिंग जो था गमीज दे जाओ तो एगो पाहूँ हम भुला जा रहा पाहूँ के वो लोग याद पा मैडम मैं तेल वो अपेल मैडम मुझे मुझे के दुबले मैं पास फिर मैं शाम सो बिया जाओ भी मैडम को मैं अभी फिर सी तू कि मोज enfants bien passé à celle et donc comment il veut faire tel manager dans l'hôtel responsable maman bien bien arrivé
1: moi parce que अभी भावक लोग आज भी तोहरा बधाई दे रंजा धन्यवाद दे रंजा
0: हाँ जैसे बात है कि हम ये नहीं चाहेला कि एगो माँ के चाहेला से वे भी रहे कि जब एगो लड़का ने अच्छा कही तो हमने के जे हमने के चाहेला लड़का के कोई से करे कि वो नहीं जा रहा कि लड़का के नहीं खुशी है सब हमने के लड़का के चाहे हमने के चाहे से वे रहे कि घर से
1: दे देगा बिगड़ जाए
0: हाँ तो चाहे लोग बैलेंस रहे कि नहीं कि खाली सब चीज़ जो लड़का मांगी दे दे देव नहीं रातम में जब समय आए तो चाहना दे कि नहीं सब चीज़ इजीली सब चीज़ दे देव नहीं जेफो करी लड़का एग्जाम में पास हुई तो के देव ओके अच्छे को रिवॉर्ड फॉर्म में आर ओके मिस ओके वजह अगर जीवन में वजह लमजा नहीं अनब
1: मैसेम
0: ओके प्रमोट करबा ओके अंकुराजे करबा ओके लात प्यार से दुलार से
1: दमयंती जी अभी जब आप इस सब बात बोला था और ख़ास तौर पर जब सख्ती के बात कर रहा था तका दिन भर माँ के बारे में रेडियो टीवी सगरो सुन लीजा माँ के बारे में खाली माँ के गुण पर ही माँ के लाट प्यार पर का बहुत गीत सुन लीजा फिल्म देख लीजा बातचीत सुन लीजा लेकिन सच्चाई तो यह कि माँ लोग इतना भी लाट प्यार नहीं दिले हवन सा बहुत सख्त रहल हवन जा हमने के माँ लोग हमने संगे और आज के भी माँ लोग के चाहिए ऐसा सख्ती बरते के और अभी आप जब बोला था कि आप माँ होते हुए जब एगो स्कूल में अध्यापन करला रेक्चर रहला तो आपके बहुत ज़रूरत रहल इस सख्ती बरते के ख़ास तौर पर जब अलग अलग माहौल से अलग अलग वातावरण से लेकर लोग आवत हवन जा एक ही गो जगह पर तब उन लोग के जब संगे बढ़े के बाद संगे पढ़े के बाद चरित्र निर्माण करे के बाद और अच्छा नतीजा आने के बाद तो ऐसा में सख्ती और अनुशासन बोलब जाए के डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी बात है और ये बात के ख्याल रखते हुए आप बोलत हुआ कितने लड़का लोग के भविष्य के निर्माण कर ले हुआ एगो माँ के रूप में तो कर ले ही हुआ लेकिन साथ में टीचर बन के भी रेक्चर बन के भी और आपके जो अनुभव बा आज ई मंच पर अब जब बाँटत हुआ तो सच में बुझाता कि माँ के जो जिम्मेदारी है वो खाली लाड प्यार देवे के नहीं
0: है
1: ऐसा बर्ताव नहीं करके है कि जब लड़का बड़ा हो जाए तो खाली ओकर पर गीत उत लिखते रही नहीं माँ के ओकर सबसे पहला जिम्मेदारी है सख्ती बरते के ताकि लड़का बिगड़ी नहीं सही आचार व्यवहार करी और इस विषय पर हमने के चर्चा अभी थोड़ा घड़ी में जारी रही आप ये प्रोग्राम सुना था संस्कृति की बातें रेडियो मनोरंजन पर ई बखत और हमने के फेसबुक पेज पर भी एक प्रसारण हुआ था और बाद में ई के टीवी के तीसरा चैनल पर भी प्रसारित करा जाए थोड़ा घड़ी में आपसे फिर मिलब जा फिर से हमने संगे थोड़ा घड़ी में ज़रूर जुड़िया

0: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सब कोई के एक बार फिर स्वागत बा। आज के हमने के विषय काल के जोन गतिविधि रहल ओकर से जुड़ल बा। हमने माँ पर पत्या थे जा, माँ के साथ साथ औरत के जोन अलग अलग स्वरूप बा, जहाँ पर वो लोग माँ के जिम्मेदारी निभावेलन जा, चाहे वो अध्यापक रही, चाहे वो रेक्टर रही, चाहे वो समाज सेविका रही। ये सब पर हमने के बातचीत करे खातिर मेहमान हवन श्रीमती दमयंती बिहारी पौरे जी। और दमयंती जी, अभी हम ये बात करत रह लीजा कैसे चाहे रहा अनुशासन डिसिप्लिन के साथ लड़का के बड़ा करे के, लड़का के सुसंस्कृत बनावे के, उन लोग के चरित्र निर्माण करे के, ख़ास तौर पर जब छोटा और जब किशोर अवस्था एडोलेसेंस में हवन सा कहे कि ये सबसे नाजुक स्थिति है, जब लड़का बहुत बिगड़ जाला या फिर लड़का के सगबा सिखावे है, ये लर्निंग एज भी है। तो आजकल देखत है जा लड़का लोग में संस्कृति और संस्कार के भावना जोन बा आगे जैसा नहीं बा, एकर पर तू का बोल बा और कहाँ पर हमने चुकत है जा, कौन सी चाहे करे के?
1: ये तो सच है कि अभी स्कूल रहे करे के और पहले जैसी नहीं है। बहुत बड़ा जैसे कि समझमा मतलब सा व्यवहार में लड़का लोग के आगे जाने ल हमने के माँ बाप हमने के बहुत अच्छी तरह से अकादे का तरह से हमें से वो लोग के लेता मिले, हमें से बचाए कि हमने के सिखाए कि कुछ हमने की हमने से वन टू वन हमने लड़की रहने से हमें से बचाए
0: कि एक्सटेंडेड फैमिली रहा, खाली माँ बाप नहीं रहा,
1: दादी चाचा चाची बड़ी माँ सब कोई से सीखा था बहुत चीज़
0: एक जगह से चुकला।

0: तो हम माँ के प्यार हो खाए के बनावत हम हाली लड़का लोग आके ये करे के लिए कुछ तो अब हिसाब उतना नहीं बा माँ लोग खाली जावे से काम से खरीद कराओत हम सत्य की तो जी के हमनी हम भी एगो माँ रहनी मैं अपन खाए के पकावत नहीं अपन काम से आप पका भारी जो नहीं हमके दे रही तो वही हम खिचड़ी पकावत हई जस्ती हाली से पकाए उगा खिचड़ी से आलू फुआ कर दे मैं से माँ हम रोज पकावन खाए के बहुत ऐप होता अभी है संस्कृति नहीं बा अब बहुत एक वे के हो गल है यहाँ पास को मन
1: तो यहाँ पर दमयंती जी बोलत हवन सबसे पहला बात तो ये है कि आपके चाहे अपन हाथ से खाना बना के लड़का के खिलाई के एक तो एकर से माँ के जो लाड प्यार बा माँ के जो खुद के चरित्र जो संस्कार बा वो लड़का तक पहुँचेला बोलल जरा जैसा अन वैसा मन तो जो खाइबा वैसे ही बनबा टेक अवे में कैसे खाना बनाता कमर्शलाइज खाना कितना नमक कितना चीनी कैसन किस्म के मेजन घर में बा कुछ एकर कोनो कंट्रोल नहीं बा जबकि घर में माँ जानत हवन का बनावत हवन कितना प्यार से वो सब प्यार में हो जाता
0: बुइयों का दाल भाजी चटनी पमदामू के हवे बनावत रहन हमार माँ बहुत मालूम गर्दन से पहले हैं हबी ले करे लंजा मैं कोनो कोनो नहीं करे लंजा और पहले जैसे जब माँ लोग जाता काम करे तो चाची लोग रहे घर में इस पर दादी लोग लड़का लोग जैसे स्कूल से हंस तो लोग के आका धर कर जा उनका दी हंस खाए पिए खा भी वो सब नहीं लड़का लोग हंस लिखल से तय के लिए हंस स्कूल से हंस तो के लिए हंस जब रात की माँ बाप आई लोग के सिचुएशन जी फिर मैं से माँ एगो माँ बहुत चीज सही करे जो के मन नहीं करेगी तो जजीर के अपन कुछ अपन प्लानिंग सबसे बड़ा चीज है मैं अपन लड़का खातिर एगो माँ के चाह लकर खाना तैयार करे भोजन बहुत प्यार से कैला जा
1: हाँ ये तो बात रहल कैसे चाहेला घर में खाना बनावे के लड़का के खियाई के अब हम ही अनुशासन के बात करते लीजा लड़का लोग आजकल एक तो खाना घर पर नहीं बनाता अब और कौन कौन ऐसा फैक्ट है बाकी लड़का लोग आज बिगड़ जाता वन जा लड़का लोग गाल चलावे लन जा वो चाहे स्कूल में रही चाहे सड़क पर रही देखा था वो कितना समस्या नजर आवा था सब एगो समय में ये सब नहीं रहल कोई बोलेला रहल लेकिन सोशल मीडिया नहीं रहल लेकिन आप एगो अनुभवी व्यक्ति हवा एगो माँ हवा आप छात्र छात्रा लोग संगे बहुत काम कर ले हवा आपके नहीं लौके था कहूँ एगो कड़ी टूट गल बा जहाँ पर लड़का लोग थोड़ा जस्ती बिगड़ गल बा आज
0: तो जान लो कहे सब भूलबा बस कि जान एन मोहम्मद कैसे बताई लड़का लोग दिल्ली से गल मोहम्मद अपन घर में भी जब स्कूल में आवेलन जा तो हम मौक मौवा रहेला स्कूल में हमने काम कहला सब लड़का लोग एक एक ही तरह से देखिला जा सब एगो लड़का कोनो अथी बैकग्राउंड से कोनो रिलीजन के सब लड़का बराबर है
1: जरूर
0: मैं कोनो एक जो चीज जो रोल एगो माँ बाप सकी आने वो लड़का के जीवन में स्कूल नहीं सकी अब कमी वहाँ
1: पूरा करे
0: चाहे ना वो लोग के अपन अपन रोल प्ले करे वो लोग के चाहे ला अपन अपन रेस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करे के
1: जरूर
0: चाहे ला बस ये लोग नहीं देव था मजा बस टाइम बस जैसे समय अपन बच्चा लोग संगे
1: और ये जो समय नहीं देवत हवन सा ओकर में शायद लड़का लोग के कैसे अनुशासित करके उन लोग के डिसिप्लिन में रखे के ये सब बात भी एकर भी चूक हुआ था मतलब कि लड़का लोग नहीं सकत हवन उन लोग के सीखे के मौका नहीं मिला था कैसे आपके चाहे जब एगो बात आपके बोला गल तो वो बात सुने के कि एगो कोनो व्यवस्था होल बा तो चाहे ओकर मान सम्मान करे के जब एगो कक्षा में हवा या फिर जब सभा में हवा पब्लिक में हवा तो कैसे आचार व्यवहार करेंगे ये सब सीखे के जैसे व्रत हवा ये कड़ी आजकल कमती हो गल बा और चाहे एकर पर काम करेंगे
0: हाँ तो जहाँ लिकोल में अब सिकोलॉजी सभा में से बात कर घर से शुरू होला सब डिसिप्लिन एगो एगो कक्षा में जब 40 को बच्चा रहला जान जाबा कौन लड़का कैसन बैकग्राउंड से हलबा ओकर व्यवहार से घर से शुरू रहे सब जो लड़का के माँ बाप के नहीं मिलता बस समय वो लड़का दिले से हो जाता और जो लड़का के लंग आदर मिलता लंग आदर में तो वो लड़का दूसरे का ही रहला वो जान जाएगा अगर लड़का के और माँ बाप को समय देवा था और जो कि नहीं मिलेगा समय जो कर माँ बाप बहुत काम करते हों जाए रात रात सब लड़का उनके सब नहीं मिलता और लोग के होमवर्क में भी जाना नहीं देते जरूरत ना बस जान ला अकेले पढ़ जा रहा स्कूल से वापस जाना से तो लोग जैसी अपन मोबाइल टी वी ये सब लोग लोग कोई घर में नहीं बा

0: डिसिप्लिन वाले के
1: ज़रूर,
0: तो इससे उससे हो जाता
1: जरूर।
0: चाहे ला माँ बाप लोग के ज़्यादा टाइम दे के बच्चों के,
1: लड़का लोग के कौन किस्म के समय चाहिए देवे के किसी भी जैसा क्वालिटी टाइम, और फिर लड़का लोग के उन लोग के जो सहन शक्ति है उन लोग के जो आउटपुट है ओके कैसे जस्ती बढ़ावल जाए, कौन सी चाहिए करे के और कौन सी चाहिए नहीं करे के, ये विषय पर अभी थोड़ा घड़ी में हमने बचाव जा हमने संगे जुड़ल रहिया। फिलहाल ले जाए एगो छोटा सा विराम।

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सबके के एक बार फिर स्वागत बा रेडियो मनोरंजन पर और MBC के फेसबुक पेज पर ई बखत ई कार्यक्रम के लाइव प्रसारण हुआ था। और आज हमने के विषय बा माँ संस्कार और संस्कृति और ई विषय पर बात करे खातिर हमने संगे हवन श्रीमती दमयंती बिहारी पौरे जी। आप एगो माँ हवा, आप एगो टीचर अला, शिक्षिका रला और साथ में आप रेक्चर भी रला और गायत ओरिजिनल और धूपनाथ खामफुल जैसन स्कूल में आप काम कर ले हवा जहाँ पर छोकरी लोग भरल रहल। आप बोलत हवा फॉर्म 6 स्कूल रहल उ सब।
2: हाँ।
1: और अभी हम ये बोलत रही सर दमयंती जी कि लड़का लोग में थोड़ा डिसिप्लिन के कमी हुआ था, लड़का लोग उतना बात आजकल नहीं माने रंजा, चाहे वो लड़का के लेबा चाहे आदुलिसों जो लोग लेकुल में हवन जा किशोर लोग, तो ऐसन में शायद जहाँ पर अभिभावक और रेक्टर लोग सब कोई मिल के लड़का के सीधा रास्ता पर आने को जितवन जा हौजे पर उतना सहयोग शायद नहीं मिलता माँ के ओर से, माँ या पिता बोला, तो ये विषय पर थोड़ा बताया जा कहे कि आज के ये सबसे बड़ा विषय बा।
2: आज के हमने के
1: सो समस्या बा,
2: समस्या है ये गो है जनरल पहले माँ बाप दादा दादी लोग सबको साथ में रहता रहता था, सबके के मेरा थोड़ा समय लड़का लोग से बिताए के और अच्छा अच्छा चीज सिखाए के डिसिप्लिन के बारे में, ना अनुशासन बहुत चीज, रिस्पेक्ट के बारे में कैसे व्यवहार करके दूसरों से और कैसे आदर करके। लेकिन अब जब माँ बाप अकेला न्यूक्लियर फैमिली रह छोटा परिवार में तो नहीं है उतना लोग लड़का के साथ साथ साथ उनका उनके ग्रोइंग अप पर, तो माँ बाप काम कर लन जा देर ले या रात ही काम कर तो लोग को उतना टाइम नहीं मिलेगा, समय नहीं मिला लड़का लोग संगे बिताए के, तो इसीलिए ये समस्या होता। ऐसे चाहना करे कि माँ बाप लोग चाहना समय निकाले कि अपन बच्चा लोग ये सब संस्कृति के बारे में सिखाए के, स्वतु एगो माँ के छोटा ही से सिखा के नहीं बोलवा कि आज सिखेबा काल खातिर, जब जैसे लड़का शुरू करी बोले के तब उनका बहुत चीज शुरू किया सिखाए के, जैसे जैसे बड़ा हुई तब उनके सिखाए ला जा और कौन चीज़ें चाह करेगी। अभी के माँ बाप लोग के चाहे रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि नहीं सोचे कि सब चीज़ स्कूल में हुई, स्कूल में नहीं सका जाए अब सब चीज़ करे, लड़का लोग के दिला एगो सहयोग जैसे कि पढ़ाई में तो अच्छा फुल सपोर्ट दे के प्लीज साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे ला सा लड़का लोग के, जो हम भी रहनी था हमारे टीचर लोग सबको साथ में लड़का लोग के जैसी रिस्पॉन्सिबल बनाए के चाहे ला माँ बाप लोग के होल रह गए कि नहीं कि लड़का लोग के सब दुआ चाहे ला थोड़ा दिन से लड़का लोग के सब रात पर बहुत बतियाला सा मेरे लोग के रेस्पॉन्सिबिलिटी से लड़का लोग भागेला
1: हाँ, के सब कोई अधिकार की बात आज में जाता है हाई करे के दुआ बा हाई करे के अधिकार बा ये हमारा अधिकार है। लेकिन जहाँ अधिकार के बात चलेला हुआ पर एगो दायरा के भी बात रहेला, जिम्मेदारी कहाँ तक आपके जिम्मेदारी बा ये बात पर भी चाहे संगे संगे जोर देवे के
2: संगे संगे जाना जो जो व्यवहार अभी रही लड़का हो
1: बड़ा हो
2: जो छोटा से नहीं लड़का के नहीं सिखेला तो वो तो बड़ा हुई तो बहुत देर हो जाए, जैसे कि डाल एगो प्लान बोला हुआ कि तेरा जाए लगी तो एगो बातों डाल के अथी बॉम्बू डाल के सीधा कर छोटा वैसे जमे वो सीधा जाए तो लड़का वो ऐसे है जैसे कोई छोटा एगो चीज़ नहीं अच्छा करे चाहे सुधारे के कि नहीं जब कबो लड़का लोग कुछ मोबे कर दे रहा जाए लेकुल में तब माँ बाप लोग आवे लन जा बहुत खिंचा लन जा कि काहे हमारे लड़का के ये ऐसा ऐसा चीज़ हो उनका मिल जाए को डिटेंशन या डिटेंशन तो नहीं दे रहा होता मैं कबो लोग एगो चिरापो दे होता नहीं सर एगो अन्न एक ही कबो पागल तो निको नहीं खुशी रहन जाए सब लोग को लड़का हुए कि हमेशा दे लन जा रेजों जैसे कि माँ बाप लोग के लड़का सबसे बेस्ट है सब कोई अपन लड़का के खुश रहेला मैं हमनी जब लड़का लोग सब लड़का लोग लेकर आवे लन सब के लिए तो सब समान है सबके एक ही तरह देखिला सर हमनी के एक गो मकसद है एक गो व्यू है कि हम लड़का के चाहेला एग्जाम में पास हो यार ग्रोइंग टू ए यंग रेस्पॉन्सिबल एडल्ट जब छोरी लेकुल कि उनकर मानिए बचाए के सोसाइटी में रहे के सब चीज़ बहुत है बहुत है तो इसीलिए हम स्कूल में अपन अपन अपन

0: रोल निभाए ला जा सपोर्ट कैला सा लड़का के बढ़े के खातिर और सब चरित्र निर्माण के लिए कैला सा और सेल्फ एस्टीम बढ़ाए के लिए में से माँ जब कुछ नहीं अच्छा करी तब माँ बाप को लोग चाहेला कि ना जिस बच्चा के साथ लेके
1: हाँ
0: चाहे ला साथ में लड़का के को विजय करे
1: चाहे वो माँ बाप के स्कूल के जो आप लोग अधिकारी हो चाहे आप लोग संगे मिल के वो लड़का के औकात करेगी चाहे दोनों जो बढ़िया चाहे दोनों पार्टीज चाहे दोनों ओर से स्कूल और घर के जो दोनों जिम्मेदार हो चाहे लड़का के साथ में एगो सलाह मशवरा के साथ वो लड़का के सुधारे के कहे कि एक जना सुधारे खोजी और माँ बाप ओकर जैसे बड़ा थवा ओकर लड़का के साथ दे त लड़का के त ओके त और छूट मिल जाए मतलब कि कहाँ ओके चाहन सुधारे के मिल के सब कोई के त अब लड़का बोली त हमर माँ बाप हमर संगे बात हम सब और करे और ऐसे करते करते लड़का के ओकर साथी लोग पर भी बुरा असर पड़ी और देखते है जाके धीरे धीरे ये पूरा समाज पर धीरे धीरे थोड़ा बुरा असर पड़ ले जाता और बहुत ज़रूरी बात अभी से ही इस स्थिति पर काबू पावे के
0: हाँ ये तो सच है बहुत प्रोग्राम वाले कुल में जहाँ पर लड़का लोग के सपोर्ट दे ला जा और बहुत कार्यक्रम भी कर जा सब स्कूल में जब हम रनी रखते डायरेक्टर और रनी तो बहुत प्रोग्राम करते हैं सर तो कई सब विद्वान
1: तो एक और माँ बाप लोग के नहीं शामिल कर जा रहा ताकि वो लोग मतलब
0: अलग से जब हम रखते रहें तो जब हम एक इनविटे कर पारों लोग के भी जिसों जैसे कि इम्पोर्टेंट है ब्रेकफास्ट
1: जी
0: ब्रेकफास्ट कितना है पोता है लड़का के लेके आई अपन ब्रेकफास्ट लेके नाश्ता करके आएगी तो घर में हमने हमारे अध्यापक लेकल के वहाँ पर स्कूल के लोग हम इकोनॉमिक्स में एगो एगो एगो चिली भी कर इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट तो लॉन्चिंग कर सर पारों लोग के बारे नहीं सर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनिस्ट के बारे नहीं पारों लोग खातिर कर रही जमें जन जन जा कैसन भोजन छा लड़का लोग के दे के स्कूल आ के आगे कितना इम्पोर्टेंट है एगो नाश्ता ऐसा तो माँ बाप लोग के बोले रही हम तो बहुत प्रोग्राम करते नहीं जहाँ पर माँ बाप भी आते रहन जा जन जन जहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे न तो इसने सकते हम एगो लॉन्चिंग एगो लीव कर दे आप कुछ भी नहीं नहीं तब हो गया लॉन्चिंग तो वो लोग के बोले नहीं वो लोग के लेकर में बोले नहीं छोनीस लोग के दुखते लोग के बोले नहीं तो करे के और मैम तो पागल लोग जब जानी माँ बाप जानी कैसन खाना क्या ही चाहे घर से खाना आने के कि नहीं खरीदे करो सब में पोता अनुसार जान हम के सोचते में बहुत बैस बा तो बहुत लफाज ऐसा कहीं थी फूड पर
1: जी
0: जैसे फास्ट फूड में जाने ना बहुत गाय सफा मैं हम बहुत एक चीज़ है बहुत दिन के बाद बताई हम थोड़ा ऐसे सकेला मिलने दे मिल सेट दे मिल वीत के बाद बताई बहुत दिन हो तब से हमने अब सब प्रोग्राम शुरू कर दे रहे हैं सर जब मैं लड़का लोग कि नहीं कि हर एग्जाम पास होगी उनका स्वास्थ्य भी उतना है पोता है और जाने के लोग के चाहे जाने के कैसे सोसाइटी में भी विभिन्न सा ना समाज में जैसे विभिन्न जा कैसे जीवन जा तो बाद में जाकर डिफिकल्टी हो लड़का लोग के समाज में फिट हुई के
1: ज़रूर तो अभी हमने के दमयंती जी ये चर्चा के आगे बढ़ाते हुए बोला था वन कैसे एगो लड़का के जब परवरिश होता तो एकर में माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो आगे चल के जब लड़का अब स्कूल जाए लगल कॉलेज जाए लगल तो ओके चाहे अब स्कूल के अधिकारी लोग के साथ मिल के ये लड़का के आगे खातिर तैयार करेंगे और जैसे जैसे लड़का भूल चुक करता या फिर अच्छा कार भी करता तो चाहे ये दोनों जो संस्था बा एक तक घर और एगो स्कूल ये दोनों के मिल के चाहे वो लड़का के या तो सराहना करे के या फिर वो लड़का के सुधारे के कहे कि अनुशासन सुधार से ही आवेला और जब अनुशासन खातिर एगो पार्टी आगे बढ़ी और दूसरा जन पार्टी बा वो एकर विरोध करी तो अनुशासन तनको नहीं बैठी और अभी के हमी के दमयंती जी बतैलन कैसे माँ बाप लोग संगे भी मिल के आप लोग कितने कार्यशाला कर ल जा कितने ऐसा प्रोग्राम कर ल जा जहाँ पर माँ बाप के सिखावल जाता कैसे लड़का लोग के स्वास्थ्य वो लोग के नाश्ता पर जोर देवे के कहे कि लड़का लोग के जब ये पहला खाना नाश्ता ही नहीं समय मिली लेवे के तो उन लोग के दिन अच्छा नहीं बीती लड़का के स्वास्थ्य बिगड़ जाए और लड़का के स्कूल में एक तो मनने लगी ध्यान नहीं सकी देवे पढ़ाई में और एकर एगो पूरा एगो जो डोमिनो इफेक्ट बा जाके बोली ला जा वो लड़का के ओकर स्वास्थ्य पर पड़ी ओकर पढ़ाई पर पड़ी और ओकर चरित्र पर भी पड़ी।

संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। ये कार्यक्रम के अंतिम चरण तक पहुँच गल है जा। और आज जैसे अभी गीत में सुनला, आज के विषय है कैसे माँ अलग अलग रूप में माँ के

0: जो जिम्मेदारी बा वो औरत लोग निभावत हवन जा और आज हमने संगे एगो ऐसन महिला हवन जे माँ भी हवन और टीचर भी रलन और एगो रिटायर्ड रेक्टर हवन और हमने संगे आप अपन अनुभव बाँटत हव दमयंती जी आज अभी बतेली जा कैसे लड़का लोग के चाहेला सीधा रास्ता पर चले खातिर उ लोग संगे सख्ती से पेश आवे के उ लोग के चाहे अनुशासन में आने के। लेकिन आप अभी हमर से बोलत रहला कि एगो लड़का एगो स्कूल में लड़का लोग के सफलता तभी तय रहेला तभी निश्चित रहेला जब उ लड़का लोग खुशी रहेलन जा जब उ लोग हैप्पी रहेलन सा और इ खातिर आप ऐसा बहुत गतिविधि चलावत रहला अपन स्कूल में जहाँ लड़का लोग खुशहाल रहन जा और एक बारे में थोड़ा हमने के सुने और देखे और लोग संगे कुछ बाँट
1: हमने सबसे नहीं एक्सेप्ट करे कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। एगो लड़का इमोशनली बहुत ओके छा खुशी रहे के अपन सेकंड होम में ओकर स्कूल हुए ओकर सेकंड होम है
0: ओकर दूसरा घर है
1: दूसरा घर है वहाँ पर दिन भर रह जा रात के जाना सुते जिस घर पर फिर से सुबह उठ के आवलन जा लेकुल तो वहाँ पर वो लोग के बहुत छा खुशी खुशी रहेगी। तो स्कूल में हम बहुत डिसिप्लिन डाँटनी बहुत डाँटनी जोर अच्छा रिजल्ट पर लेकिन साथ साथ हम लड़कन के बहुत लोग के देवत ऐसा लोकाजों खुशी रहेगी बहुत प्रोग्राम और एक्टिविटीज जहाँ वो लोग जमें खुशी रहें रोज एहन सा खुशी खुशी लेकुल जमें लोग जब स्कूल में एहन से था लात मस्या देखे हम सगरो हरियाली फूल फूल सगरो बहुत खुशी खुशी एहन सा बस हम लात मस्यावा आके यौत रहे तो जब लड़कपन खुशी रही लेकुल में और जैसे हम प्रोग्राम भी करते हैं सर जो लड़का लोग खुशी रही
0: हम कैसा प्रोग्राम
1: जहाँ जैसे जब स्कूल में रहनी तो हम लास्ट वीक ऑफ द इस सेमेस्टर हम डाली खाली एक्टिविटी खातिर जहाँ जा फिल्म शो जहाँ जा आउटिंग प्रोग्राम म्यूजिक ये सब डांस बहुत एक्टिविटी देवा ये सब डेंसमैन में सब एक्टिविटी डांस हम सप्ताह में लड़कपन खुशी खुशी पास जहाँ सा उन्हें एग्जाम फिनी होगा टेस्ट फिनी होगा तब लोग रिलैक्स होन सा सब लड़का है पास जहाँ सा प्रोग्राम अपन नृत्य के आइटम पेश कर गाना म्यूजिक ये सब लागित ये सब बहुत एक्टिविटी करें बहुत खुशी रहन सर छोकि लोग नाच करे के शर्त और नृत्य कर रहन सा को सीखत रहन सा को टीचर सिखावत स्कूल में लोग बहुत खुशी रहता सा तब जब खुशी खुशी वो लोग दें से मैं आए पछला सप्ताह लोग एहन सब लेको सब एहन सा स्कूल बस ही लोग भाग दिए सब एक्टिविटीज में तो है सब बहुत है पोत कि नहीं बहुत डिसिप्लिन तरफ लड़का लोग से खाली बोलब पढ़ पढ़ नहीं और चाहिला
0: पर्व भी मनावत रह जा
1: सब सब पर्व है असेंबली में इम्पोर्टेंस जैसे कि मैं खोजी दिला सन आई तो हमारे अध्यापक क्रिश्चियन आई बच्चा लोग के जिले स्पीक करी रोजा आई तो लोग यहाँ से स्पीक करे काहे रोजा करे कि जब बसंत पंचमी आई तो हमने दर सब सरस्वती माँ के आरती करब सब श्लोक सब बोलब सब काहे करिए सब पूजा सरस्वती माता के दुर्गा नवमी पा गई सब
0: होली भी
1: होली तो बहुत खेलते रहन जा इसमें क्लास में नहीं खेले रहते कोचौद में खेलन जा लोग के ले देते अपन नृत्य कर सब खूब बहुत गोपी लोग गोपी सबसे कृष्णा पा गई उसने कर जा तो बहुत खुशी रहते रहन सा लोग के बस हम साथ साथ लोग के साथ डिसिप्लिन रहते नहीं मैं लोग के देते अवसर अथी मौका जहाँ पर खुशी अनुसार खुशी खुशी अनुसार यहाँ से स्कूल और जहाँ पछला दिन तक लड़का लोग सब बराबर आते रहन सा स्कूल को स्कूल में तो देखब दजाम थ्रीमेस में लड़का लोग आगे हो गया पाजाम में तो नहीं हमारे यहाँ नहीं जग लोग के टाइम टेबल नहीं मिली तहन से स्कूल और लोग के लिए ऐसा टाइम टेबल कर जो दिन अहन जा तो लोग के प्रैक्टिकल में आ लोग के जी पी मिली बतिया देव हमारे हैदर दीपक कुछ नहीं अथी जैसे माँ कैसे थोड़ा बहुत हैं जब लड़का लोग खुश रह से तो लोग बहुत अच्छा से परफॉर्म कर रहे सर जब हम रनी धूप हम फल तो हम फर्स्ट स्कूल इन मॉरिशस तो आते हैं 100% अच्छे से एंड इट वॉज सस्टेन फॉर 2 years आई डोंट नो नाउ बट आफ्टरवर्ड द वे ऑफ द स्कूल दैट अटेंड बट धूपनाथ हम्फल वॉज द फर्स्ट स्कूल टू अटेंड 100%
0: और आपके दोनों स्कूल धूपनाथ हम्फल और गायत्री लोरियत प्रोड्यूस कर
1: हम जैसे गए नहीं वहाँ गायत्री तो लोरियत मिल गए जैसे वहाँ 2-3 साल के बाद चले नहीं बस हम यहाँ रहनी धूपनाथ तो हमके हेडक्वार्टर से फिर से रेक्टर विदा करने से धूपनाथ हुए बस हम बहुत दिन काम करें वहाँ
0: वहाँ और आपके भी अपन बेटी लोग पसंद रहा है
1: अजय ना हुआ हम ऐसे जब गंती करब तो 18 साल काम करें हम एज ए एडुकेटर डिप्यूटी रेक्टर बहुत दिन काम

0: और आज हम ये प्रोग्राम के अंत तक चले लीजा, आज आप अपन वो हजारन बेटी लोग के जब अच्छा अच्छा पोजीशन में दिखेला तो आपके कैसे बुझाला?
1: बहुत खुशी होला, जैसे कि एक बार एगो लड़का ओके जैसे सोचबा कितना छोटा हाल कैसे कैसे बड़ा हाल दिखला लोग के, अब देख पाओ बहुत बड़ा पोजीशन में, कब पफा हम जाता नहीं, कभी कभी जाता नहीं, पीएमओ को तो मीटिंग में तो देख एगो लड़की बैठल बा ऊपर बैठल बा उचे मैं उतर के आके हम क्या के ज्वाइन करिए मैडम तेरा ऐसे देखो के बोझ में बहुत खुशी है। उसने पा गए हमारे जिले सेकंड सेक्रेटरी और कहीं इंडिया एगो एक्सचेंज प्रोग्राम लेके दुपना थामफल के लड़की लोग के, तो हमके लड़का हो दोनों अलन से आके जा कहे 2 बजे रात के 1 बजे रात के अला उपो में हमारे जिले वालन से लोग जहाँ पर ऐसे छोकरा
0: जरूर
1: मैं हमके याद उन लोग याद बोलो के मिसा होता बोलो बहुत जहाँ जाए बता लड़का लोग बहुत खुशी रहा देखे कि हमके जैन लोग के कि कैसे बहुत आगे बढ़ गए जा उन लोग के उनके आगे बढ़े खातिर सब दे औका धुमा देते
0: जरूर। तो आज हमने सुन लीजा दमयंती बिहारी पौने जिसे कैसे एगो माँ के अलग अलग रूप है, आज इनकर हजारन बेटी बा जिनकर सफलता देख के इनकरा ओकर उतना ही खुशी होवेला जितना एगो असली माँ के अपन लड़का के सफलता से होवेला। ये कार्यक्रम के आप देखला सुनला पसंद करला बहुत धन्यवाद। अगला संस्कृति की बातें कार्यक्रम तक हमके आज्ञा द, धन्यवाद, नमस्ते।
2: संस्कृति की बातें

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। पूजा से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। विश्व स्तरीय डिग्री आजकल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य उन देशों पर निर्भर है जहां स्नातकों को रहने और काम करने का अधिकार है। ये जानकारी शिक्षा पर आधारित है ने 2026 की रिपोर्ट में सामने आई है। ये इंडेक्स उन 15 देशों को स्थान देता है जो न केवल उत्कृष्ट शिक्षा बल्कि कैरियर के असर और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता भी प्रदान करते हैं। स्विट्जरलैंड इस सूची में प्रथम स्थान पर है और उसके बाद सिंगापुर आता है। मॉरिशस को इलाकाई मेडिकल हब बनाने की महत्वाकांक्षा, अब स्वास्थ्य तकनीक क्षेत्र में नए निवेशों के माध्यम से साकार हो रही है। मेडिवेशन लिमिटेड मोका स्मार्ट सिटी में मेडिकल डिवाइस बनाने वाली एक फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त है और ये अंततः 1 बिलियन से अधिक रुपये के निवेश का प्रतिनिधित्व करेगी। युवकों में तंबाकू और निकोटाइन का सेवन, विश्व तंबाकू रहित दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इसका उद्देश्य रहा तंबाकू से जुड़ी खतरों के प्रति रोकथाम और जागरूकता को मजबूत करना। विदेश में म्यांमार के एक गांव में पेश आए एक भयानक धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत। ये गांव चीन की सीमा से सटा एक विवादास्पद इलाका में मरने वालों में 25 महिलाएं और 30 पुरुष शामिल हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 22, होवलेन उकुले क्यूपिप में 80 साल के 80 years old श्री करण देव आलिया, जिन्हें लोग करण देव नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे, इनकी अर्थी कल मंगलवार को दिन के 1:30 बजे इनकी पत्नी लीला देवी आलिया के मकान नंबर 22 होवलेन उकुले क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:50।

के चर्चा कार्यक्रम देखे होला सुने होला सब कोई के प्रणाम नमस्ते। हमने आशा करे थे ऐसा कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हुआ जा, अच्छा हुआ जा, कुशल मंगल हुआ जा। तलंदी के दिन हा और आजो के दिन हमने तनि सुन अपन खेती बाड़ी के बारे में बतियाब जा जे हमने के हर लंदी के सुनेला। कबो कबो प्रताप जी आवेलन, आजकल तो हमने के श्रीमान संजय शंभू आवत हवन फागे दने से, और हमने जन जन टॉपिक पर बतियाला सा तोहरे सुविधा खातिर आप लोगन जितना खेती हर हवन जा कितना कोसुमाते हमने सब इमे जुड़ जाए ला जा, और ढेर चीज ऐसे ऐसे टॉपिक पर हमने बताए ला जा जिन से तोहर फायदा होवेला सब कोई के फायदा होवेला। जे यार बाग गल हला हमने बात करत रही जब बायो फार्मिंग, तो बायो फार्मिंग पर बात करते करते

0: एगो ऐसा टेम के बारे में संजय भाई बोले रलन उरहल जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एकर बारे में जन सुभाष पालेकर साहब जन रहल उ डेवलपे कर ले रहल त आज यही पर तमनी हमनी जस्ती बतियाब जा एकर पर और हमनी के मेहमान हवन फिरों से श्रीमान संजय संभू तचल फागदाने से हमनी के जन अधिकारी हवन तो हर स्वागत बाते प्रणाम
1: नमस्ते अंजुषा
0: बहुत बहुत धन्यवाद तो आज जब बोले हवा हमने यही टॉपिकवा पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर बतियाब जा और जैसे हमने सुनते आल है जा कि ये जो तेमवा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग श्रीमान सुभाष पालेकर ओकरा डेवलपे कर लहर तो खाल काहे उ तेमवा लग रखलन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग लंबा बातें काहे नहीं जीरो पेस्टिसाइड या कुछ और
1: सबसे पहले जैसे बोला जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो बातें वो तो जो बोला सब बायो फार्मिंग उसके संगे जुड़ल बातें ये कारण दो गो जो शब्द बातें पीछे में नेचुरल फार्मिंग बातें अब आगे में बात जीरो बजट
0: सच्चे की जीरो बजट हुए है
1: हाँ जीरो बजट हुए है क्योंकि ओकर ओकर उपदेश कौन सी है और उपदेश है एगो किसान जन बातें ओके स्वतंत्र करेंगे स्वतंत्रता किसी इंडिपेंडेंस पे ही
0: देश के नाम लेकिन
1: अपन गोर पर खड़ा रहे कि बाहर के जो ऐतों बा जो नाम के जिस वजह से एग्रीकल्चरल इनपुट ओकर पर निर्भर नहीं करेंगे तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में कौन चूहला सुभाष पालेकर जी ऐसा ऐसा योजना अनले हुआ जेकर से एगो किसान सकी अपने ही खेत में या अपने ही देश में जो चीज मिला था साधारण चीज जैसे जैसे कि गाय के गोबर बातें
0: एक बार हमने बताया कौन कौन कंपोस्ट बाय में
1: हाय में हाय सब प्रयोग करके तब एक आध गो मिक्सचर्स प्रिपेयर करेला तब उसे की अपन जाके अपन खेत में प्रयोग करे तो इस प्रकार से आज देख बा तो वो बाहर के जितना मन चीज बा ओकर पर निर्भर नहीं कर लग
0: जी
1: अब एगो खेती बाड़ी करवा तो मुफ्त में नहीं रहेला ना कम तो डिपॉन्स रहेला कम करवा के तब ओके तो ओके चाहना तनख्वाह दे के दूसरा चीज शायद पर ही खरीदे के लेकिन क्योंकि अपन से जो ऐतो बातें किसान से कि अपन से ओकर योजना करे वो खातिनों के दालबा जीरो बजट क्योंकि इस सब चीज पर किसान के नए परेला खर्चा करेगी
0: जी अच्छा माने कि इस सच्चे में नो बजट नो एक्सपेंसेस
1: हाँ जहां तक इस सब ऐतों के सवाल बातें तो ओकर पर तो खर्चा नहीं करी ना क्योंकि वो ही तो तैयारी कर रहा था दूसरा चीज पर रही हमने बताया नहीं रही कैसे सकेला कम करवा पर सकेला रहे ओकर लगे सकेला एक आध प्रकार के बीज ने बातें तो हो बीज पर ही खरीदे के लेकिन आज अपने से बीज आज निकाली था उन्होंने परी ओकर पर खर्चा करे के तो इस प्रकार से जीरो बजट तो का नाम डाल
0: तो जितना जना हमने के देखत हो सुनत हो कुछ पूछे के बातें लाइन खुलर बातें 402-85-4028-085 पर हमने के फोन करिया हमने के मेहमान हवन श्रीमान संजय संभू और तोहर जवाब दियन यानी कि सवाल के जवाब दियन तो भाई संजय हमने के बताओ जो महाशय हवन हविलेख हवन
1: हाँ.
0: सुभाष पालेकर वो कौन चीज से प्रेरित होके ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के डेवलपे करल और एक ओरिजिन कहा ओकर बारे में तेनु सुन बताओ के हवन
1: लगभग सबसे पहले तो भारत के गो
0: खेतिहर हवन सियाचिस हवन
1: एगो सियाचिस हवन
0: अच्छा
1: वो का करलन की सन 1980 से लेके सन 1990 तक एगो जांच करलन ऐसा एगो सोच में पड़लन कि कैसे सकेला जब जंगल के उदाहरण लेलन एगो जब जंगल दिखेला तो वो ऐसा ऐसा विचार अनलक तो जंगल में कौन मनुष्य जाके खाद डालता वहाँ पर ही वो जंगल के पेड़ पौधा जो बातें ओके बड़ा करे खातिन कोई तो नहीं जला
0: जी
1: जंगल में के जाके रुपाई करता जंगल के जंगल रखे खातिन कोई तो नहीं करता ऐसे ही अनेक प्रकार के प्रश्न रखलन कि कैसे सकेला एगो जंगल अपने आप पर
0: निर्भर
1: हो और अपने आप के अपने के देखे देख रेख करे और एक ऐसा एगो संतुलन रहला कबू देख ले एगो एगो आदमी के जाके जंगल में वहाँ पर ही पेस्टिसाइड के स्प्रेइंग करे के क्योंकि वहाँ पर ही
0: ओकर जो नेता नेचुरल बा ओ एस नेवे रहेला
1: सब चीज जो हमें

0: संतुलन रहेला सब चीज कंट्रोले बाटे तो एक में जैसे बोला सा मनुष्य के इंटरफेरेंस नहीं बाटे ना जंगल के ऐसे रखे के सुरक्षित रखे के निमन से रखे के तो जब भाई सब प्रश्न आगे अनलन तो गैलन जांच करे तो कौन चीज होता है ये हमने के प्रकृति में जंगल में कौन सा चीज होता जिस सकता जंगल अपने आप से खड़ा रहे
1: जी।
0: तब जाके वहां से एक आध गो मॉडल निकलन कैसे कि खाद के बोलने
1: जी।
0: देखो जंगल में कितना पत्ता गिरते रहेला कितना गौछी मरते रहेला कितना पशु मरते रहेला सब गिर के कुंच होला जंगल में नीचे गिर के गते गते सरे लंसा माटी में चल लंसा तब माटी के बढ़ियार कर देवे लंसा हाँ कि नहीं अजय भाई जंगल कैसे हमने के देश में चाइना सा गुलाब दुगाब देसिन तुरे तो जब प्लेन शॉपाएं के वहाँ पर ही जंगल में जय जब चलव तो नीचे कुंच में चले ला
1: पता और जो
0: रहेला ना एगो एगो एगो लिपिसे के तेरे तो लिपोंस के तेरे ला बचा चला तो कर में तो हवे गते गते मर के सर के तो हवे फिमिया हो जाला हवे माचे ऑर्गेनिक माटी में चला लाता तो हवे माटी के उपजाऊ रखा था
1: जी।
0: हाँ अब एगो दूसरा चीज जंगल में तू देख ले वो जंगल में एक एक चीज रोपाई होला एक एक रोपाई नहीं एक एक चीज रहेला एक एक एक एक पेड़ नहीं वायते रहेला ना ता हायो एगो सीखा कि हमने के जन खेती बाड़ी कैला सा तो वहाँ पर ही चाहला नहीं चाहला एगो मनोकिलची रह के चाहला अनेक प्रकार के चीज के रोपाई करे के ताकि एगो संतुलन बायोडाइवर्सिटी रही ताकि मारू पिलवा या बीमारी
1: माने कि सब कुछ जन बातें वो ऑन ऑस्मोस जैसे हमने बोली ला सा
0: तो ऐसे ऐसे इस चले जाए बाय से देख ले जाए बाय तो पानी के ले ला कोई जला जंगल में सिंचाई करे
1: नहीं
0: तो खड़ा रहेला ना हाँ जब लासे स्ट्रेस मारे ला बहुत महीना तक मारे ला तब बुझा ला जंगल भी सूखा था
1: जी।
0: लेकिन एकर इलावा जंगल तो हरियाली हरियाली
1: रहेला
0: और जब लासे स्ट्रेस हो रहेला उस अकेला अनेक महीना के लासे स्ट्रेस मार दे तब बुझा ला उतनी सुन सूखा था नहीं तो ऐसे तो कारो में आ जाए दो दिन गला सिंचाई नहीं कर ला कारो सूखे लगे तो यहाँ पर एगो सीख भी मिलेगा तो कैसे सकेला जंगल अपने आप
1: के अपन के सपोर्ट करे हाँ।
0: हाँ। देख बता जंगल में एगो पेड़ छोटा रहला एगो बड़ा रहला ऐसे अपने आप के गनला हाँ, सुरक्षित रखे लंसा फिर जैसे बोली नीचे में जितना जो छो सर के जब गिर जब पत्ता गिरल बा सरता वगैरह वगैरह तो एगो प्याज नेचुरल कर दे तो पाया से और जितना है जितना ऊंचाई के पौधा पेड़ बाते तो सूर्य के किरण भी उतने मारेला पाया से लिमी जीते जब चले ला जंगल में था जब महक मिलेला जला लिमी जीते बाते तो नीचे में हो लिमी जीते सब प्रिजर्व होता
1: कैसे सा, एक कौन टेम सकब से बोले ऑटो कैसे सकब से बोले लोग तो अपन ऑटो
0: सेल्फ केयर कर लेंस सबसे हाँ शायद ये सब अच्छा रहे सेल्फ केयर जंगल अपन सेल्फ केयर करेला
1: जी।
0: हाँ तब जब ऐसा प्रेरणा मिलल तब जाके वहां से जंगल में से अब कैसे सकला है जंगल में से जो सीख मिलल बा अब जाके खेती बाड़ी में चला ऐसा कब से अडाप्ट करे तब हाई से तब हमने की तब हर तीन महीना हर महीना हर चार महीना जो सची रुपये की वगैरह जंगल की तक खड़ा हुए नहीं मानो आज एगो व्यजी रहता हो हाँ। लेकिन सब्जी की तो कठिन बात है तो ये प्रकार से मनोकिल्चे के चला तुरे के अनेक प्रकार के चीज रुपये के अनेक प्रकार के चीज चला संगे रुपये के जैसे कि हर एगो चीज हर एगो जो रुपाई बा दूसरे रुपाई की देख रेख अपन से करी माचे ऑर्गेनिक जो मेला सब फीमिया के चला खूब प्रयोग करे के सुभाष पालेकर जी और एगो चीज बोले हुआ कि जब एगो माटी में खूब माचे ऑर्गेनिक रही तो कैसे बोला सा मिट्टी एम बी से पासे करेला तो बोला जैसे पा ह्यूमिडिटी इतना रही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% रही कहानी कितना रही तो सुभाष पालेकर जी बोलन जब माचे ऑर्गेनिक तो हर माटी में ढेर रही तो अगर वो कैपेसिटी है जो लिमिजिटे हो बा में तो कि आप सोबे करके लिमिजिटे माटी में आन के स्टोके कर देवेला
1: अच्छा
0: ये भी है एगो सीख है तो ये प्रकार से तब माचे ऑर्गेनिक बातें मनोकिल्चे के चला तुरे के हर एगो पेड़ पौधा अपन अपन संघटा के देख रेख

0: खरी। अब लेकिन हमने जब रोपाई कैला स कैसे बोलने हर एक महीना हर तीन महीना दूसरा चीज आवता तब माटी में जन खागी बात हिंच देवेला ना
1: जी।
0: तब अब ओके कैसे सकेला उपजाऊ रखते रहे एक बात है माचा ऑर्गेनिक लेकिन दूसर बात है ओकर अपन से जो योजना बने ले बा टेक्निक बने ले बा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के कैसे गाय के ओकर गोबर जोन बात है ओकर जोन यूरिन बात है ओकर प्रयोग करके और फिर जंगल में तो सेल्फ केयर है ना पिलुआ बीमारी वगैरह के तो ये भी जोन गाय बात है ओकर में से जोन गोबर बाते जोन यूरिन बाते और फिर एक आध प्रकार के जोन पत्ता बाते सकल में मिला के वगैरह फैमौते करके तब ओकर प्रयोग करे तो पिलुआ जोन बा बीमारी बा ओकर से भी लिपटे।
1: तो जैसे बोले थे भाई संजय कि जोन गाय के जोन काउडंग बाते ओकर ढेर इस्तेमाल होला खाली उही धरला जोन जब हमने बात करे थे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो काउडंग नहीं रही तो
0: नहीं चली
1: कहीं
0: ओकर एगो खासियत बात है जन सुभाष पालेकर जी कर

0: Care?
1: O care cu caset bate. Gen subesh subash palekar jikari la vagera vagera to wo abhi le kana sakab ja bole sadharan roop se sakab bole thoda primitive bate to wo karan okar andar mein ekad go niman bacteria bate jon okar sahayata karela ho khan jon jon jon ghas vagera khata to ke ture
0: ji
1: jon europe se jon jon species bate jon gai vagera bate to wo log itna le khwas ma ho jate wo log gala kaise gala bas sufakids हयो जनावर के सकब सब के सब सुविधा मिलल बाते तो हाउ सब जन अंदर के जन खासियत बाते उगन ला बिला गल देसी गाय में ओकर में बाते तो ओकर में एक आध क्वेश्चन बैक्टेरिया बा जैसे बा बैसिलस सुब्टिलिस बैसिलस सुब्टिलिस ओकर में आवेला तो बैसिलस सुब्टिलिस जब गोबर के प्रयोग करब तो ओकर में तो बैक्टेरिया आए ना एक दूसर बात स्यूडोमोनास वो में रहला तो ऊ सकी ओकर में मिलावटवा में आए तो जब मिलावटवा में आना तो कैसे अब बीज रोपतव तो जन जड़ी बाते तो ओके सुरक्षित रखी मारू बीमारी जैसे बोला सोल बोन पातो जन जन बीमारी माटी में रहला तो ओकर से बचावेला बाद में आज प्रिपरेशन करब पत्ता वगैरह मिला के तो एक कैसे बड़ा नहीं सा धतूरा बाते नीम बाते वो तो काम हो जाए ना लेकिन ये जो बैसिलस बाते सुब्टिलिस कैसे स्यूडोमोनास बाते तो ओकर में भी मिल जाला तो जब स्प्रे करवा तो ऊपर से भी काम करेला बीमारी सब के भगाए खाते हैं और जब पतवन जन रहला नीम धतूरा वगैरह वो तो कहला पिलुआ के जी खातिन काम सकी संगे चला
0: चला हमने संगे जुड़ल हुआ कुछ पूछे के बातें 402 80 85 85 म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आए ला जा

0: तो फिर उसे आप सब लोगों के स्वागत बाटे बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम में। और आज हमने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर बतियात है जा देखला कितना जन अभी कहानी नहीं है लेकिन हाँ सच्ची बात है कि जो सुभाष पालेकर साहब भवन एकर बारे में हमने की जन जंगल बाटे ओकर से इंस्पायर प्रेरित होकर वो जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है जितना खेती हर हवन जा लोग के मदद करे खातिर जमे उन लोग अपन गोर पर थरा हुई जा और वो अपन बिजे करियन जा कोनो प्रॉब्लम नहीं हो प्रॉब्लम तो सकरो होला पर प्रॉब्लम के सोल्यूशन है सकल साय ढूंढे तो हमने संगे जुड़ा हुआ बहुत बहुत धन्यवाद हमने के खास मेहमान हवन श्रीमान संजय शंभू फागे दैने से। भाई संजय अभी बोला देसी गाय जो भारत में बाटे तो तेने सुन हमने के बताओ भारत में जब देसी गाय के बोलते हुआ कितना प्रकार मानी कि कितना स्पीशीज बाटी।
1: हाँ भारत में हमारे देखे में 55 यानी कि सकनसाइक स्पेस बाटे देसी गाय के। हाँ तो हुआ पर ये वो समस्या बाटे
0: जी
1: क्योंकि देसी गाय जिस भागत होता
0: अच्छा
1: लेकिन एक आध गो ऐसा इनिशिएटिव योजना बाटे जो उठत उठत बाटे खासकर एनजीओ द्वारा जहाँ पर उकर उकर महत्व समझा तो ना तो ओके प्रिजर्वे करे खातिन ओके फिर से शुरू कर तुन सा देख रेख करे के पोसे खातिन जैसे कि आउट ऑफ लिविंग के लिए लिप्सा बेंगलोर में उकर इंटरनेशनल सेंटर बाटे तो वहाँ के आश्रम में 19 प्रकार के देसी गाय के ओकर पोषण होता
0: लोग के प्रिजर्व करल जात बाटे।
1: हाँ नहीं बस की जिस पागे तो तुन सा
0: अच्छा तो मोरिस में जब हमने देसी गाय की बात कर रहे थे मोरिस में वही बा देसी गाय
1: एगो कठिन प्रश्न बा हमारे खातिन हमारे देखे में एगो इनिशिएटिव रहल एगो 10 बरिस आगे 2006 या लगभग पता नहीं शायद एक दो गो अनाल रहल तब वहाँ के हाईकोम रहल श्री कोबधन जी
0: जी
1: जैसे हमने चाहते हैं अनाल रहल कि नहीं लेकिन आज अनाल भी हो तो एगो या दो गो हो जस्ती नहीं तो वो तक कुछ एक दूगो तक कुछ नहीं करी ना
0: तो हर देखे में फिरो से चाहे ला हाई जो इन

0: बाबा फिर से उठाए के जमी जो देसी गाय के बोलत हुआ अरे धर ला मोरिस में हमने लगे देसी गाय जैसे बोलत हुआ नैवे बाटी तो जो विदेश से आने गल बातें कैसे
1: हाँ विदेश से आने बातें तो जो स्पेस ख्वाजे बातें वो बातें ना लेकिन जो संकेत करते हो अच्छा बातें हमने के चाहे ला देखा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जो योजना बा एगो कैसे बोलना एगो अपेप्रे योजना नहीं हते पीछे में साइंटिफिक एविडेंस बाते
0: जी
1: कि हो देसी गाय जन बाते ओकर में से एक आध गो बैक्टेरी बा जन हमने खाते बहुत बेनिफिक बाते एगो ऐसा खेती बाड़ी करे के जन जन में रासायनिक पदार्थ के प्रयोग नहीं होता तो एक में पीछे साइंटिफिक एविडेंस बाते तो आज साइंटिफिक एविडेंस बाते तो हमने के चाहला आगे चले के हमर हमर अपन ख्याल से हमने के चाहला ऐसा ऐसन
0: योजना
1: दिमाग करे के कि हम जो सकब सा फायदा उठाए देसी गाय के आने यहाँ पर ही क्योंकि वो लोग में से हमने क्या बैक्टेरियन मिली ना
0: अच्छा एगो जना हवन से बतियाला जा हेलो
2: हाँ मैं वाकवा से बोल रही हूँ
0: नमस्ते जी
2: सब लोग के
0: नमस्ते प्रणाम
2: यहाँ ना एक सुसु के गांची प्लांट ले रहनी फिर फर मिलेला तो बड़का बड़का ले जावे या मोटे मोटे सुन हो गए लोगन सब सब सुसु खालन सब सुसु के फर जैसे फरेला छोटा छोटा
1: कितना मोटा हुआ चाची इले जावे कितना मोटा हुआ इंसा
2: और पीमा के गांचे प्लांट बता उसमें भुजा था लसन अंगोले हुए ला खूब फूला जा रहा तब
1: अच्छा अच्छा
0: अच्छा सुनो भाई जी कुछ बोलिए
1: जन जन पीमा के समस्या बोला वो हम थोड़ा बोलती ब्यूरो वाकवा हमने के एगो दफ्तर बाते
0: बाजार के
1: बाजू में वहाँ जाके लेंदी बुध शुक के एक बजे से चार बजे दफ्तर खुला रहेला वहाँ जाके कुछ जाके हमने के जन ऑफिशियल लोग बा लोग के जनैया और वो लोग थोड़ा बोली कुछ चला करे के जन हम मोटका ले जाओ वे बातें वो एगो स्पेस मोगिस के नहीं छोटकावा जन बातें एगो पीती सुन रहे और मैं एक आध गो चिपुआ रूज एने रहेला वो मोगिस के है ओकर में प्रॉब्लम नहीं बाते ना बड़कावा जो आज तोहर लगे कोनो हानि पहुँचा होता तो हम तोरा बोलती यहाँ पर ही रेजुई में कृषि मंत्रालय के वो विभाग बाते ओकर नाम है नेशनल पार्क्स एंड कंजर्वेशन सर्विस
0: जी
1: तो ये लोग हमने के स्पेस इंडिजन लोकल एंडेमिक के प्रोटेजे के लंसा और मैम तो जो एक्जोटिक बा तो करो समाधान निकालन सा तो हम बोलती ओ लोग के देखे के नेशनल पार्क्स एंड कंजर्वेशन सर्विस
0: जो मुका मुटकावा बा वो कितना मुटका बा कितना लंबा बा
1: है बड़ा होला
0: आयु
1: इतना लंबा हो जाला
0: इतना लंबा है
1: हां बट्टे सुन जाला
0: एको गेको एको एको के बोलिए ई नहीं
1: हां वो नहीं वो एको गेको है हां लेकिन बड़ा है बोलन सा मडागास्कर से हाल बात है
0: अच्छा तो चाची हमने आशा करे था जा निमन से सुन ला जन पीमा खातिर उ सकें जाए जन वाकवा के सब ऑफिस बाटे बाजार के जन बाजू में बाटे और उहाई जन मोटका लिसो जैसे बुलत हवन चाहिला जाए के रिजवी
1: हाँ नेशनल पार्क्स कंजर्वेशन सर्विस
0: तो चला कोनो चीज बा बताए के पूछे के 402-80-85 और हमने बात करे थे जो आज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तो भाई शंभू हमने के बतावा जैसे अभी बोला गौ मूत्र के भी इस्तेमाल होला हाँ। जन गोबर इस्तेमाल होला हाँ। नीम ढेर चीज बा इस्तेमाल होला तो जन गाय जन गौमूत्र हमने सब पूजा के इस्तेमाल उ सब करी ला सा एक कुल लेपोता सही में
1: यू परी कैसे बोले गाय के गोबर के प्रयोग होता साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर
0: जी
1: गौमूत्र के भी ओकर प्रयोग होता साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर गौमूत्र में भी जो बैक्टेरिया बोली हवो मिलेला ओकर में अनेक प्रकार के एंजाइम्स वगैरह सब आवेला
0: जी
1: और ओकर में वो नाइट्रोजन रिच है
0: अच्छा
1: हाँ नाइट्रोजन रिच है तो कुल मिला के जब गौमूत्र के ओकर प्रयोग करबा देसी गाय के तो एगो तो ओकर में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स बाते वो मिला था खेती बाड़ी खातिर दूसरा ओकर नाइट्रोजन कंटेंट जन बाते कैसे हमने जला सा खेती बाड़ी में खाद के प्रयोग करी Tak akan me ego cija bila sa urea, ya azot, tangkut jen besi, lamun yang bila baca. Tak tahu akan me mil jai.

0: いいたい、ナチュラル。
1: 好、遅れ目とラミラタ。ディスラチジ、エカルメ、エカゴ、オレサン、ミコブログバテ、アクティノマイシス、コンプリケバイセブレケ、エケネカメ、オーミコバテ、エカルメ、ギジョン、ジャマティメジャーラ、タガンラ、ケシェ、マティメ、हमने के माटी खासकर मॉरिशस में माटी में बहुत फुसफाट बाते
0: जी
1: लेकिन उफ जोन फुसफाट बाते वो माटी में बंधल रहेला लॉक्ड बा
0: जी तो क्रा खोले खाते
1: हाँ तो के खोले खाते न हमने कौन सीखेला सा जाके एक आध गो पौधू खरीदा सा ओके बोला सा कैसे फुसफेट सोल्युबिलाइजिंग कंपाउंड्स एक पौधू बा खरीदा सा तो कर में वो बाग देगी बाते तो वो फुसफेट के सोल्युबिलाइज के यानी क्योंकि खोल ले तो यहाँ पर तो क्या हो गौमूत्र में भी ओकरे में मिला था ऐसा ऐसा बैक्टेरिया मिक्रोब जो सकी है कमवा करे
0: जी
1: तो देख ला एक कोई बीमारी के एक कोई खाई के मिला था एक कोई जो जो जमीन में जो फॉस्फेट या और दूसरा चीज बा जो लॉक बाते मिनरल वो भी गला मिला था बस एक और गौमूत्र में और ऐसा ऐसा ऐसा छोटा छोटा जो बोला सा माइक्रो एलिमेंट्स वो भी मिलेगा
0: जी और साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गया
1: इस
0: सब में एक अलावा हमने देख लीजिए गुड़ बेसन जन बाते जागरी जन जागरी जन बाते गुड़ बेसन बाते और बाते ये सब जो चीज वा बाते काहे यही चीज के इस्तेमाल होला
1: ता जब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में ये सब मिक्रोब के प्रयोग हुए गाय के ओकर गोबर या ओकर मूत्र द्वारा तो जब अब ओके फेमाते करके ओके मिलाजे करके या तो फिर माटी में डाला तो वगैरह वगैरह तो हो सब मिक्रोबा के चला जिए के ना
0: जी
1: अब फेमाते हुए करा तो रख दिले हुआ कहूँ परी तो वहाँ परी चला वो लोग के पिपले कराए के
0: माने कि ये जो फेमाता शोभा बात है ये जरूरी स्टेप है
1: हाँ तो वो लोग के पिपले कराए बा
0: जी
1: हर ग्राम जो निकाला तो कैसे हर किलो हर ग्राम जो गाय के ओकर गोबर बाते वगैरह ओकर में तो जीजा बाते मिक्रोब लेकिन अब हमने के कारों में डाले के बाद तनिशुन से तनिशुन के लेके तनिशुन पानी में डाल के तो हमने कहला बिघा के अब कारों में डाल अब जाना तो तब जिलिए कर अब सा पन्या के ना तब तब डाल अब सा तो मिक्रोबन के पेपले का दिखाते हैं ओके चला खाए के देखे हाई सुविधावा चला दे के तो जो जागरी बाते जो बेसन बाते हवे वो लोग के कहना एगो पहला पहला स्टार्स में एज ए फर्स्ट स्टेप वो लोग के हो खाना रही तो हाउ मिक्रोबन वो लोग मेरे पिपले है खयन सा जियन सा पिपले हुए सा ऐसे हमने के जो मेलाज में मिलियों मिलियों के ऐसा मिक्रोबॉल रही तब जब झीलिए का डालब से ऐसी सब सगरू डाल दे
0: जी तब भाई शंभू हजा परी हम देखा था जो को प्रिंसिपल्स है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जैसे हमने बात करी राजा बीजामृत जो सीड ट्रीटमेंट बाटे जीवामृत माइक्रोबियल कल्चर जो मल्चिंग बाटे अच्छा दाना और वापस आई जो शब्द बाटे बहुत ही टेक्निकल है और सॉइल एरेशन के बारे में और हमने देखा था जो कोबुजा बाटे माटी खातिर जो पत्ता खातिर
1: खातिर तनि सुनी के बारे में बताओ हाय में नाम पर उतना नहीं चला जाके उलझे के वो लॉजिक चला समझे के पहला लॉजिक बातें कैसे माटी के उपजाऊ रखे के
0: जी।
1: कैसे माटी में जो बीमारी वगैरह बातें कैसे जब बीज डाला तो या छोटा पौधा ट्रांसप्लांटिंग करे तो आते को बीमारी आवेला या फिर जब बड़ा होता पौधा तब माटी में से बीमारी आवेला तो कैसे ये सब बीज के पौधा के बचाए के
0: जी
1: तो एक उपाय पाशो है गौमूत्र और गोबर के प्रयोग करके मिलाजे करके जैसे बोला बीज अमृत वगैरह तो वो सब डाल जा माटी में पौधा की सुरक्षित रखे खाते हैं बीज के सुरक्षित खाते हैं ओके खाते हैं एक दूसरी बात है ऐसी माटी में वही माटी में जब डाल जाता कैसे बोली अनेक प्रकार के मिक्रोब बेनिफिशियल माइक्रोब एक आध गोबा जो डिकम्पोजिशन एक्सेलरे करेला तो जब माटी में कैसे पायास बाते सरत आते वगैरह वगैरह माटी के अंदर में भी भाव हुई तो जब भाई मिक्रोबन पड़ेला तो जब खालन से ना उन लोग के चाला पिपले हुए के तो हमें तो डिकम्पोज करके ओके कंपोस्ट कहते हो जला तब ह्यूमस कहते हो जला तब बेनिफिशियल रहेगा। तब अब दूसर और जब देखा जा देखो दूसरा कैटेगरी

0: lima jen peta pada dalam jauh.
1: Ji.
0: Tahaya jen preparation wate sakap jauh peta pada dalit. Jilwe kat kiri kini. Tapi kuku kami hau mikroban mana? Pasti benda ni bacillus subtilis.
1: Ji.
0: Bimari ke khilaf kama wila. Sebelum nas bati bagaira. Lekin ab ukan me kunci kerap jauh. Khaskar piluas lipte khatin. Tapi ukan me अनेक प्रकार के जोन पत्ता बाते उस सकब सा ओकर में जोड़ दे
1: जी।
0: अब हमने तो भारत में नहीं जा भारत में अनेक प्रकार के जुसर कहते पेड़ पौधा मिलेला जेका से पत्ता प्रयोग सकब सा करे हमने लगे बाते हमने लगे नीम बाते जिस पता लीला पेयस बाते सकब सा कर प्रयोग करे धतुरा बाते जहां जहां दिखिलाचा जहां जहां खेत के से छोड़ल बाते देखो जुसर पौधा उगेला ओकर नाम कास्टो वो भी सकल आकर प्रयोग करे तो सकल आकर रुपाई करे जमे ओकर पत्ता मिले ना कुकलुश बाते तो हम जो लगे अनेक प्रकार के ऐसा ऐसा चीज बाते जो सकब सा करे अब जैसे बोली गौमूत में एंजाइम्स भी मिलेला तो दूसर फासों से पौधा लोग के एदे कहला तो ये भी सकब सा दूसर चीज प्रिपरेशन बाते जैसे कि जन हमने के सब्जी के छिलका वगैरह बात है जो सब्जी नहीं प्रयोग करते हैं वो भी सकब सा में मिला के फिर मौते कर दी है ये पॉसिबिलिटी बात है
1: माने कि ढेर पॉसिबिलिटी बा जब हमने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर माने कि सकब सा बोले जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो उकरा प्रमोट करे था
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एक में एक चीज रासायनिक के प्रयोग नहीं होता अगर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जन जन प्रिपरेशन के नाम जैसे बोला तो एक आध गो प्रिपरेशन के नाम देख अस्त्र से समाप्त होला अस्त्र
1: जी
0: तो अस्त्र यानी कि वेपन
1: वेपन
0: मारे खातिन तो वही जब वो कमें पत्ता सब डाल देला तो पिलवा के मारे था तेगो अस्त्र होगा
1: जी जी सच्ची बात है तो 402-80-85 402-80-85 पर सक बजे हमने के फोन करे हाई अभी जितना चीज हमने सुननी जा ओकर लावौताज जब लेक है जो जीरो नेचुरल जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के आगमन होल बाटे कोनो चैलेंजेस सामना करत हुआ जा जो खेती हर हुआ कई जना ये जो टेक्निक वा से वो लोग सैटिस्फे हुआ जा कोनो क्रिटिक्स मिलल बाटे कैसे
0: पहला देखिला सा जो किसान उसे सैटिस्फे बाटे हम हाल ही में हम उत्तरी इलाका में रेजो मोतालों के ऑफिसर इंचार्ज रहनी हमारे इलाका में दो जना ऐसन बा जो खेती बाड़ी करे लंजा और गाय के पोषण भी करे लंजा तो वो लोग जीवन मित्रम वगैरह वगैरह सब बनावे लंजा और प्रयोग करे लंजा खेत में और वो लोग के खेत जैसे बोला सा ऑर्गेनिक बीयू है तो अपन अपन बाहर के रासायनिक पदार्थ बिल्कुल प्रयोग नहीं कर लंजा तो ये पर ही थोड़ा बोलाता है कि हमारे क्षेत्र में जनरली तो प्रयोग होता है और खूबी से
1: जी
0: और लोग के जन खेती बाड़ी बा बढ़िया रहेला जन लोग की फसल रहेला बढ़िया रहेला
1: जब फसल की बात करें तो वक्त खाली जो सब्जी पर बातें जो फल फूल बातें एक इस्तेमाल होला एक में सीरियस कैसे कहाँ पर ही होला
0: सब चीज में सब बता प्रयोग करे किसी बोलियों का लॉजिक बात है ना माटी के बढ़िया रहने के बाद मिखोब के से पोते से करे के बाद तब माटी में डलबा
1: जी
0: तब पत्ता सब वगैरह मिला के तब सब पे पौधा पर डाले तब पिलुआ से लिपटे भी या बीमारी से भी लिपटे भी तो क्या सब्जी हो या सब्जी के पौधा हो या फल के पौधा हो या फूल के फर्क नहीं पड़ी
1: जी
0: दूसरा बात है चैलेंज
1: जी
0: कठिनाई तो कठिनाई बात है काहे कि देखा है दो को उदाहरण में जन बोली दोनों जना के वो लोग के अपन गाय बात है
1: जी
0: एक वो कठिनाई गाय जन बात है उता देसी गाय नहीं है लेकिन फिर भी छोटा मात्रा में सब रहेला बिखो वगैरह तो काम चलाव तंचा आज देसी गाय मिला तो शायद और जस्टिन मन से काम करत आई एगो दूसरा चैलेंज बात है कि ई दुगो उदाहरण में और एक बार ये लोग की अपन गाय बातें अब हमने के देश में कितना किसान लोग बातें
1: वो
0: लोग लगे तो गाय ने बातें
1: कितना किसान जो पालक पोल
0: किसान लगे तो गाय ने मानो तो ये ऐसा स्थिति में हम बोलती हमने के किसान भाई बहन लोग जो एकर में कोनो प्रकार से कुछ जनसा ऐसा योजना आने के अपन अपन खेती बाड़ी में

0: तो सेकेंड जहाँ हमने के लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन के ऑफिसर लोग के वो लोग से संपर्क रखे तो वो लोग सेकेंड जहाँ बोले कहाँ कहाँ पर ही गाय के इलवाज बातें पशुपालन होता गाय के तो सत्यन जाके वो लोग से भेंट करे तब वहाँ से गौमूत्र और गोबर मंगाए है एगो वापियोले में ऐसा नहीं गो छोटा सुन संस्था भाते का नाम नहीं बोला लेकिन वो प्रिपरेशन करके बेचेला भी
1: अच्छा
0: हाँ बेचेला भी गालों में डाल के बेचेला। दूसरा चीज बोलती देखा किसान अनेक प्रकार के बा कोनो बा कैसे बोला स्मॉल होल्डर सकेला तनी सुन माटी हुई कर सकेला आधा बीघा भर करत हुए अपन खेती बाड़ी सकेला एक बीघा में करत हुए लेकिन एक आध गो ऐसा किसान बातें जो सकेला पाँच बीघा छः बीघा बड़का मात्रा में और सकेला ये सब इतना ले माटी बातें अभी तक जाने ला कम करवा के
1: भी
0: प्रॉब्लम बातें तो सकेला पाँच बीघा हुई तो पाँच बीघा के ओकर देख रेख नहीं करत हुए अंजा सकेला तीन बीघा के रोपाई करते अंजा तो हम बोलती है एगो लोकाजों बातें एगो अपॉर्चुनिटी बातें तो ये लोग सकतन जा हवे एक बीघा में गाय के पोषण करे तब हवे एक बीघा जो बातें ओकर में जो फुगाज बातें ओकर भी रोपाई करे तो हुए पर ही मिल जाए फुगाज गाय में बाती गाय भी रही तो हर खेत में माचो गाने भी मिली फिमिया द्वारा सक बजा गाय के गोबर और यूरिन के प्रयोग भी करे जिसको बजे नेचुरल फार्मिंग में
1: जी।
0: अब बात रही फोमाशों के तो फागे तो यहाँ पर ही बात तो जे भी खोजी अमल करे के जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में तो सकन जा हमने के ऑफिसर से भेंट करे ये ट्रेनिंग के वो मांग करे तो हमने एक ऑर्गेनाइजे कर सा
1: तू तेरे पर रहेला जैसे बोला था अभी दुगो जना हवन वो ये जन नेचुरल बजट जीरो फार्मिंग करा था वन जा तो ढेर जना आवेलन पूछे लन पूछताछ करे लन कि ये कौन ची है जे लोग नहीं जाने लन हाँ मन बातें ढेर जना आवेलन
0: ढेर जना नहीं हम सच सच सच ऐसे रखा था ढेर जना नहीं क्योंकि ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बा ढेर कोई जन भी नहीं करेला
1: जी
0: ढेर कोई जन भी नहीं करेगा बा तो और दूसरा चीज बाकी जैसे बोलनी जितना किसान लोग बातें किसे हमारे जो क्षेत्र रहल दू जना बातें
1: जी
0: गाय रहल हमार जो क्षेत्र बातें रहल हम ट्रांसफर करें हम इन्फॉर्मेशन यूनिट में है तो वहाँ के क्षेत्र में हमार लगभग 1200 किसान रहल
1: जी।
0: अब 1200 किसान में दो किसान लगे गाय रहल जो लोग करत वंजा दो गना हजार किसान में आज करब ओकर प्रतिशत तो कितना होला
1: ढेर हो जाना
0: नहीं दो एक हजार में
1: तो दो
0: सौ नहीं
1: जी
0: हाँ 10% के तो हो जहाँ 200 रहे के तो 1% के जहाँ 20 रहे के तो दो बाया पर जीरो जीरो बहुत कमती बात है तो वो खातिन ये गो तुहरा एगो एंजिकाशो देवेला कि 1200 किसान में दू गो खाली ओका लगे गाय बात है तो 1000 से ज़्यादा जो किसान बातें ओका लगे गाय ही नहीं बात तो कैसे कर में कैसे अमल करी कैसे कर में रुचि लाए तो नहीं करी ना पूजा तो ओका लगे नहीं बात है अब कहाँ से आनी तो हाई सब चैलेंज है तो लेकिन हमने के चला सोच बदले के कैसे आप एमबीसी द्वारा यहाँ पर बात करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर जे को किसान लगे गाय नहीं हुई तो सखियन जा जो जे ओकर इलवाज कर रहा था ओकर से संपर्क रखे
1: जब जन सालों जो लाके कुलचे आसी जो सब होला तो एक बारे में बचा ला
0: हाँ इस सब चैलेंज सब हाँ उठल रहा तो एक समाधान खातिर अनेक योजना भी अभी तैयारी होता
1: जी
0: तो अभी सकेला एगो एक महीना में शायद अनेक प्रकार के फोमाशों भी शुरू हुई
1: अच्छा
0: ट्रेनिंग शुरू हुई जरिए बजट नेचुरल फार्मिंग पर
1: जी इधर बढ़िया बात है
0: उत्साह बढ़ाए खातिन
1: ये तो चाहिला हुई कि अच्छा हमने के बतावा शंभू जी हमने अभी 2026 में है जा हमने टेक्नोलॉजी संगे चलत है जा आगे अभी जितना जन कोपोजा बातें या घेचा बातें जो अभी जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ये जो टेक्निकवा बातें तो हर देखे में वो बदला था कि जितना चीज हबीले के इस्तेमाल होते थे अब था जो नैकरे जो बातें वो ही इस्तेमाल करते जयन जा
0: नहीं
1: चाहेला बदले के कैसे
0: बदले के देखा जैसे बोलनी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एविडेंस बेस्ड था
1: जी
0: साइंटिफिक एविडेंस बातें कि हो देसी गाय खासकर देसी गाय के ओकर गोबर में या फिर ओकर मूत्र में तो अनेक प्रकार

0: के बेनिफिशियल बैक्टीरिया बाटे तो ओके लेके सकब्जा प्रयोग करे मिलावट वगैरह बनाए तब खेत में प्रयोग कर जाओ। जब टेक्नोलॉजी के बात करे तो कुछ करे तो आजकल कैसे जो हो बैसिलस सबसिलिस बोलनी
1: जी
0: तो आजकल बैसिलस सबसिलिस के लैबोरेटरी में पिपले करके पैकेजिंग करके बेचा जाता बिचाला मॉरिशस में बिचाता
1: मैंने
0: सोडोमोनास जनबा वो बिचाता जन द्वारा बोनी कैसे फॉस्फेट सोलिबिलाइजिंग बैक्टीरिया बाटे मिक्रोब बाटे वो भी बिचाता
1: जी
0: जैसे गौमूत्र में नाइट्रोजन की मात्रा बड़ा बाटे तो खेत में काम आवेला फर्टिलाइजेशन खातिर तो उधर तक खाद बाटे बिचाता लामोनिया वगैरह तो जो जो चीज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में बाटे बिचाता जो गोबर बाटे शायद कंपोस्ट भी बनेला तो बचे बिचाला लेकिन लेकिन शुरू में जैसे बोलनी जा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हो नवा जुड़ल बा जीरो बजट वो किसान लोग में एगो स्वतंत्रता आने लग जा कि किसान जो बाटे बाहर के जो ऐतों बाटे ओकर पर निर्भर नहीं पड़ी करके खरीदारी नहीं पड़े के करके खरीदारी नहीं पड़ी करके ही पड़ी ओकर फर्क बा ना बड़का फर्क बाते एक गोबा ऐसा चीज के प्रयोग कर जो नेचुरल बाते दूसर बा प्रयोग कर अपन से खर्चा बचाओ
1: जी
0: नहीं पड़ी खर्चा करे के तो टेक्नोलॉजी आज आई आज जुड़ब सा बातें जैसे बोलाते हैं टेक्नोलॉजी बातें लेकिन फिर से कुछ हो तो किसान के लोग के बोला जा जा देखा टेक्नोलॉजी है सब बातें जा खरीद के प्रयोग कर
1: सकल जाकर
0: लगे जेकर लगे एक को दूसर तरह के समाधान ने बातें गाय शायद दूर में बातें के पास जाता ढेर गाड़ी लेकर साफ से नोफ जाके पता नहीं ऐसे कुछ हो कठिनाई हो तो उस तकी से टेक्नोलॉजी के ओर जाए ऐसा जो पदार्थ के प्रयोग करे लेकिन एक दूसर डिपेंडेंस में ढुकता ना जहाँ सकी ऐ डिपेंडेंट रहे तो हवे मांग कर रहता है कि जहाँ तक हो सके कितना हमने के कारो जन खेत बाते देखा तो ऐसे छोड़ल बाते हाँ घास से भरल बाते तो वो गाय डाल देता छाने रह तो गाय डाल देता फिमिया मिला वगैरह सब मिला जीरो बजट कर दूध भी मिल जाते खाई भी करे तो हाई सब चला सोच विचार करे कि तब देखे कि आज कोई खोजी सचे के स्वतंत्र हो के कुछ पर निर्भर नहीं करे के तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वो मार्ग
1: जी तो हमने के जाए के भगत लगभग हो गल बातें तोर से एक प्रश्न पूछती जब ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है जो टेक्निक बात है जो भोजवा तैयार कर डेले हव गौमूत्र और जो गोबर बाटे जो नीम बाटे जो बेसन ये सब बाटे जब थला आज तैयार कर ले हव ये कितना दिन सकबा रखे
0: सही सकल जला रखे सबसे बेस्ट है सबसे अच्छा है आज जब तैयारी हो गल समय लगेगा जब तैयारी हो गल तो लेकिन आज सकबा जितना जल्दी हो सके तो सकबा प्रयोग करे तो अच्छा बात है क्योंकि सब चीज़ फ्रेश बात है ना लेकिन फेमौते है तो फेमौते यानी सकबा रखे लेकिन रखे खातिन भुला के नहीं चलना कि चलना कर में हो खाना डाले के जब मैं बाकती रही जो बातें जो मिखोब बातें हाँ पिपले होते जाए क्योंकि आज है नहीं करबा तब पिपली नहीं हुई
1: कोनो फायदा नहीं हुई
0: कोनो फायदा नहीं हुई तो एक आध वैसा किसान बातें हम जानी ला या पता नहीं अभी ले कर रहा था कि नहीं लेकिन रिपाई में एगो किसान रहल जो नु बना के रखा था तब पिपले करता हाँ पिपले करता खाए हुए सबके मैं डाली जब पिपले करी तो हवे लेके प्रयोग करी हवे लेके फिर से पिपले करी ऐसे करता
1: हल अच्छा तो चल हाजा परी ढेर चीज हमने जान ली जा जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में तो जे तू हूँ चाहत हो अपन माटी के बरियाए बनाए खातिर तुहर जो प्लौताशों बातें तुहर जो खेती बाड़ी तू करे ला आजकल हमने सब कुछ देखा था जहाँ हमने पेस्टिसाइड जीरो पेस्टिसाइड पर बतलाई ली जा कि कैसे बिना रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल करे तू सकबा जा अपन पैदावार अपन प्लौताशों के बरियाए बनाए खातिर काकि जितना चीज प्लौतल जाला हमने खाइला सा सब कोई खालन सा और जे हमने स्वस्थ रहब जा हमने के देश स्वस्थ रही तो हमने आगे बढ़ब जा तो जाय से आगे जितना जना हबी तोहरा देखत हुवन सुनत हुवन तनी तनी समझल ना जा जे कुछ फोन नंबर बाटे कहाँ पर फोन करेगी बाती जे कुछ जाने की बाती
0: हमने के कोई नो जन क्रॉप एक्सटेंशन के सब ऑफिस बा 16 गो दफ्तर बा
1: जी
0: मॉरिशस में

0: कोनोए गो दफ्तर में जाया जा या फिर हमने लगे हेड ऑफिस में हेड ऑफिस नहीं यहाँ सैन पियर के दफ्तर बा वहाँ पर ही सकबा जा वहाँ पर ही आए और वहाँ पर ही ज़्यादा जानकारी दे सौ। और एक और चीज़ और एक में हम जोड़ दिला कि जब जाने ला अभी जो समस्या चला था वेस्टर्न एशिया में
1: जी
0: इन्हें चला भुलाए कि हमने कितना निर्भर कहला सा बाहर के जो खाद बातें बाहर के जो पेस्टिसाइड बातें वगैरह वगैरह हमने के कितना देवीज जो बातें एक में जाला और ई कारण से जब देवीज जाला तो हुई एक फ्लाशो आने ला हमने के जो रुपया बातें दिवालुए होला
1: जी
0: खाली यही से नहीं और चीज बा लेकिन ये एगो कॉन्ट्रीब्यूशन है दिवालुआशों में तो हमने एगो हम मांग करती एगो पात्रियत की तरह जितना कोई सुना था जो किसान लोग बातें तो हम मांग करती आज हमने ऐसा ऐसा खाली है ही नहीं जो बचत नेचुरल फार्मिंग लेकिन ऐसा ऐसा योजना जो अपना जा जो बाहर के जो चीज बा एग्रीकल्चर इनपुट बातें पर निर्भर नहीं कर अब जा तो हमने की इकोनॉमी
1: सच्चे की तो जितना चीज अभी बोले हो भाई शंभू जी हमने आशा करे थे जा ढेर जना समझ गए जा और वो कई जना समझे लन कोनो रास्ता खोजे लन नहीं जाने लन तो फागी बा है जा परी जे कुछ पूछे के रही जन सैफिया के मेन ऑफिस बात है 433-43-78 कुछ जानकारी सोच जे पूछे की बातें हावजा परी तोहरा सब कुछ मिल जाए जो इन्फॉर्मेशन डेस्क बातें हावजा परी। तो आज के चर्चा कार्यक्रम है जे परी समाप्त होला तो श्रीमान संजय शंभू बहुत बहुत धन्यवाद तोहरा सके आवत हफ्ता फिरों से हमने मिला जा जी। तो आप सब लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद सचे टीम दने से नमस्ते प्रणाम।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत बेरीव में 375 मिलियन रुपये की लागत से एक नए भंडारण परियोजना को शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड बहुत जल्द एक कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर शुरू करेगा, जारी करेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत बेरीव स्थित नेशनल होलसेल मार्केट के पीछे आधुनिक कोल्ड स्टोरेज गोदाम तथा एक कृषि खाद्य प्रसंस्करण इकाई का निर्माण किया जाएगा। कुल 8000 टन भंडारण क्षमता वाले ये गोदाम देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति संबंधी संकटों के दौरान भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये परियोजना कृषि उत्पादों के बेहतर संरक्षण, खाद्य में कमी तथा स्थानीय कृषि क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करेगी। मॉरिशस को इलाकाई मेडिकल हब बनाने की योजना, मेडिवेशन लिमिटेड मोका स्मार्ट सिटी में मेडिकल डिवाइस बनाने वाली एक फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त है। युवकों में तंबाकू का सेवन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व तंबाकू रहित दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। उद्देश्य रहा तंबाकू उत्पादों से जुड़ी खतरों के प्रति रोकथाम और जागरूकता को मजबूत करना, विशेषकर युवकों के बीच। विदेश में अमरीका ने कहा है

0: कि उसने सप्ताहांत में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। तेहरान ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में एक अमरीकी सैन्य अध्यक्ष को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने आत्मरक्षा के तहत हमले किए हैं और उनके अनुसार ये कार्रवाई ईरान की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन को मार गिराना भी शामिल रहा। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। हम मिलेंगे शाम 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन के साथ।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: Aapke sitare.
3: सोमवार 1 जून, घड़ी मिला लीजिए सपेर के 4:05। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लिसनर्स का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। देखते ही देखते मई महीना समाप्त हो गया, जून महीना शुरू हो गया है। आज जून महीने की 1 तारीख है। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं और हमारे रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़ चुके हैं। और चलिए हम भी यहाँ पर आ गए हैं आपका साथ देने के लिए अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक। और आपके सितारे इस प्रोग्राम में आज हम किन पर बात करने वाले हैं ये तो आप सोच ही रहे होंगे। सो आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिंगर पर, एक ऐसे सिंगर के बारे में जो आज हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, जो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन इनकी गायकी के ज़रिए ये अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेबैक सिंगर के बारे में। 31 मई 2022 को ये चल बसे थे। कल जो है इनकी बरसी थी 31 मई, हर साल जो है इनकी बरसी होती है। सो हमने सोचा क्यों ना इनके खूबसूरत गानों के ज़रिए केके को याद किया जाए, इनके बारे में कुछ बातें जोड़ी जाए। और यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं यारो फिल्म पल एल्बम के इस खूबसूरत गाने के साथ, यारो दोस्ती यही तो ज़िंदगी है। यकीनन इस गाने के साथ जो है केके को बेशुमार कामयाबी मिली थी। और चलिए इसी गाने के साथ आज के हमारे आपके सितारे इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं।
2: RM3 Radio.

पहले ये जो पल इस एल्बम का गाना आप सुन रहे थे यारो के की आवाज़ में, ये गाना आज भी इतना पॉपुलर है कि क्या कहे। 1999 में जो है ये एल्बम रिलीज़ हुई थी और ये गाना आज भी अगर कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी है, दोस्त जो है साथ में मिलकर कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साथ, दोस्ती की जब भी बात आती है ये गाना ज़रूर चलता है। सो चलिए इसी गाने के ज़रिए हम के को याद कर रहे हैं और अगला जो गाना है इसकी ओर हम बढ़ते हैं। माचिस फिल्म का ये जो गाना हम चलाने वाले हैं, छोड़ आए हम वो गलियां, ये भी इनके करियर के शुरुआती दौर का गाना रहा है। ऐसे इस गाने में इनके साथ और भी बड़े बड़े कलाकारों ने गाना गाया है, हरिहरन, सुरेश वाडकर, विनोद सहगल और के, लेकिन सभी की आवाज़ को बेहद पसंद किया गया था और उनमें के की भी आवाज़ थी। RM3 Radio.

0: के सितारे।
1: चलिए देखते ही देखते 4:21 ऑलरेडी आपके सितारे ऑन रेडियो मनोरंजन। मैं सुमी हरमनदेस की तरह आपका साथ दे रही हूँ और आज हम के गाए हुए कुछ खूबसूरत तराने आपके लिए चला रहे हैं और इनको याद कर रहे हैं। और अगर आप भी कोई गाना के का किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, बेशक यू आर मोस्ट वेलकम। 4028070 है नंबर हमारा फॉर योर फोन कॉल्स, और यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250602 00 पर भी। और चलिए कुछ बेहतरीन गाने के गाए हुए हम चला रहे हैं, और अगला जो तराना हमने चूज़ किया है वो है हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म का तड़प तड़प के। ये जो गाना है इतना पॉपुलर हुआ था 90s के सालों में, आया था ये तराना, और इस गाने ने के को इनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया था फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, नॉमिनेट हुए थे इनफैक्ट ये। और उसके बाद क्या था, इतने बेहतरीन गाने के बाद कभी इन्होंने पलट कर नहीं देखा और कामयाबी की सीढ़ियां जो है चढ़ते गए।

0: आपके सितारे
1: जी, आपके सितारे और केके की बात करें तो इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत है बतौर जिंगल गाकर शुरू की थी, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में जो जिंगल्स होते हैं उन्हें ये गाया करते थे। 1994 में जो है पहली बार के लिए उन्होंने अपना जो है डेमो टेप किसी कंपनी को दिया था और उसके बाद जो है ऐसे इन्होंने जिंगल गाने की शुरुआत की थी और लगभग 4 साल में इन्होंने 3,500 से भी ज़्यादा जिंगल गाए थे, वो भी 11 भाषाओं में। और उसके बाद जाकर इन्हें जो है फिल्मों में गाने का भी मौका मिला था। ऐसे सिर्फ इन्होंने हिंदी भाषा में गाने नहीं गाए हैं, इन्होंने जो है काफ़ी गाने गाए हैं तेलुगू, तमिल और कन्नड़, इन भाषाओं में भी, और कई अवार्ड्स भी इन्होंने अपने करियर के दौरान अपने नाम किए हैं। ऐसे तो कहते हैं कि बॉलीवुड की बात करें तो माचिस फिल्म का जो गाना है ये इनके करियर का पहला बॉलीवुड सॉन्ग था, छोड़ आए हम वो गलियां, लेकिन हम दिल दे चुके सनम ये जो गाना है तड़प तड़प के, ये पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था और जो है इससे इन्होंने जो है अपने करियर की जो है शुरुआत की थी। लेकिन माचिस ये जो फिल्म है ये 1996 में आई थी और हम दिल दे चुके सनम का ये जो गाना है तड़प तड़प के, ये इनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट रहा। इसके बाद इन्होंने काफ़ी बेहतरीन गाने गाए हैं, देवदास, वो लम्हे, ओम शांति होम, बचना है हसीनो, दिल चाहता है जैसी फिल्मों के लिए। दिल चाहता है इस फिल्म की बात हम कर रहे हैं तो चलिए हो जाए इस फिल्म का ये तराना, कोई कहे कहता रहे, शंकर माधवन, शान और केके की आवाज़ों में। ऐसे बहुत से बॉलीवुड के जो नए सिंगर्स हैं केके को अपना आइडल, अपना आइकन मानते हैं और इनसे काफ़ी इंस्पायर भी होते हैं।

0: आपके सितारे।
1: चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम में केके के गाए हुए गानों को आप एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो सो मच। कल 31 मई 2022 को वो चल बसे थे, तो हमने सोचा क्यों ना केके को याद करते हुए आज आपके सितारे प्रोग्राम उनको डेडिकेट किया जाए। और यहाँ पर आपके मैसेजेस भी हमें मिल रहे हैं, थैंक यू सो सो मच। आपके फ़ोन कॉल्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। विमला जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रहे कि गाने बड़े कमाल के हैं। यस, नो डाउट। सरिता जी कटरबोन से हमारा साथ दे रही है, उन्होंने लिखा है कि केके की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, हो सके तो बजरंगी भाईजान का एक गाना उनकी आवाज़ में चला देना। तो बिल्कुल सरिता जी, जो अगला गाना है आपके नाम हम करते हैं।

0: आपके सितारे
1: चलिए आपके सितारे के सेकंड आवर में हम पहुंच गए हैं। इन खूबसूरत गानों को सुनते सुनते कैसे एक घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। और आज हम केके के गाए हुए खूबसूरत गाने आप सभी के लिए चला रहे हैं। और यहाँ पर बात करें इनके करियर की, इनके गानों की जो इन्होंने गाए हैं, ऐसे सिर्फ फिल्मों के लिए ही इन्होंने गाने नहीं गाए हैं, ऐसे जो है इन्होंने काफ़ी प्राइवेट एल्बम्स जो है 90s के सालों में एल्बम्स का दौर हुआ करता था, जहाँ पर पल इस सोलो एल्बम से जो है इन्होंने डेब्यू किया था। इसका तो गाना हम चला ही चुके थे शुरुआत में। फिर जो है हम सफ़र, ये एल्बम भी एक आई थी इनकी, और जो है जिसमें काफ़ी गाने बहुत ही पॉपुलर हुए थे। और टेलीविज़न के सीरियल्स के लिए भी इन्होंने काफ़ी गाने गाए हैं, उसमें कुछ पॉपुलर टेलीविज़न सीरीज़ के नाम शामिल होते हैं, जस्ट मोहब्बत, फेम, गुरुकुल, जस्ट डांस जैसे जो है शोज़ काफ़ी। और वहीं पर इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न शो के लिए भी जो है एक गाना इन्होंने गाया था। और वहीं पर केके जो है एमटीवी म्यूजिकल प्रोग्राम, कोक स्टूडियो, कव्वाली, ये सभी प्रोग्राम्स का भी हिस्सा बन चुके हैं, काफ़ी रियलिटी शो का भी ये हिस्सा बन चुके हैं। और वहीं पर जो है केके 2015 में जो इंडियन आइडल जूनियर आया था उसमें ये गेस्ट जूरी के हिसाब से भी ये नज़र आए थे। चलिए अभी के लिए कुछ और गाने हो जाए केके के गाए हुए। और ये जो अगला तराना चल पड़ा है, जन्नत फिल्म का ये गाना है।

0: के सितारे।
1: ऐसे के साहब की बात करें तो इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने कभी कोई फॉर्मल म्यूज़िकल ट्रेनिंग हासिल नहीं की, लेकिन इनके आवाज़ में वो इमोशन भी दिखता है, इनकी आवाज़ में वो प्यार भी दिखता है, इनकी आवाज़ में वो दर्द भी दिखता है, वो गहराई भी दिखती है, क्योंकि हर तरह के गाने इन्होंने गाए हैं और इनके सभी गानों को बेहद पसंद भी किया गया है। एज अ सिंगर ये अपने आप में बहुत ही कमाल के रहे हैं और एज अ ह्यूमन बीइंग भी इन्हें लोग बहुत ही इनके जानने वाले, इनके चाहने वाले बहुत इन्हें अप्रिशिएट किया करते थे। चलिए, आपके सितारे ये प्रोग्राम, आप जुड़े हैं ऑन रेडियो मनोरंजन और आज के गाए हुए गाने हम आपके लिए चला रहे हैं। इस समय विजया जी हमारा साथ दे रही है, कह रही है थैंक यू फॉर प्लेइंग के सॉन्ग्स, ऑल सॉन्ग्स आर अमेजिंग। तो चलिए, जो अगला गाना है ये आपके नाम हम करते हैं विजया जी। इकबाल फिल्म का तराना है, कुछ पाने की हो आस।

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए ऐसे केके की बात करें तो केके कहते थे कि वो किशोरदा को अपना इंस्पिरेशन मानते थे और उन्होंने ऐसे कोई संगीत की तालीम नहीं हासिल की थी, गाना इन्होंने कहीं ऑफिशियली सीखा नहीं था, बस वो गाने को सुनकर गाया करते थे और ऐसे ही उन्हें जो है गाना गाने का मौका मिला एंड वो अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानते थे।

0: आपके सितारे।
1: चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम में हमारा साथ आप दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के कुछ खूबसूरत गाने आपके लिए हम चला रहे हैं। और इनके पर्सनल लाइफ की, इनके निजी जीवन की बात करें तो इन्होंने शादी जो है इनकी अपनी बचपन की फ्रेंड ज्योति कृष्णा से की थी। और इनका एक बेटा है नकुल, इनकी बेटी है तमारा। इसके बेटे नकुल ने जो है गाना गाया है इनकी एल्बम हम सफ़र में, जो कुछ सालों पहले रिलीज़ हुई थी। और यहाँ पर इनके लाइफ की अगर हम बात करें तो जो है बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है, इंडियन सिनेमा जो है, के को एक बहुत ही पॉपुलर और सक्सेसफुल सिंगर के रूप में देखती है। अपने आप में एक वर्सटाइल सिंगर रहे हैं के। और एक समय ऐसा था कि जो है टॉप 10 बॉलीवुड सिंगर्स में इनका नाम गिना जाता था। चलिए अभी भी काफ़ी गाने हमारे लिस्ट में हैं आपके लिए हम चलाने वाले हैं। तो अगला जो तराना है वो है जिस्म 2, इस फिल्म से लिया गया के और श्रेया घोषाल जी की आवाज़ों में।

चलिए, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था कि 31 मई 2022 को केके जो है चल बसे थे। जी हाँ, उस दिन वो एक जगह लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे थे और होटल में वापस लौटने के बाद जो है उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और कार्डियक अरेस्ट के कारण वो चल बसे। लेकिन आज भी उनके खूबसूरत गाए हुए गानों के ज़रिए हम उन्हें याद करते हैं। और चलिए, यहाँ पर इनकी जो आवाज़ है इनके चाहने वालों के दिल में हमेशा बसी रहेगी।

के सितारे और दो घंटों का ये सफ़र इन खूबसूरत गानों के साथ कब शुरू हुआ, कब ख़त्म होने को चला पता ही नहीं चला। और आज हमारे गाने जो है वो के गाए हुए थे और आज के इस प्रोग्राम को आप लोगों ने पसंद किया। आपके मैसेजेस के लिए, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते ये आखिरी गाना आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करते हैं। द ट्रेन फिल्म का ये तराना है ऑब्वियसली के की आवाज़ में और 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी, सो ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ देते रहिए। हैव अ लवली इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।

0: शाम के 6 बजे हैं। नमस्कार, आप सभी को समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। देश में खाद्य सामानों को सुरक्षित रखने की तैयारी अब और तेज हो रही है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड बेलरीव में एक बड़े भंडारण परियोजना पर काम शुरू करने जा रहा है। करीब 375 मिलियन रुपए की इस योजना के तहत आधुनिक कोल्ड स्टोर और कृषि उत्पादों को तैयार करने वाली एक इकाई बनाई जाएगी। मॉरिशस में स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश। मेडिवेशन कंपनी मुका स्मार्ट सिटी में मेडिकल उपकरण बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री स्थापित करेगी। 1 बिलियन रुपए से अधिक की इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। इससे नौकरियां पैदा होंगी और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मॉरिशस की स्थिति को मजबूती मिलेगी। म्यांमार के उत्तरी हिस्से में चीन सीमा के पास एक गांव भीषण धमाके से तबाह हो गया। हादसे में कम से कम 55 लोगों की मौत। धमाका खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक पदार्थ के गोदाम में हुआ है। और विश्व दूध दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। सेहत, पोषण और किसानों की आजीविका में दूध के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिन खास है। कई देशों में इस क्षेत्र से जुड़े किसानों, पशुपालकों और महिलाओं के योगदान को भी सम्मान दिया जा रहा है। देश में खाद्य सामानों को सुरक्षित रखने की तैयारी अब और तेज हो रही है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड बेलरीव में एक बड़े भंडारण परियोजना पर काम शुरू करने जा रहा है। करीब 375 मिलियन रुपए की इस योजना में आधुनिक कोल्ड स्टोर और कृषि उत्पादों को तैयार करने वाली एक इकाई बनाई जाएगी। ये परियोजना नेशनल होलसेल मार्केट के पीछे विकसित होगी। यहां 8000 टन तक खाद्य सामान रखने की व्यवस्था होगी। इससे सामान को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और दामों में बढ़ोतरी या आपूर्ति की कमी जैसी स्थिति से निपटना आसान होगा। माधवी जगन्नाथ, रजनी बिकर।
1: मुका स्थित एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के 20 गो रूम्स में से एक में है। यहाँ पर भंडारण की क्षमता के संचालन से संबंधित कार्य किए जाते हैं और साथ में स्थानीय कृषि उत्पाद संबंधी कार्य भी। ऐसा मौसम और मंडी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसकी तादाद कई मिलियन टन तक पहुँच सकती है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के जनरल मैनेजर नवीन देवाल सिंह ने कहा, 8 मिलियन टन प्याज, आलू, गाजर मिलते हैं स्थानीय कृषकों की ओर से। इन्हें कोल्ड रूम में आगे रखा जाता है बिक्री से पहले। खराब मौसम और विश्व संकटों के चलते सरकार ने स्थानीय कृषि पदार्थों की भंडारण क्षमता को 2 गुना ज्यादा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए आधुनिक रेफ्रिजरेटर भंडार घर बनाए जाएंगे बेलरीव में कोई 10 बीघा जमीन पर नेशनल होलसेल मार्केट के पीछे। नवीन टियापाल सिंह ने आगे बताया, हम कोल्ड रूम के अतिरिक्त भंडारण क्षमता बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उसका भंडारण कर सके। स्थानीय सब्जियों एवं फलों के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की एक अन्य महत्वाकांक्षी परियोजना है एग्रो प्रोसेसिंग परियोजना। बेलरीव में ही जहां सब्जियों को ट्रांसफर कर सके जो मौसम के हिसाब से प्राप्त हो, नौकरी भी पैदा होंगी। बहुत जल्द इस परियोजना के लिए एक कंसल्टेंट को चुना जाएगा। मॉरिशस की कृषि संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रैटेजी के अंतर्गत ये परियोजना चलाई जा रही है। नवीन देवाल सिंह ने आगे कहा, इससे उप

0: उपभोक्ताओं को अच्छे दामों में फल एवं सब्जियां प्राप्त हो सकेंगी स्थिर दामों में, क्योंकि आयात पर निर्भर नहीं होंगे। इस तरह इस आधुनिकतम भंडारण परियोजना का उद्देश्य है स्थानीय उत्पादकता को गतिशील बनाना, कृषि खाद्य सेक्टर को एक मजबूत एवं समावेशी मॉडल में परिवर्तित करना।
1: मॉरिशस में स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश होने जा रहा है। मेडिवेशन कंपनी मोका स्मार्ट सिटी में मेडिकल उपकरण बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री स्थापित करेगी। ₹1 बिलियन से अधिक की इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट भी मिला है। स्थानीय और अफ्रीकी बाजार के लिए बनने वाली ये इकाई कई कुशल नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मॉरिशस की स्थिति को और मजबूत बनाएगी। कारोबारी क्षेत्र में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए कंपटीशन कमीशन ने एक खास मौका दिया है। पेशेवर संगठनों और सहकारी समितियों से कहा गया है कि अगर उनके काम में ऐसी कोई प्रथा रही है जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है तो वे खुद आगे आकर इसकी जानकारी दें। ऐसा करने पर उन्हें सजा से छूट मिल सकती है। ये विशेष योजना 25 मई से 25 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी। कुणाल गोजी, करुणा लालू।
2: कार्टेल बनाने या टेंडरों में हेरफेर करने वाली कंपनियां कुछ मामलों में दंड से छूट प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें स्वेच्छा से उन गतिविधियों का खुलासा करना होगा जो कंपटीशन कमीशन के नियमों के अनुरूप नहीं है। इस प्रोग्राम तक पहुँच होने के लिए कड़े नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। कंपटीशन कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा, हमारी भूमिका केवल उल्लंघन के लिए सजा देना नहीं अपितु कानून को बेहतर रूप से समझने में भी मदद करना है और सुप्रशासन को प्रोत्साहित करना, सभी संगठनों सहकारियों को आंतरिक ऑडिट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि ये देख सके कि कंपटीशन एक्ट का उन्होंने उल्लंघन किया हो। आयोग के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाजारों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के लिए किसी कंपनी पर उसके वार्षिक कारोबार का 10% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
1: और कुछ समय पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, मॉरिशस में स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश। मेडिवेशन कंपनी मोका स्मार्ट सिटी में मेडिकल उपकरण बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री स्थापित कर रही है। ₹1 बिलियन से अधिक की इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट भी मिला है। शहजाद जुमन की रिपोर्ट पर सुनते हैं रजनी बिकर को।
3: पर्यटन, वित्तीय सेवाओं और टेक्नोलॉजी के बाद मॉरिशस एक और उच्च संभावना वाले क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है, वो है मेडिकल टेक्नोलॉजी का क्षेत्र। मेडिवेशंस लिमिटेड के चिकित्सा उपकरण निर्माण कारखाने की परियोजना को हाल ही में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड से प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ये नया कारखाना, जिसे मोका स्मार्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा, विशेष रूप से अस्पतालों, ऑपरेशन थिएटरों, ICU और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट विभागों के लिए उपकरणों का उत्पादन करेगा। मेडिवेशंस लिमिटेड के CEO जाक ब्रियो ने कहा,
4: मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस इन मॉरिशस।
3: इस परियोजना का मकसद है मॉरिशस में चिकित्सा वस्तुएं तैयार करना स्थानीय मंडी और इलाकाई मंडी के लिए, साथ में अफ्रीकी देशों की ओर निर्यात के लिए भी। निर्माण के पहले चरण से संबंधित कार्य 2027 में निर्धारित, अभी प्लान के आखिरी चरणों पर कार्य कर रही है, जरूरी अनुमति हासिल कर रही है। इस पहले चरण के लिए 200 से 250 मिलियन रुपए तक की रकम की जरूरत। जब तीसरे या चौथे स्तर तक जाएंगे तब ज्यादा अहम मूल ढांचों की आवश्यकता होगी। फिर भी पहले चरण की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा ये रहेंगे। एक ऐसी परियोजना है जिसे चरणों में लागू किया जाएगा, लेकिन लंबी अवधि में ये न केवल एक हाई वैल्यू एडेड औद्योगिक गतिविधि को विकसित करने में मदद करेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ते इस क्षेत्र में मॉरिशस की स्थिति को और मजबूत भी करेगी। उन्होंने आगे कहा, इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है। ये योग्यताओं के ट्रांसफर से भी संबंधित है, साथ में स्थानीय स्तर पर नौकरियां भी पैदा होंगी। इंजीनियर, टेक्नीशियन,

0: कामगार, इलेक्ट्रिशियन आदि, साथ में मार्केटिंग, बिक्री और अकाउंटिंग के क्षेत्रों में भी। एक बार पूरी तरह चालू हो जाने के बाद इस कारखाने का लक्ष्य स्थानीय बाजार के साथ साथ निर्यात मंडियों को भी आपूर्ति करना है, जिससे मॉरिशस के उद्योग के लिए विकास का एक नया रास्ता खुलेगा।
1: पूर्व वित्त मंत्री रंगनाथन पदयाची को आज सेंट्रल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनसे उन बयानों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया जिनमें कहा गया था कि बैंक ऑफ मॉरिशस ने 2025 में 83 बिलियन रुपए छाप कर सरकार को ट्रांसफर किए थे। अपने वकील राउफ गुलबुल के साथ पहुंचे रंगनाथन पदयाची ने कहा कि वे केवल अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। लैंड बैरक्स में 3 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद वे वहां से निकले। हालांकि इस जांच के सिलसिले में उन्हें दोबारा भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। गौरतलब है कि बैंक ऑफ मॉरिशस ने 16 मई को इन बयानों के खिलाफ सीसीआईडी में शिकायत दर्ज कराई थी। बैंक ने इन आरोपों को गंभीर, निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया था। ये मामला राष्ट्रीय सभा में भी एक संसदीय प्रश्न के माध्यम से उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कातेरा सापीले के खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास का मामला अब बदल दिया गया है। डीपीपी की सिफारिश के बाद आरोपी पर अब पहले से योजना बनाकर मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया जाएगा। मामला बाद में इंटरमीडिएट कोर्ट में सुना जाएगा। आरोपी पर साल 2019 में एक विवाद के बाद एक व्यक्ति पर हमला करने का आरोप है। जिडो बोडा मामले में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने जांच को एक नया मोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जिडो बोडा के खून और पेशाब में नमूनों में किसी भी नशीले या अवैध पदार्थ के कोई निशान नहीं मिले हैं। ये निष्कर्ष मुख्य आरोपी माइल रोज के उस बयान के विपरीत है जिसमें उसने दावा किया था कि जिडो बोडा नियमित रूप से नशा करता था। उधर पीड़ित परिवार ने भी एक पत्र के जरिए कहा है कि जिडो बोडा एक प्रतिभाशाली कलाकार था और FSL की रिपोर्ट ने उनके विश्वास को और मजबूत किया है।
2: 15 मई को लानिकोलिया में मृत पाए गए जिडो बोडा के मामले में एक नई बात सामने आई है। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट के अनुसार उसके खून में अथवा पेशाब में ड्रग्स अथवा अवैध पदार्थ का कोई निशान नहीं पाया गया है। ये नतीजा इस मामले के दो में से एक संदिग्ध माइल रोज के प्रारंभिक बयान से मेल नहीं खाता, जिसने पूछताछ के दौरान ये कहा था कि जिडो बोडा नियमित रूप से ड्रग्स लेता था। मृतक के परिजनों ने इस आरोप का विरोध किया था। ये उल्लेखनीय है कि दोनों ही 21 वर्षीय माइल रोज और लुइस माइल लारिबॉब को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। माइल रोज ने जांचकर्ताओं से स्वीकार किया था कि उसने क्लेश के साथ जिडो बोडा का गला घोंटा था। जांच के अनुसार लुइस माइल लारिबॉब ने शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की थी।
1: भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर है। इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य अलग अलग देशों के विकास मॉडल, प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय चुनौतियों को करीब से समझना है। इसी कड़ी में डेलीगेशन ने आज एबन में आवास और भूमि मंत्री शकील मोहम्मद से मुलाकात की, जहाँ कई अहम विषयों पर बात की गई। युवाओं में तंबाकू, निकोटाइन और इलेक्ट्रिक सिगरेट का बढ़ता इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। इसका उद्देश्य था खासकर युवाओं को तंबाकू और निकोटाइन की लत से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना और बचाव के संदेश को मजबूत बनाना। कोयल सीतल रचनी बिकर।
2: तंबाकू और निकोटिन के खतरों पर आगाह करते हुए नौजवानों के समक्ष निरोध को बढ़ावा देने के मकसद से ये कार्यशाला लगाई गई। प्रस्तुत जानकारियों के मुताबिक तंबाकू मृत्यु का एक प्रमुख कारण है जिसे रोका जा सकता है। प्रति साल इसकी वजह से 8 मिलियन लोगों की मौत होती है। WHO के प्रतिनिधि ने कहा, मॉरिशस तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में से एक है, फिर भी पिछले साल लगभग 1400

0: लोगों की मौत तंबाकू सेवन और तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण हुई। मॉरिशस में अधिकारियों का कहना है कि समय के साथ साथ सिगरेट सेवन को घटाने के वास्ते कई कदम लागू किए गए। इनमें पार्किंग में स्वास्थ्य चेतावनियां शामिल हैं। इस बीच निकोटीन के नए उत्पाद के उभरने से सतर्कता बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जूनियर मंत्री अनिष्टा बाबूराम ने कहा, निरोध को लेकर युवाओं पर जोर दे रहे हैं ताकि वे सिगरेट और वेपिंग से दूर रहें। वेपिंग मॉरिशस में गैर कानूनी है, लेकिन युवाओं के बीच ये प्रचलित है। ये कार्यशाला कई ठोस कदमों के साथ खत्म होगी, जिसका मकसद तंबाकू खोरी के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना है।
1: साहित्य, कला और मानवता के प्रतीक रविंद्रनाथ टैगोर को उनके 165वें जन्म वर्ष पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान में आयोजित समारोह में इस वर्ष का टैगोर मेमोरियल लेक्चर राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने प्रस्तुत किया। युवाओं की रचनात्मकता भी खास आकर्षण रही, जहां देश भर के माध्यमिक स्कूलों से आई करीब 200 छात्रों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। रंगों और चित्रों के माध्यम से उन्होंने अपनी कल्पना, सोच और कला प्रतिभा को अभिव्यक्त किया। समारोह में विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। विधिमा सिबुरन।
2: कवि, दार्शनिक और साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा, रचनात्मकता और मानवतावाद के अपने दृष्टिकोण से पीढ़ियों को प्रेरित करते आ रहे हैं। टैगोर मेमोरियल लेक्चर के 98वें संस्करण के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान ने द परफेक्ट पर्ल ऑफ द डीप ओशन विषय पर आयोजित एक ड्रॉइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। ओहेलिया कहती हैं, मेरे अध्यापकों ने मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं समुद्र पसंद करती हूँ। कैम्ब्रिज प्रोजेक्ट में मैं इस पर काम कर रही हूँ, इसलिए मैं अधिक प्रेरित हुई हूँ।
3: Pour moi, la période c'est moi. Mes sentiments dans une société où tout est standardisé, tout le monde essaie d'être pareil, on se met dans des petites boîtes.
2: एलिशेवा ने कहा, मैं खुद मोती हूँ, मैं अपने आप को सीमित नहीं रखती, मैं इस पेंटिंग के माध्यम से अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही
3: हूँ।
2: इस वर्ष टैगोर मेमोरियल लेक्चर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल द्वारा दिया गया, जिन्होंने आज की दुनिया में टैगोर के विचारों की प्रासंगिकता पर विशेष जोर दिया।
4: La vie et la contribution de Rabindranath Tagore, essentiellement comment nous besoin refaire une réflexion l'eau nous-mêmes. Deuxièmement, mon aussi cause la philosophie de l'éducation de Rabindranath Tagore.
2: मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन और योगदान पर बात की कि कैसे हमें अपने आप पर चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने शैक्षिक आध्यात्मिकता पर बात की, जो बच्चों की जरूरतों पर आधारित है। और तीसरी बात, टैगोर की अवधारणा ये है कि विश्व एक बड़ा परिवार है और हमारे बीच सॉलिडारिटी, साझा और शांति होनी चाहिए। ये दिखने में आसान विचार है, लेकिन जबरदस्त संदेश है। हमारी युवा पीढ़ी को ऐसे संदेश अपनाने चाहिए और अपनी जिंदगी में ढालने चाहिए।

0: शिक्षा, संस्कृति और कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से इन आयोजनों का उद्देश्य रविंद्रनाथ टैगोर के मूल्यों को बनाए रखना और मॉरिशस की युवा पीढ़ी को अपनी रचनात्मकता, सीखने के प्रति रुचि तथा सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपने लगाव को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: और कुछ समय पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर है। इसी कड़ी में डेलीगेशन ने आज एबन में आवास और भूमि मंत्री शकील मोहम्मद से मुलाकात की। करुणा लालू।
2: मॉरिशस उन 16 देशों में शामिल हैं जिसे

0: नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन प्रोग्राम के संदर्भ में चुना गया। इस पहल का मकसद दुनिया के विभिन्न इलाकों के नागरिक और सैनिक उच्चाधिकारियों को विकास, शासन और सहयोग की चुनौतियों की बेहतर समझ प्रदान करना है। इसी संदर्भ में नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडर एमार्शल मनीष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय डिफेंस फोर्स के 15 उच्चाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में मॉरिशस में है। भारत में 11 महीने के एक प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, जिसके दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति का अध्ययन कर रहे हैं। सैद्धांतिक भाग पूरा होने पर 16 देशों में जाएंगे। इनमें मॉरिशस शामिल हैं, जहाँ की संस्कृति और हमारे द्विपक्षीय संबंधों का अध्ययन कर भारतीय सरकार को सुधार के मार्ग का प्रस्ताव करेंगे।
1: एंड टू सजेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ वी कैन इंप्रूव ऑन दैट, सो दैट इज द मेन फोकस ऑफ आवर टूर ओवर हियर।
0: इस डेलीगेशन का स्वागत भूमि एवं आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने किया। कई विकास बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें भारत के समर्थन से मॉरिशस सरकार द्वारा साकार की जाने वाली परियोजनाएं भी शामिल
2: रहीं।
0: पर्यावरण क्लाइमेट चेंज मंत्रालय की नीति, मकान निर्माण को लेकर नीति, डिजिटल स्ट्रेटेजी आदि पर सवाल किए गए, यह प्रमाणित करता है कि दुनिया में मॉरिशस की एक अहम जगह है। ये डेलीगेशन 6 जून तक मॉरिशस में रहेगा। कई मुलाकातें निर्धारित हैं, खासकर पुलिस कमिश्नर और विभिन्न मंत्रालयों के साथ, जिनमें विदेश मंत्रालय भी शामिल हैं।
3: विदेश में म्यांमार के उत्तरी हिस्से में चीन सीमा के पास एक गांव भीषण धमाके से तबाह हो गया है। हादसे में कम से कम 55 लोगों की मौत। धमाका खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक पदार्थ के गोदाम में हुआ है। कई घर मलबे में बदल गया है। दूध हर घर की सुबह का स्वाद है, बच्चों की सेहत का सहारा है और गांव की अर्थव्यवस्था की सफ़ेद धारा भी। आज विश्व दूध दिवस पर दुनिया दूध के पोषण और क्षेत्र से जुड़े किसानों पशुपालकों के योगदान को याद कर रही है। भारत में ये कहानी और भी खास है, जहां श्वेत क्रांति ने दूध की कमी से जूझते देश को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में खड़ा कर दिया है।

और अब चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ेगा आज रात को। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान रात को तथा कल सुबह बादल घिरे रहेंगे। देश के पूर्व तथा ऊंचाइयों पर रह रहकर वर्षा होगी और ऊंचाइयों पर कोहरा भी छाया रहेगा। कल बादल कुछ घिरे रहेंगे। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम तापमान 22 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6:38 पर होगा।

0: 6:23 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक शिव को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

Avenue Guy Rosemont, Trèfle Rose Hill Me. Avenue Guy Rosemont, Trèfle Rose Hill Me. 78 साल की, 78 years old. श्री गणेश वेंकटाचलम, श्री गणेश वेंकटाचलम, जिन्हें लोग विष्णु नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे इनकी बहन रोजा वैथिलिंगम के मकान एवेन्यू गी रोजमों ट्रेफले रोज हिल से उठाकर सैम आते किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी. फ्यूनरल टुमरो एट 10 एम. शास्त्री रोड बुआ पियोले ते अरूज में, शास्त्री रोड बुआ पियोले ते अरूज में, 56 साल की, 56 ईयर्स ओल्ड, 56 साल की 56 ईयर्स ओल्ड श्रीमती प्रबीता चौधरी, श्रीमती प्रबीता चौधरी, पैदाशी नाम तिरबोहन, और जिन्हें लोग सुनीता नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है. इनके अर्थी कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे इनके मकान शास्त्री रोड बुआपियोले त्यागूज से उठाकर सिपाही भीले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 10 एम. और नंबर 22 होवलेन उकुले क्यूपिप में, 80 साल के, 80 ईयर्स ओल्ड श्री करणदेव आलिया, श्री करणदेव आलिया, जिन्हें लोग करणदेव नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, कल दिन के 10 बजे इनकी पत्नी लीला देवी आलिया के मकान नंबर 22 रोवलेन उकुले क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 पी एम. शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है.

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Nee so. सोमवार 1 जून और रेडियो मनोरंजन पर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। और नई सोच इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। और चलिए उम्मीद करते हैं दिन बहुत अच्छे से बीता होगा। और ऐसे तो पूरे दिन के बाद शाम का वक्त होता है, थोड़ी सी थकावट हो जाती है कामकाज से लौटने के बाद। और चलिए अभी हमारी कोशिश यही होगी कि आपकी थकावट को हम दूर करें और खूबसूरत गाने आपके लिए हम चलाएं। और जहाँ कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं, साथ दे रहे हैं, आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खूबसूरत गानों का ये जो कारवा है चलने वाला है यहाँ पर शाम के 7 बजे तक। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की जो है हम शुरुआत करते हैं अखियों के झरोखे, इस फिल्म के इस टाइटल ट्रैक से, आप सभी के नाम। और ये जो खूबसूरत सा गाना है, हमें पता है हमारे सुनने वालों को बहुत ही पसंद आता है और हमेशा जो है इस गाने की जो फरमाइश है यहाँ पर होते रहती है। तो ऐसे में हेमलता की आवाज़ में ये गाना आप सभी के लिए चल पड़ा।

कहते हैं एक हल्की सी मुस्कुराहट जो है जीवन के आधे दुखों को ऐसे ही कम कर देती है। इसलिए लाइफ में जो हो रहा हो, जैसे भी हालात हो, जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। कहते हैं इसी में जो है लाइफ के प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें मिल ही जाता है। और यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो क्या है, आते जाते रहते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन इसके चलते ज़िंदगी को जीना हम नहीं भूलते हैं और हमें कभी भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। और ज़िंदगी और भी खूबसूरत तब होती है जब ज़िंदगी में अच्छे दोस्त हो, अच्छे साथी हो, अच्छे हमसफ़र हो, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम अगले गाने की ओर, नई सोच में। अगला जो गाना है बॉर्डर फिल्म का तराना है, घर कब आओगे आप सभी लवली लिसनर्स के नाम।

0: जी हाँ, जो चले जाते हैं किसी वजह से, हमारे अपने दूर हो जाते हैं, तो उनके लौटने का इंतज़ार तो हमेशा ही रहता है। और लौटने पर रिश्ते फिर जुड़ भी जाते हैं। और जब हम किसी वजह से अपनों से दूर होते हैं और काफ़ी दिनों बाद जब उनसे मिलते हैं तो रौनक ही अलग होती है, है ना। तो चलिए, जितने भी बिछड़े हैं किसी वजह से भी, तो बस आप सभी मिल जाए। और यहाँ पर खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी है। बढ़ते हैं हम इस अगले तराने की ओर।
1: RM3 Radio.

0: चलिए, आपका प्यार भरा साथ तो हमें हमेशा ही मिलता है जब भी हम यहाँ पर आते हैं किसी भी प्रोग्राम को लेकर। रिसोर्स से आप जुड़ते हैं, आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स, इसके लिए दिल से शुक्रिया।
1: नई
0: सोच का ये जो सफ़र है ये ख़त्म होने को चला इस अगले गाने के साथ, और 7 बजे से शुरुआत होगी दिलों की आवाज़ की। सो अभी तक साथ दे रहे हैं, आगे भी साथ देते रहिएगा। रात के 9 बजे तक हम यहाँ पर आपसे जुड़े रहेंगे, आपके लिए खूबसूरत गाने तराने चलाते रहेंगे। और भूलिएगा नहीं, आपके डेडिकेशंस भी हम इंक्लूड करने वाले हैं दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में। सो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। अभी के लिए ये लवली तराना हो जाए आप सभी के लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: सोमवार पहली जून घड़ी मिला लीजिए शाम के 7 बज रहे हैं और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑन रेडियो मनोरंजन। दिस इज योर दिलों की आवाज और यहां पर प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ कि आपके डेडिकेशंस आपकी फरमाइश है हमें यहां पर मिलना शुरू हो चुके हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप इतने प्यार से हमारे साथ जुड़े रहते हैं और दिन अच्छे से बीता होगा इसी उम्मीद हम करते हैं। और अभी से लेकर रात के 9 बजे तक खूबसूरत रोमांटिक तराने आपके लिए हम चलाने वाले हैं। तो चलिए बताइएगा कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, किसके नाम डेडिकेट करना चाहते हैं। और हमारा नंबर तो आपको याद ही होगा, फिर भी बता देते हैं 4028070 फॉर योर फोन कॉल्स और आपके मैसेजेस ऑन 5250600 पर। और चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत मेडले के साथ।
2: You're listening to RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज़
1: चलिए, दिस इज़ योर दिलों की आवाज़। और इस समय अगर डिनर करते करते साथ जुड़े हैं, आप सभी को बुना पेची शुभ आहार हम कहेंगे। ऐसे कहते हैं ना कि शाम का डिनर थोड़ा जल्दी ही कर लेना चाहिए, ऐसे डाइजेशन भी अच्छा होता है और हम हेल्दी भी रहते हैं, क्योंकि देर से खाते हैं तो नींद भी देर से आती है, थकावट भी ज़्यादा रहती है। 6:30-7:30 के बीच में अगर खाना खा लेते हैं तो हमें भी जो है जल्दी सोने का मौका मिल जाता है, क्योंकि दिन भर की थकावट के बाद देर रात तक जागना और फिर दूसरे दिन जो है उठना कितना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे भी मंडेज़ की बात करें तो मंडे का दिन तो ऐसे भी थोड़ा हेक्टिक, थोड़ा हैवी लगता ही है। लेकिन चले, आपकी थकावट को दूर करने के लिए हम यहाँ पर है खूबसूरत गानों के साथ, खूबसूरत तरानों के साथ। तो चले, अगला गाना जो है जाता है अनुषा आपके नाम बादवाग विदेशी की ओर से और सभी विदेशी फैमिलीज की ओर से।

तो चलिए जुदाई फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे, मैं तुझसे ऐसे मिलूं तेरी जान बन जाऊं, अलका याग्निक अभिजीत की आवाज़ों में। यकीनन अभी हमारी आपकी मुलाकात जो है हो रही है रेडियो मनोरंजन पर दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में जो चलेगा रात के 9 बजे तक। एंड नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस ऑन 5250-6200 पर। साथ ही इस समय हम रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर लाइव है, आप वहां पर भी हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, अपनी डेडिकेशंस हम तक पहुंचा सकते हैं। अभी के लिए बढ़ते हैं हम इस अगले गाने की ओर। फरेब फिल्म का ये जो तराना है, आंखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है, गाना कुमार सानू अलका याग्निक जी की आवाज़ों में है। गाना यहाँ पर जाता है ज्ञान जी आपके नाम, ज्ञान बिहारी इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। गाना आपकी वाइफ सबिता के लिए, सिस्टर इन लॉ है गीता, आपके फ्रेंड संजीव सुनील और रानी के लिए, सभी बिहारी फैमिलीज के लिए, RM3 के हमारे तमाम सुनने वालों के नाम। सो बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही अपने डेडिकेशंस हम तक पहुंचाते रहिए।

यकीनन कहीं ना कहीं ये सारे खूबसूरत गाने हमारे दिल में बसे हुए हैं और बार-बार इन्हें सुनने का मन करता है, तब जाकर तो आप इन खूबसूरत गानों की फरमाइश करते हैं।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़
1: यस दिलों की आवाज़ है ये। और यहाँ पर इस समय हम हमारे टिकटॉक पर भी लाइव है, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हमारे साथ एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं। सो चलिए दिनेश गोपी जी आपका स्वागत है, वी हैव कविता, राजू जी ये अगला गाना आपके नाम हम करते हैं और रबिन जी आपका शुक्रिया साथ आप दे रहे हैं, कवि किशन जी है, हेलो शर्वी थैंक यू हमारे इस लाइव को शेयर करने के लिए, वी हैव श्रद अगला गाना आपकी ओर से, करवेश हर्षा हाहान और सभी लोकनाथ परिवारों के नाम हम करेंगे, नीलिमा जी शुक्रिया साथ देने के लिए, टोनी यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं, सुबी अगला गाना आपके नाम और आपके पूरे परिवार के नाम हम करते हैं, अंजलि जी त्रियोले से हमारा साथ दे रही है, आपने कहा एक पुराना गाना तो चलिए ये जो अगला गाना हम चलाने वाले हैं ये आपके नाम करते हैं, उम्मीद करते हैं ये गाना आपको अंजलि जी ज़रूर पसंद आएगा। राजन अपादू जी कैसे हैं आप, ठीक तो है ना। प्रियन प्रियन ये अगला तराना कालिया फिल्म का गीत है, आशा जी और किशोरदा की आवाज़ों में आपके नाम और आपके पूरे परिवार के नाम करते हैं, इंदिरा जी यही तराना आपके लिए भी चल पड़ा।

0: दिलों की आवाज़
1: छिड़े दिलों की आवाज़ शाम के नहीं रात के 7:40 यहाँ पर हो चुके हैं और यहाँ पर खूबसूरत गानों का सिलसिला जो है जारी है रेडियो मनोरंजन पर। आप हमारा साथ दे रहे हैं और यहाँ पर कविता जी हमारा साथ दे रही है। अगला गाना इंदिरा जी की ओर से जाता है राजेश और प्रकाश के लिए। वी हैव रूही, विशाल, आलिशा, आप सभी के नाम, इकबाल जी आपके भी प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। रफ़ी साहब का कोई गाना और राइट मौका मिलेगा तो हम चलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यही तराना जाता है सभी किस्तू फैमिली के नाम। बेबी जेन अगला तराना आपके लिए और यहाँ पर ताल फिल्म का ये जो गीत है, जिन जिन लोगों ने ताल फिल्म के गाने की फरमाइश की है, ये गाना आप सभी के नाम हम करते हैं। कहीं आग लगे लग जावे, आशा जी, आदित्य नारायण और रिचा शर्मा की आवाज़ों में। ऐसे ताल फिल्म आप लोगों ने देखी है, बड़ी ही खूबसूरत सी फिल्म है। फिल्म में अक्षय खन्ना थे, ऑब्वियसली ऐश्वर्या राय थी, अनिल कपूर थे, सुभाष घई जी की फिल्म थी। फिल्म की स्टोरी कमाल की थी, फिल्म के गाने कमाल के थे। मुझे याद है उस समय मैं कॉलेज में थी और मैंने इस फिल्म को 3 बार जाकर थिएटर में देखा था। आप लोग बताएं कि आपने ये फिल्म कितनी बार देखी है।

0: और चलिए ताल फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ हमें आशा जी की आवाज़ को भी सुनने का मौका मिला। कहते हैं ना कि कलाकार चला जाता है लेकिन उनकी कला हमेशा रहती है, तो जब भी आशा जी की आवाज़ को सुनेंगे ऑब्वियसली उनको याद तो करेंगे ही।
1: दिलों की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़।
0: और चलिए दिलों की आवाज़ में अगला जो तराना है, ऐसे कल मदर्स डे सबने सेलिब्रेट किया लेकिन आज भी बहुत से लोग जो है गाने मांग रहे हैं, तो एक गाना हम जोड़ देते हैं यहाँ पर। जानवर फिल्म का ये जो तराना है पास बुलाती है, गाना जाता है यहाँ पर स्वेनल आपके नाम, आपकी मम को, मामा मालिनी को आप इस गाने को डेडिकेट कर रही है, उनको याद कर रही है। साथ में भाई श्रवण है, भाभी कृति है, अभिनव, कियान, नव्या, सभी तिलक फैमिलीज के नाम। अंतिश राम सरन आपको भी हेलो, स्विट्जरलैंड से इस समय हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो सो मच। वी हैव मनोज, आशा, रिया, हस्बैंड नितेश और आपके बच्चों के नाम। अगला गाना शर्वी है, विहान है, जोया शुक्रिया साथ देने के लिए, रजनी, नीरज, फिया आप सभी बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं और साथ में देख भी रहे हैं यहाँ पर टिकटॉक के जरिए। फिदू जी शुक्रिया साथ देने के लिए। वी हैव नितीश, नाजिमा, आलान साउथ अफ्रीका से हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए ये तराना आप सभी के नाम, अलका याग्निक, सुधींदी चौहान और साथियों की आवाज़ों में।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी बातें दिल में छुपाए रखते हैं, दिल में दबाए रखते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ना कहने के लिए किससे कहे या सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जिनके पास भी दिल की बात कहने के लिए कोई हो या बिना कहे ही जो आपकी बातों को समझ जाता हो, तो आपसे ज़्यादा खुशनसीब और लकी कोई नहीं है। तो चलिए यहाँ पर गानों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं। प्यार तो होना ही था फिल्म का ये जो अगला गाना है, कविता जी आपके नाम हम करते हैं, शुक्रिया साथ देने के लिए। और यहाँ पर यही गाना जाता है आपके लिए भी फरानाज, आपके हस्बैंड थोड़े से नाराज़ हैं। तो चलिए इस अगले गाने के साथ उम्मीद करते हैं उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। फरानाज, ये गाना आपके नाम और आपके डियर हस्बैंड के नाम, ओके, बड़े ही प्यार से। तरुण राम जी, शुक्रिया साथ देने के लिए। डैनी, अगला गाना आपके नाम, गुडलैंड से आप हमारा साथ दे रहे हैं। हेलो परी, ये रेशमा, लैला, यश जी इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। वी हैव स्काई वर्ल्ड, और यहाँ पर सना सीतल हॉलैंड से हमें देख रही है, थैंक यू सो मच। उषा, विकास, जेवीना सभी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हैं। सो प्यार तो होना ही था फिल्म का ये जो तराना है, आप सभी के नाम करते हैं, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे।

0: लेकिन इन गानों को सुनकर प्यार कैसे ना हो भला।
1: दिलों की आवाज़।
0: कहते हैं ना कि लाइफ में सब कुछ हो और प्यार ना हो तो मानो कोई ना कोई कमी रह जाती है, और जहाँ पर थोड़ी बहुत लाइफ में कमियाँ हो और ढेर सारा प्यार हो तो ये जो प्यार है सभी कमियों को पूरा कर देता है, है ना। क्योंकि लाइफ में प्यार हो, अपनापन हो, अपनों का साथ हो, अच्छे दोस्त हो, तो ज़िंदगी में किसी को और क्या चाहिए भला। बाकी सभी कमियाँ तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप हमारे सभी लवली लिसनर्स, हमारे फॉलोअर्स इतने प्यार से हमारे साथ हर रोज़ जुड़ते हैं, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं, हमें इनक्रेज करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो सो मच। और देखते ही देखते रात के 8:04 हो गए हैं, यहाँ पर दिलों की आवाज़ के सेकंड आवर में हम आ गए हैं। और यहाँ पर अगला गाना जो है ज्ञान जी आपके नाम हम करते हैं, आईना फिल्म का ये तराना है। आशा जी और कुमार सानू की आवाज़ों में, मेरी सांसों में तुम, ये गाना आपके नाम, सभी आपकी ओर से आपके सभी फैमिलीज़ के लिए। ऋषि राम खेलावन जी, ऋषि देव राम खेलावन जी, शुक्रिया साथ देने के लिए। तरन जी, अगला गाना आपकी ओर से हमारे सभी आजिज़ के नाम, खासकर हंसनी और वेदिता के लिए। अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़ी है। थ्रेसा, हेलो थ्रेसा, आप हमें याद दिलाइएगा कि हम आपसे कब मिले थे, तो हमें ज़रूर याद आएगा। मरियम जी, शुक्रिया आप साथ दे रही है। ऐसे तो पुराने गाने हम इस दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में नहीं चलाते हैं, सुहाना सफ़र में आप ज़रूर जुड़िएगा जहां 12 से देव पुराने गाने चलते हैं। वी हैव विदुला, वी हैव जेवीना, वी हैव संजय, कनाडा से स्वीटी है, योगेश है, मिष्टी है, सभी बड़े ही प्यार से जुड़े हैं।

0: ऐसे ये फिल्म भी बड़ी खूबसूरत थी, आईना ये फिल्म, इसमें जूही चावला थी, अमृता सिन्हा थी, साथ में जैकी श्रॉफ थे और फिल्म के सभी गाने बहुत ही खूबसूरत है। तो इस गाने को आपने अभी सुना आशा जी और कुमार सानू जी की आवाज़ों में।
1: की आवाज़।
0: चलिए आज 1 जून है और आज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जा रहा है। माता पिता को जो है ये दिन डेडिकेट किया जाता है। ऐसे कल हमने यहाँ पर मदर्स डे मनाया, सो किसी ने कहा कि एक गाना पिता पर भी हो जाए। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले हमने माँ पर एक गाना चलाया, अब बारी है इस अगले गाने की। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के चलते इस गाने को हम आप सभी के नाम करते हैं। यकीनन हमारे माता पिता हमारे लिए जो करते हैं वो मतलब कि उसका तो कर्ज हम कभी उतार नहीं सकते। बदले में बस जब भी मौका मिले उनका ख्याल रख सकते रखना चाहिए, इनफैक्ट उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। तो चलिए अगला गाना जाता है सभी पापा के नाम। मैं ऐसा ही हूँ इस फिल्म का ये तराना है सोनू निगम और श्रेया घोषाल जी की आवाज़ों में। गाना जाता है निदेश आपके नाम, मनोज जी आपके लिए, नोवेल फ्रांस से साथ दे रहे हैं, यबीर है, लैला है, सुशील, नुश, गोविंद, जैक, आशा, आरती, मैजबीन, विद्या, सभी बड़े ही प्यार से साथ दे रहे हैं। अगला गाना आपके बेटे के नाम

0: उनका आज बर्थडे है इजाज. ऑल राइट, अगला गाना इनके नाम भी हम करते हैं. और यहाँ पर जो है इस समय हमारे साथ बहुत सारे हमारे जो है सुनने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं. रफीक मोहित जी, यही गाना आपके लिए भी हम करते हैं. तायाक से आप हमारा साथ दे रहे हैं.
1: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ.

0: और चलिए ऐसे ही खूबसूरत गानों का सिलसिला जो है चलने वाला है रात के 9 बजे तक इन दिलों की आवाज।
1: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
0: बहुत बहुत शुक्रिया 5250-6200 पर आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं और साथ ही टिकटॉक पर हमारे इतने सारे फॉलोअर्स हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे इस लाइव को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो सो मच। और अगला जो गाना है चांदनी फिल्म का तराना है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। ऑब्वियसली ये खूबसूरत सा तराना है, पिक्चराइज्ड हुआ था जूही चावला और विनोद खन्ना साहब पर। ऐसे इस फिल्म में श्रीदेवी और ऋषि कपूर भी हैं, लेकिन इस गाने में खासकर जूही चावला जो है पिक्चराइज हुई थी। और ये गाना जेवीना आपके नाम आराध्या, शुक्रिया साथ देने के लिए। यश जी फ्लाक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशीला, विद्या, अश्विना आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं, कल्पना जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभा जी आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मिमी अगला गाना आपके नाम और आपकी बेटी मेलिसा के लिए, श्यामा जी, अभिषेक जी, अनुषा, विमल आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। चलिए ऐसे में अगला गीत आप सभी के नाम सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की आवाज़ों में है।

0: दिलों की आवाज,
1: और चले यहाँ पर रात के 8:22 ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ पर खूबसूरत गानों का सिलसिला जो है इसे आगे ले जाते हैं। अगला जो तराना है जहर फिल्म का ये गीत है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। गाना खासकर मैं जबीन आपके नाम और आपके शौहर परवेज के नाम हम करते हैं। एक ही ओर से ये गाना जाता है साइलेश के लिए। आफिजा ये गाना आपके लिए भी। माधुरी जी गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाए, यही गाना आपके नाम भी हम करते हैं। तरन इस समय हमारे साथ यूके से जुड़े हुए हैं, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, ऐसे आप हमेशा जुड़ते हैं हमें पता है। अनिल राजन जी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अली आपका भी साथ हमें मिल रहा है। मायरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें यहाँ पर देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। ऑलराइट, जाबाज फिल्म का गाना मौका मिलेगा तो हम ज़रूर चलाएंगे। माधवी दुमौजी कैसी है आप, रुजेदा जी आप कैसी है, यही गाना आप सभी के नाम हम यहाँ पर करते हैं। उदित नारायण की आवाज़ में जहर फिल्म का ये गीत आप सभी के नाम।

चलिए यहाँ पर खूबसूरत गानों में एक और तराना हम जोड़ते हैं। यहाँ पर जाबाज फिल्म का ये जो अगला गीत है, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी, गाना जाता है उन सभी के लिए जिन्हें ये गाना पसंद है। साथ में वी हैव पास्कल, वी हैव विजय, वी हैव यहाँ पर शिनी जो इस समय हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। कल्याणी जी यही गाना हम आपके लिए भी करते हैं, आप बड़े ही प्यार से हमें सुन रही हैं। माधवी जी आपको भी हम नहीं भूले हैं, हमेशा जो है आप हमसे जुड़े रहते हैं, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं, फिर चाहे रेडियो मनोरंजन पर हो या रेडियो मॉरिशस पर हो।

0: की आवाज, की आवाज, की आवाज।
1: और चलिए इस समय गुलशन हमारा साथ दे रहे हैं। दरार फिल्म का ये जो अगला तराना है, जाता है आपके मामा प्रभा के नाम सिस्टर दीक्षिता, आयशा के नाम सभी भोला फैमिलीज के लिए, आरजे हंसनी के लिए। और यही तराना हम ज्योति जी आपके नाम करते हैं, शातो बनारस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाना जाता है आशनी के लिए, रेखा सुरेखा सभी मधव फैमिली, और हमारे लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सदरार फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका जी की आवाज़ों में आप सभी के लिए चल पड़ा।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: चलिए देखते ही देखते रात के 8:48 ऑलरेडी दिलों की आवाज़ में अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। जान तेरे नाम फिल्म का ये जो गाना है, पति राज, बेटे अंतिश, अंकुश, बहु मनीषा, आशिमा, पोते हिमेशा, आध्या, आंच और रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच। अनीता जी, यही गाना हम आपके नाम भी करते हैं।

0: चलिए इसी के साथ आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है दिलों की आवाज़ ख़त्म होने को चला जाते जाते आप सभी लवली लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमेशा हमारा साथ देते हैं टिकटॉक पर जब हम लाइव थे जितने फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़े रहे आप सभी का भी दिल से धन्यवाद हम कहते हैं। ये आखिरी तराना आप सभी के नाम 9 बजे आप सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस से सीधा प्रोग्राम यहाँ पर भोजपुरी तड़का और हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी। तब तक ऐसे ही रेडियो मनोरंजन से जुड़े रहिए सुनते रहिए और यहाँ पर हम आपसे मिलने फिर लौटेंगे कल दोपहर के 12 बजे। तब तक के लिए हमारी ओर से नमस्कार गुड नाइट आप सभी को।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan।
2: एक लड़के पे वो मरती थी नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी कुछ कहना था शायद उसको जाने किससे डरती थी जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है ये प्यार कैसे होता है और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। मिसेज अंजू ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: RM3 Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात जून महीना के पहला रात था। जून महीना मतलब कि इबरिस के बीचों बीच चला रहे सा छवा महीना चला था, और यही उम्मीद के साथ कि ये जो पिछला पाँच महीना गुजरल बहुत अच्छा रहा, ये छवा महीना आप सबको एक खातिर बहुत शुभ रही, ऐसा शुभकामना के साथ आज के ये महीना के शुरुआत कर रहे थे। जहाँ भोजपुरी तड़का में आप फ़ोन करा और आपके फरमाइश पर, आपके पसंद के गीत पर ये प्लेलिस्ट के हम फिर से तैयार करब। शुरू करी जा आपके मनपसंद भोजपुरी बॉयज़, भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज़ के सबसे मशहूर गीत चल गोरी के साथ।

रात के ठीक 9:09 होलबा और आज भोजपुरी तड़का में हम किरण आप सब कोई के बहुत दिल से स्वागत करत है। हमार प्यार भरा नमस्ते स्वीकार करा और आज के जो अगला गीत चली वो आप सब के नाम जेकर आज जन्मदिन बा और जेकर घर में खुशहाली के माहौल छैले बा। बहुत दिन के बाद हमार ई प्रोग्राम में बसंत सुपोल के आवाज़ में एगो जन्मदिन के गीत चली और उनकर आवाज़ के साथ ई जन्मदिन के गीत बहुत अच्छा लगेला सुने के। बहुत एगो शुभ एगो सकब जा बोले ऐसा माहौल छा जाला जो सच में बुझाला कि एगो खुशहाली बा अपनापन बा एगो रिश्तेदार के साथ एगो खास मौका मनावल जाता। तो चला बसंत सुपोल के आवाज़ में ई जन्मदिन के गीत एकर मांग कर ले हवन श्रीमती मीराबाई दर्मिया और दर्मिया जी बोलत हवन कि आज उनकर पति के जन्मदिन बा आशदेव दर्मिया। बेटी दामाद के साथ साथ खुद मीराबाई जी के ओर से जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना और पूरा दमिया और पायडिया परिवार के ओर से ये शुभकामना। साथ में मीराबाई बोलत हवन कि उनकर जो छोटकी ननद बा अमिता देवरा इनकर काल जन्मदिन बा। तो लगे हाथ अमिता जी आपके भी आपके भौजी के ओर से जन्मदिन के बहुत

बहुत बहुत शुभकामना। और वैसे तो आज के बाद आज बिफे हा हमने के मुलाकात फिर से भोजपुरी तड़का में आवत बिफे के हुई, तो अभी से आवत बिफे ले पहला से सकब्जा बोले धरला 8 जून तक जितना कोई के जन्मदिन बा। हाँ, आज असल में सोमवार है, हमने के फिर से मुलाकात आवत बिफे के हुई, तो अभी से बिफे के 4 तारीख के जेकर भी जन्मदिन बा आप सबको के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। और चला प्यार के साथ ये अगला गीत सुनी जा।

रात के 9:17 होल बा और आप लोग के फ़ोन कॉल्स खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के प्यार, आप लोग के स्नेह, आप लोग के आशीर्वाद खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। ये बखत जब काम करबा और ऐसा ऐसा शब्द सुने ना मिले के जो के उम्मीद नहीं रहेला, तो काम करे के जो हौसला रहेला वो और भी बढ़ जाला। और ये बखत हमने के सुना था वन ढेर कोई सुना था वजह, लेकिन फ़ोन कर लन वाकुआ से भाई अब्बू। और भाई अब्बू सुने चाहत हवन एगो एगो खास गीत जोन वो हमेशा सुनते रहेलन। और वो गीत आप सब कोई जाने लजा छोर के मोरिस्वा। और ये गीत थोड़ा देर में अभी चली, लेकिन फिलहाल गिरीश रूपचंद के आवाज़ में चलाव जा चार दिन के खुशी, मतलब कि झूमा नाचा गाओ चार दिन के जिंदगी बा फिर अंधेरी रात बा। ये गीत सुने चाहत हवन त्यागोश के शांति जी। और शांति जी हमेशा के तरह अपन मराठी परिवार जे लोग दागोचिया से हवन जा उ लोग के नाम ये गीत करत हवन। और ख़ास तौर पर अपन दागोचिया के उनकर भगिना ओम के नाम। और शांति जी बहुत प्यार से बोलत हवन कि ये गीत वो हमार नाम करत हवन, हमार पूरा परिवार के नाम करत हवन। बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी। और हमार परिवार के सदस्य आप ही लोग हवजा जे लोग ये बखत हमार साथ देवत हवजा अभी से 11 तक ये साथ रही। और जब भी हम यहाँ रहिला आप सब कोई के प्यार, आप सब कोई के जो शुभकामना बा, आपके फ़ोन कॉल्स ढेर कोई आप लोग में से खाली फ़ोन करे ला जा दुशब्द बोले खातिर, थोड़ा सुन बातचीत करे खातिर। और यही अपनापन एगो संबंध के और जस्ती गहरा बनावेला। तो आप सब कोई जे हमार परिवार हो जा आप लोग के नाम ये अगला गीत गिरीश रूपचंद के आवाज़ में जेकर मांग कर ले हवन शांति जी ते अगूज से।

0: और थोड़ा घड़ी आगे छोर के मोरिस्वा आतिश भगीरथी के आवाज में गीत की चर्चा कर ले रही। ये गीत सबसे मशहूर गीत में से एगो है हमने के भोजपुरी गायक लोग के गीत में से, और जितना कोई ई बखत मॉरिशस के बाहर सुनत हवा जा ई प्रोग्राम, या फिर बाहर से अभी मॉरिशस में हवा जा और सुनत हवा और अपन देश के जोन सुंदरता बा, अपन देश के जोन गर्माहट, जोन प्यार, जोन स्नेह, जोन सुगंध बा, ओकर आनंद उठावत हवा त ई गीत आपके नाम। और ई गीत के फरमाइश एकर मांग कर ले हवन भाई अब्बू वाकवा से। भाई अब्बू जे बहुत प्यार बहुत मोहब्बत के साथ हमेशा बतियालन, फ़ोन करेलन, और भाई अब्बू के साथ साथ आप जितना कोई भी फ़ोन करेला जा आपके आवाज़ से वो खुशी झलकेला जब आप लोग दो शब्द बतियाला जा अपन जोन दिन रह कैसे बीतल, और रेडियो पर अपन गीत सुन के मनपसंद गीत सुन के आपके कैसे लगेला, अपन परिवार और अपन नाम सुन के कैसे बुझाला, ये सब बातचीत करके आप लोग से हमके भी उतना ही खुशी होवेला। तो चला ये गीत अबू अफेज असलम अयाज जयर जहीरा रईस कलाचोटी और आपी और उनकर पत्नी के नाम और आप सब कोई के नाम जे लोग मॉरिशस से बाहर आते जाते रहे लजा।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे।
2: अगला जन गीत चली उ है धरिला चरनिया त्योहार सुनीता ननकू के आवाज में। आप सब कोई के नाम जे ई बखत ई गीत सुने चाहता हुआ और फरमाइश था अल्बा शिला जी के ओर से जे फ्रांस से चलाल हवन मॉरिशस और मॉरिशस में अपन पति सुरेन के साथ हवन और भोजपुरी तड़का जोन हमेशा वो विदेश से सुनत रहलन आज वो मॉरिशस में सुनत हवन और ई उनकर मनपसंद गीत में से एगो है। तो शिला जी अपन पति के साथ सुरेन ई गीत अपन सब परिवार के सदस्य के नाम करत हवन और सब कोई के नमस्ते बोलत हवन।

काल माँ के दिन रहल और माँ खातिर शुभकामना अभी ले आवता। ई जोन गीत चलाता मेधा रिसोल के आवाज़ में और नीलेश रापू जी के मधुर वाणी में। ई गीत के सुने के इच्छा रखत हवन वाशिरी से कल्याणी जी। और कल्याणी जी ई गीत ख़ास तौर पर अपन माँ के नाम करत हवन जिनकर आज जन्मदिन बा, लेकिन उनकर माँ के स्वर्गवास बहुत बरिस आगे हो गल बा। आप प्रार्थना करत हवा कि आपके माँ के आत्मा हमेशा शांत रही और आपके संगे संगे आपके माताजी के जो चार गो लड़का बा, चार गो बेटा चार गो बेटी आठ गो लड़का, सबके ओर से स्वर्गवासीय माँ के बहुत बहुत शुभकामना। उनकर आत्मा हमेशा शांति से रही और बॉशेरी के कल्याणी जी आपके नाम आपके पसंद के ही गीत।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे।
2: रात के 10 बजे होला बा, 10 बजे में 3 मिनट कमती बा, और आप लोग हमार साथ देवत हवा रात के 9 बजे से, और एक घंटा के इस सफर अभी जारी बा। अगला जन गीत चलता वो विनोद सिद्धत की आवाज़ में, संगत कर जान के पानी पिया छान के। विनोद सिद्धत के आवाज़ के ढेर शौकीन हवा जा, और शांति सुकारी जी ये गीत अपन सब लड़का लोग के नाम करत हवन हमेशा के तरह। उनकर जितना बेटा बेटी बा, दामाद बा, और जितना उकर नाती पोता हवन सर सबके नाम। और फिर सुयक के श्रीमती जी भी विनोद सिद्धत के आवाज़ में गीत सुने चाहत हवन, और श्रीमती जी पूरा मोहेश और चंद्रमुनि परिवार के नाम ये गीत करत हवन। उधर बेलिया से आत्माराम जी भी विनोद सिद्धत के आवाज़ सुने के इच्छा रखत हवन। इसलू परिवार के नाम ये गीत आत्माराम जी करत हवन, और उनकर चार गो बहिन, और इमे हवन ललिता, सुदेवी, छोटी और प्रभावती। तो चला आप सब कोई ये गीत के आनंद उठाओ जा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे

सोना नुयान के आवाज में गावल गीत अभी आप सुनत हवा अभिदानंद बीजन और चंद्रदेव सुपोल के आवाज में और ई गीत सुने चाहत हवन अभिदानंद बीजन के आवाज में फौजीसाख से उमा जी त उमा जी आप जे हमनी के सुनत हवा ई बखत आपके पूरा परिवार के नाम और आपके सब सगे संबंधी के नाम जितना कोई ई बखत ई प्रोग्राम सुनत

इजन अगला गीत चली ज्ञान मोहिपत लाल के आवाज में बदरिया घिर घिर आए। ये गीत हमेशा की तरह सुने चाहत हवन बाशरी से धनी जी। धनी जी आपके नाम आपके मन पसंद गीत।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

पिया परदेस महल भल सुन, पूर्णिमा फोकिरा के आवाज़ में ये गीत खुद पूर्णिमा जी ये गीत के फरमाइश कर लथवन अपन बेटी दामाद, ख़ास तौर पर उनकर दामाद विशाल जी उनकर संगे अभी हवन, और अपन सब बेटी सब जिले पूनम पिंकी प्रवीणी पूजा बेटा प्रवेश बहु कुष्मा उदिन समधिन सरोज और पूरा फोकिरा परिवार के नाम पूर्णिमा जी ये गीत कर रहा था।

0: रात के 10:38 हो गलबा और अभी तक आप लोग साथ देवत वजा बहुत बहुत धन्यवाद एगो जिन अगला गीत चली संतोष महादेव की आवाज़ में ये गीत खास तौर पर पितों के अमृता गणेश जी के नाम अमृता जी ये गीत पूरा गणेश परिवार के नाम करत हवन साथ में सोनिया परी और उनकर बेचा और बहू के नाम और यही गीत के साथ हम आपसे आज्ञा लेवब लेकिन ये कार्यक्रम अभी चली 11 बजे तक आज के रात पूर्णिमा के चांद खिलल बा आपके ये रात्रि बहुत शुभ रही ऐसा शुभकामना के साथ हम आपसे आज्ञा चाहब आज लेंदी के रात है लेंदी के दिन अच्छा से बीतल ये पूरा सप्ताह आपके अच्छा से बीती ये हमार शुभकामना है आपके नींद भी अच्छा आए और कल सुबह एगो नवा दिन नवा ऊर्जा एगो नवा मौका के साथ फिर से आप लोग उठ बजा और फिर हमने की मुलाकात फजर के हुई 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम पर और नहीं तो फिर मिलब जा ई प्रोग्राम के अंतर्गत आवत बीफे के 4 तारीख के तब तक अपन ख्याल रखा शुभ रात्रि और आप सब कोई के नमस्ते और बहुत बहुत शुभकामना
1: RM3 Radio.
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ भोजपुरी तड़का किरण संगे

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। कुछ आवाजें, कुछ धुनें और कुछ गीत वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। आज की इस हसीन रात में सुनहरे पल लेकर आया है पुराने बॉलीवुड के एवरग्रीन मेलोडीज, जो हर जनरेशन के दिल को छू जाते हैं। दोस्त, जहां भी हो, घर पर हो, सफर में हो या तन्हा रात के साथ, रेडियो मॉरिशस पर बनिए रहे अपना म्यूजिकल कंपेनियन। बिल्कुल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार और गिनीशा का प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का इस खूबसूरत सी सफर में, जहाँ पे आपकी यादों को फिर से हम चीरने वाले हैं आज इन योर सुनहरे पर।

0: रात की खामोशी में जब पुराने गीत बजते हैं तो यादें खुद ब खुद मुस्कुराने लगते हैं दोस्त। सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं ओल्ड बॉलीवुड का वो जादू जहां म्यूजिक में था सिंप्लिसिटी, इमोशंस और सच्चा प्यार। तो जुड़िए रहे हमारे साथ और महसूस कीजिए उन सुनहरे लम्हों को जो आज आज भी दिल के बहुत ही करीब है।
1: न झटको जुल्फ से पा

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रात के सुकून भरे मौसम में दिल को दीजिए पुराने बॉलीवुड मेलोडीज का प्यारा सा एहसास। सुनहरे पल में बजेंगे वही गीत जो कभी पुराने नहीं होते हैं, जो सिर्फ और ज्यादा खास बन जाते हैं टाइम के साथ। तो चलिए जी, ये अगला नगमा खासकर हमारे म्यूजिक लवर्स के नाम।

खूबसूरत एहसास के साथ जुड़िए रहे सुनहरे पल में। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये प्यारा सा नगमा हमारे दिल से आपके दिल तक।

कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन जो हम पेश कर रहे हैं इन योर सुनहरे पल, पुराने गाने पुराने यादें, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। आई एम सॉरी अगर आपकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई, क्या करें, यादें ही कुछ ऐसे हैं दोस्त। और गाने जब ऐसे बजते हैं ना ऑन सुनहरे पल, तो अपने आप आंख जो है ना, हमारे आंखें जो है नम हो जाते हैं, लेकिन होंठों पर मुस्कुराहट आ ही जाते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए आप मुस्कुराइए और ये अगला नगमा एंजॉय कर लीजिए।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: अरे जी, अभी तो शुरू किया था आपका ये खूबसूरत सफ़र आपके और हमारे बीच में सुनहरे पल। सुनहरे पल एक ऐसा सफ़र है जो रात को रोज़ 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम आपको लेके जाते हैं डाउन मेमोरी लेन। लेकिन फिलहाल के लिए गिनिशा को आप इजाज़त दीजिए। बिल्कुल जी, हम वादा करते हैं टू कम बैक एक और खूबसूरत शो के साथ। अभी के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद